0: रानी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: करें अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
3: अपने प्यार

0: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेस। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल, जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002। बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
1: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में रابطے के नंबर 4165930003। एक अमेरिकी जरीदे का कहना है कि पाकिस्तान उभरती हुई सिफारती और माशी ताकत है और पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा है और पाकिस्तानी मीशत में इस्तेहकाम आ गया है। डॉलर 280 रुपये पर मुस्तहकम है। जरीदे की रिपोर्ट में कहा कि एसी 100 इंडेक्स में साल भर में सिर्फ 1.3% की मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान की माशी मजबूती की वजूहत में IMF से तावुन और खलीजी सिफारतकारी शामिल है। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर के ज़खायर और 5 अरब डॉलर की कर्ज सहूलत में तौसी की है। अमरीकी जरीदे ने मजीद कहा कि गवादर बंदरगाह खत्ते में मुस्तकबिल का अहम स्ट्रेटजिक लॉजिस्टिक्स हब बनने की सलाहियत रखता है। जरीदे का यह भी कहना है कि चीन ने पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के लिए $257 मिलियन की सरमायाकारी की है और आलमी माशी ताकतें पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक अहमियत की मुतारिफ नजर आती हैं। चलिए, अच्छी बात है, खबरें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मैं वैसे कल परसों एक सॉन्ग सुन रहा था तो फिर मैंने कहा इसको प्ले भी करते हैं। इसका वीडियो बहुत कमाल का है और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। इसका इस जो मैंने अभी, ये तो बहुत हौसला अफजा जो जरीदे ने कहा, ये तो बहुत हौसला अफजा है, लेकिन सॉन्ग इज़ अ डिफरेंट वन। उसमें थोड़ी सी और चीज़ें जो हैं वो की गई हैं कि जैसे हम कहते थे कि पाकिस्तान 70-75 साल हो गए, अभी तक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो शहजाद राय का एक ये सॉन्ग था और ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, लेकिन ऑडियो भी इतनी बुरी नहीं है। आइए सुनते हैं।
2: जब 10 साल का था तो मैंने 9 o'clock न्यूज पर सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है।
3: मैं फिर 20 साल का हुआ, मैंने फिर 9 o'clock न्यूज पर सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है।

0: अब तो दुख होता है यार।
1: कोई नहीं, अभी भी बड़े नेक लोग बाकी हैं इस दुनिया में।
2: बुजुर्गों ने मुझसे पूछा, नेक कौन है ये तो बता। बुजुर्गों को मैं ये बोला,
0: नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला।

0: इस लड़के की शक्ल शहजाद रॉय से कितनी मिल रही थी।
1: सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है।
2: इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं।
3: जी जनाब, इनको मत जगाओ, ये बड़े ज़रूरी काम से सो रहे हैं। कौम जो है वो कुछ जागी है, कुछ सोई है, लेकिन जैसे मैंने कहा था वीडियो इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, तो टेलीविज़न पे भी आप हमारा प्रोग्राम, रेडियो पे तो सुनते ही हैं लेकिन टेलीविज़न पे भी साथ साथ, अगर टेलीविज़न पे उस ज़ाहिर नहीं है तो ऐप हमारी डाउनलोड कर लें और ऐप के थ्रू भी आप हमारा प्रोग्राम जो है 2 घंटे का देख भी सकते हैं। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। कमर्शियल ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे, आपको ले चलेंगे पाकिस्तान, जहां हमारे साथ होंगे सीनियर जर्नलिस्ट बिलाज़ अमान साहब। स्टे ट्यून्ड।

0: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में. Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर. चरगा लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम्प चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ. खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. Highway 10 or Dundas intersection, Mississauga.
1: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. It's 647-321-7444.

रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3। एक बहुत आजकल डिस्कस हो रहा था कि जी पाकिस्तान में तो सुबह हो गई है, हमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी है अभी, और किस तरह से मामला होगा। अच्छा, अब देखिए जब 12 बज जाएंगे ना यहाँ पे, तो वहाँ पे 9 बजे होंगे, तो दिन ईद का अगला दिन आ जाएगा, हमारा भी जो दिन है वो ईद का आ जाएगा। लेकिन ये है कि नमाज़ हमने नहीं पढ़ी तो फिर वहाँ कुर्बानी हो जाएगी, तो मुश्किल हो जाएगी। तो बहरहाल ये अगर कहीं वो दूसरे दिन कर सकते हैं जो लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं तो ज़रूर कर लें, लेकिन बहरहाल ये वक्त का है, इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। अजनाब, आपको बता दें कि ईद उल अज़हा की नमाज जो है वो इस्लामिक सोसाइटी ऑफ बोल्टन के ज़ेर एहतमाम एल्बन बोल्टन कम्युनिटी सेंटर 150 क्वीन स्ट्रीट साउथ बोल्टन में पहली 8 बजे और दूसरी 10 बजे अदा की जाएगी। इस तरह से इकरा सेंटर के एहतमाम ईद उल अज़हा की प्रेयर जो है वेनसडे मे 27 को पहली 8 बजे, दूसरी 10 बजे मिराज बैंकुट हॉल एंड कन्वेंशन सेंटर 1917 एलबीएन रोड रोबी को अदा की जाएगी। ईद बाज़ार आज मैपल बैंकट हॉल में भी हो रहा है, और वहाँ पे टीम ऑफ रूह जस्फर अहमद अनशला जाफरी साहबा और आइकॉन इवेंट स्पेस में आपके लिए शाहीन खान साहब और मतान खान साहब ईद बाज़ार कर रहे हैं। आप कुछ ख़रीदारी करना चाहें ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए। आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक, खुदा रब करीम आपके लिए आसानियाँ करे, बहुत सी ऐसी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लाए। दुआ में रखिएगा याद, हौसला निहारना बल हौसला भी खुआने की चीज़ है, ऑलवेज़ फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशत ज़िंदगी। इंशाल्लाह हमारी एक मुलाकात अब कल शाम 7 बजे ईद के दिन भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टूडियो इंजीनियर मरियम पर मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे माला।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूँ शिवानी आपके साथ, और आमिर और शिवानी के साथ शुरू हो चुका है लवी डवी शो। बड़ी खूबसूरत सी मॉर्निंग है और 9:01 का वक्त हो चुका है वेंसडे की खूबसूरत सी सुबह। 18 degrees Celsius टेम्परेचर विथ टन्स एंड टन्स ऑफ सनशाइन। और दोपहर के मौसम के बारे में आप सुनेंगे तो खुश ही हो जाएंगे। आज तो वैसे भी खुश होने की एक बहुत बड़ी वजह है, आज ईद है। आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक। खुशियों का ये त्यौहार, कुर्बानी का ये त्यौहार, और अपनों के साथ ढेर सारी खुशियां बांटने का ये त्यौहार। आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा अपनों का साथ, बहुत सारी अच्छी सेहत और बहुत सारी कामयाबी लाए, और ऊपर वाली की, ईश्वर की, अल्लाह की, ऑलमाइटी की, गॉड की हमेशा आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स हैं, ग्रेस है, हमेशा बना रहे, और हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। और इसी तरीके से रंगों के साथ, अपनों के प्यार के साथ, सेवइयों के साथ, पकवानों के साथ, मिलने जुलने के साथ, ढेर सारे डांस और म्यूज़िक के साथ आप ये ऐसे त्यौहार मनाते रहें। ये जो त्यौहार होते हैं ना, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, हमें डी टूर करने का मौका देते हैं। टूर जैसे अब कभी हम होता ना कि हम रोज़ एक ही जगह से अगर अपने काम पर जाएं या कहीं भी हमारा जो रूटीन है उसमें जाएं, तो ज़िंदगी थोड़ी मोनोटोनस सी

है कि आज हम बड़े अच्छे से रूट से आए, कुछ अलग देखा, कुछ अलग महसूस किया। ये त्यौहार भी ऐसे ही होते हैं, हमारी जो रूटीन से ज़िंदगी है ना, उससे हमें अलग करते हैं और अपनों के साथ ज़्यादा वक्त हम बिताते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो रूटीन में नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हमें खुशियाँ भी देती हैं, हमें पॉजिटिव भी बनाती हैं, हमें ऊपर वाले का शुक्राना अदा करने का ढेरों मौका देती हैं। आप सभी को ईद मुबारक, बहुत बहुत।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: लवी शो पर आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स के बैचेस टाइम टाइम पे आप शुरू करते हैं
4: जी।
3: चार हफ्ते का ये कोर्स होता है
4: जी।
3: और हर हफ्ते में दो दिन बड़ी कन्वीनियंटली सैटरडे और संडे हम ये क्लासेस रखते हैं, पांच घंटे 1 बजे से 6 बजे तक, जिससे कि कन्वीनियंटली हमारे स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं। और इतने सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेशनल बन चुके हैं बड़े ही एक महीने में, जो जीरो नॉलेज रखते थे वो 100% नॉलेज के साथ अपना बिजनेस खुद प्रमोट कर रहे हैं।
4: बिल्कुल ऐसा ही।
3: ये तो बात थी कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तबके के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हाउसवाइफ्स आती हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं। यहाँ हम आज बात कर रहे हैं उन ऑफिसेस की, उन कंपनीज की, जो अपने एम्प्लॉयज को डिजिटल मीडिया में ट्रेन करना चाहते हैं।
4: बिल्कुल ऐसा ही।
3: और ये पूरा ग्रुप होता है जो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठता है और उसको उनको ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो अपना कॉन्सेप्ट और जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है जो उनको प्रमोट करना है वो अपने तरीके से और पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ कर सकें। तो आमिर, कैसे हेल्प करता है इसमें डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स?
4: बिल्कुल जी, आपको बता दें शिवानी कि हम ऑन लोकेशन ट्रेन करते हैं लोगों
3: अच्छा।
4: को एक तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन का कोर्स वो है जो वीकेंड ओनली है, सैटरडे संडे है, जिसको हम चला रहे हैं। कोर्स इज रनिंग क्वाइट सक्सेसफुली। और दूसरा वो कोर्स है जो हम ऑन लोकेशन देते हैं
3: अच्छा।
4: मंडे टू फ्राइडे कोई से भी दो दिन रख लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे कोई से भी दो दिन रख लेते हैं, दोनों अतराफ की बाहमी रजामंदी के साथ। यानी जिनको हमने ट्रेन करना है वो दे देंगे दो दिन और हम देखेंगे हमारे पास वो दिन है कि नहीं। दो उसके बाद तय पा जाएगा कि ये दो दिन ट्रेनिंग के होंगे। हम उनकी लोकेशन पे जाएंगे, शर्त सिर्फ ये है कि 8 से 10 लोग होने चाहिए
3: अच्छा।
4: उन्हीं के कॉन्फ्रेंस रूम में, उन्हीं के बोर्ड रूम में 8 से 10 चेयर्स लगा के वहीं पे हम एक महीने के अंदर उनके स्टाफ को ट्रेन करेंगे
3: अच्छा।
4: बजाय इसके कि एक ब्रोकरेज किसी रेडियो, किसी टेलीविजन, किसी डिजिटल मीडिया के प्रोफेशनल को कॉन्ट्रैक्ट दे, हम आपके पास आते हैं, हम आपके सारे स्टाफ को ट्रेन कर देंगे। आपको सस्ता भी पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आप कन्वीनियंटली अपने ऑफिस में वो ट्रेनिंग ले लेंगे। इसमें मार्केटिंग भी है, कन्वेंशनल मार्केटिंग भी है, मॉडर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी है, कन्वेंशनल मीडिया भी है, मॉडर्न मीडिया भी है। और आपको वो स्किल्स सिखाए जाते हैं कि आप रियल स्टेट में हैं तो अपने वर्चुअल टूर्स हुए, रील्स हुई, घरों की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज हुई, आपने कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है वीडियो के अंदर, वो कैसे बनानी है फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, पोस्टर कैसे बनाना है, आर्टवर्क कैसे बनाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे उसको इनकॉर्पोरेट करके आपने फॉलोइंग या सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ानी है, और सबसे बढ़कर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाइप कैसे क्रिएट करनी है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है, प्लान क्या बनाना है, ये सब बताया जाएगा। आप ऑन लोकेशन हमारा ट्रेनिंग सेशन बुक कीजिए, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एक ऐसा स्किल सीखिए जो आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगा। नंबर ये मिलाएंगे आप 416-303-3639। पूरे GTA में आप कहीं भी हैं, 8 से 10 लोगों का ग्रुप है, हम आपके पास आएंगे हफ्ते में दो दिन, आपको ट्रेन करेंगे। मंडे टू फ्राइडे 12 से 5 के बीच की टाइमिंग होगी
3: जी।
4: नंबर अगेन 416-303-3639।
3: नंबर एक बार फिर से 416-303-3639। इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को बुक कर सकते हैं आप इस कोर्स के लिए। स्टे ट्यून्ड।
5: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
3: This is Lovey Dovey Show with Amir and Shivani. दोस्तों कहते हैं कि द लॉन्गर यू हैव टू वेट फॉर समथिंग द मोर यू विल अप्रिशिएट इट व्हेन इट फाइनली अराइव्स. ऑल गुड थिंग्स आर वर्थ वेटिंग, है ना. कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, कभी कभी ऊपर वाले से कोई मन्नत मांगते हैं उसके पूरे होने का इंतज़ार करते हैं, या कभी डे टू डे लाइफ में हम किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे होते हैं उसका इंतज़ार करते हैं. किसी भी चीज़ का जो इंतज़ार है कभी बहुत लंबा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि हम ऊपर वाले से बहुत शिकायतें करते हैं. ये कहते हैं कि ये सारी जो आजमाइश है, ये सारी जो टेस्टिंग टाइम्स है, वो आपने हमारे खाते में डाल दिया, है ना. कितनी जब हमारा ऊपर वाले के साथ रिश्ता बहुत अपने वाला हो जाता है ना, तो हम उससे कंप्लेन भी करते हैं, गिले शिकवे भी करते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं, और ये भी कहते हैं कि चलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे दो दिन तीन दिन, फिर बात करने लगते हैं, है ना. तो इतनी प्यार के साथ ही सही हम नाराज़गी हमेशा से एक्सप्रेस करते हैं कि इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है हमें, उसको देखिए, फलां फलां को देखिए, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, दैट पर्सन इज़ सो हैप्पी. लेकिन कभी कभी होता है जब वो चीज़ फाइनली हमें मिलती है तो हम वो सारी जो पीछे की जो दुख दर्द होते हैं, जो लंबी लंबी इंतज़ार होता है, उसको भूल जाते हैं और उस चीज़ों को इन्जॉय करते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसकी जो टाइमिंग है ना, वो सबके टाइमिंग से बेहतर होती है, और उसकी टाइमिंग जो होती है वो इतनी एक्यूरेट होती है कि बस हम ये समझ जाएँ अगर जिस दिन कि हमारे लिए जो बेस्ट टाइम है उसी पर हमें वो चीज़ मिलेगी जो हमारे लिए सबसे अच्छी है ना. तो द लॉन्गर वी हैव टू वेट फॉर समथिंग द मोर वी विल अप्रिशिएट इट व्हेन इट फाइनली अराइव्स. ऑल गुड थिंग्स आर वर्थ वेटिंग. तो चलिए गुड थिंग्स की बात चली है, अच्छे अच्छे गानों के साथ आप इन्जॉय करते हैं. वैसे भी कहते हैं ना, देर इज़ नॉट इनफ रूम इन योर माइंड फॉर बोथ वरी एंड फेथ, सो यू मस्ट डिसाइड विच वन गेट्स टू लिव देयर. वरी रहना चाहेंगी आपके जहन में या फेथ रहना चाहेगा, डिसाइड आपको करना है. मैंने डिसाइड किया है बड़ा प्यारा सा गाना आपके लिए प्ले करना, फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, इट्स दिल बर. दिस इज लवी टवी शो. 416-303-3639.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार, द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 8191001, license number 12374.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.

416-303-3639. मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर, और आमिर और शिवानी के साथ चल रहा है लवी रवि शो। और दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी ज़िंदगी में खुशियाँ, सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस और ज़िंदगी में मज़े करना, ज़िंदगी को खुल के जीना, इसकी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, अलग अलग होती हैं। और अगर हम बात करें सिंपल वे में, तो इफ़ यू आस्क पीपल व्हाट दे नीड टू बी हैप्पी, आप लोगों से पूछें कि भाई तुम्हारे लिए हैप्पीनेस क्या है, तुम्हें क्या चाहिए खुश होने के लिए, हर किसी की लिस्ट अलग होगी। किसी को पैसे चाहिए, किसी को फैमिली चाहिए, किसी को एक कंपेनियन चाहिए, किसी को एक घर चाहिए, है ना। जो चीज़ नहीं है या फिर जिन जिन चीज़ के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए वो नाम दे देंगे कि हमारे लिए खुशी ये होगी जब हमें वो चीज़ मिलेगी, राइट। सो इफ़ यू आस्क पीपल व्हाट दे नीड टू बी हैप्पी, एवरी वन विल मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अगर आप सच में सोचें तो इन सारी जो लिस्ट हैं, जितनी भी लिस्ट आपको मिलेंगी, उसका सिर्फ एक ही निचोड़ है, एक ही एसेंस है। इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, द ओनली टू थिंग्स वी नीड टू बी हैप्पी, एक हेल्दी बॉडी और एक काम सोल। अगर आप हेल्दी हैं और अगर आप अंदर से शांत है, अंदर से पीस में है, तो यकीन मानिए कि इससे खूबसूरत, इससे खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों से बाकी खुशियों का रास्ता निकलता है। तो और इसी के साथ, अगर आप किसी कारोबार में हैं, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं 416-303-3639। बड़े खूबसूरत से सितारों पर फरमाया हुआ गाना हेमा मालिनी, राजेश खन्ना और एक अमर आवाज़ लता मंगेशकर जी की, कुदरत फिल्म से तूने और रंगीले। एंजॉय दिस ट्रैक।

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Nikki Gandhi of Home Life Miracle Realty brings you brand new freehold townhomes in Brampton. Mavis Road and Ray Lawson Boulevard ke Asan se intersection par Rollingwood Towns launching June 1st. Starting price just from $600,000. 3 to 5 bedroom options available. Approximately 1300 se 1900 square feet ke layouts available. Extended deposit structure, extended closing available and great incentives for first time home buyers. Early launch pricing or limited release ke liye exclusively call Nikki Gandhi at 416-456-3815. That's 416-456-3815. Your trusted listing agent for Rollingwood Towns for VIP access, pricing and floor plans. Don't miss this opportunity.
3: मम्मा, why don't you go to work now?
4: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है. एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है.
5: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है. कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर.
4: क्या वो मदद करेंगे?
5: मदद करेंगे. उन्होंने एक क्लाइंट को $2 million की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई. तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे. इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री.
6: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट. डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ. सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
5: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले.
6: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046. दैट इज 416-937-5046.
7: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, लेकर जाएंगे
8: मधानिया,
7: दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी. शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट. और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ. डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल. तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए. लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए. कॉल 416-522-0543.
9: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है? तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है. आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं. बात कीजिए 5th generation एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से. 437-829-6023. इट्स 437-829-6023. मास्टर धनिक महाराज.
10: सुर्ख जोड़े की ये जगमगाहट, शोख बिंदिया की ये झिलमिलाहट, चूड़ियों का ये रंगी तराना, धड़कनों का ये सपना सुहाना, जागा जागा सा कजरे का जादू, भीनी भीनी सी गजरे की खुशबू, नर्म होठों का ये कपकपाना, गर्म चेहरे का ये तमतमाना, जिस्म का महका महका पसीना, हुस्न का दहका दहका नगीना, झांझरों का ये थम थम के बजना, ये सजना निखरना संवरना, किसकी खातिर है, किसके लिए है, किसकी खातिर है, किसके लिए है, किसकी खातिर है, किसके लिए है, किसके लिए है?

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: लवी रवि शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ, और एक नंबर आपको देना है। वो नंबर इसीलिए देना है क्योंकि हमारी अगली मेहमान से जब आप बातचीत सुनेंगे तो इस नंबर की ज़रूरत आपको डेफिनेटली पड़ने वाली है, और ये नंबर है 6473346611 6473346611। हर हफ्ते आपको उनका इंतज़ार रहता है क्योंकि जब भी हमारे साथ आती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेकर आती हैं इंश्योरेंस के हवाले से जो हमें जीते जी भी इनकम देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, खुश होने का मौका देते हैं। और हम बात कर रही हैं हरप्रीत जी की। हरप्रीत जी जाना पहचाना नाम है कम्युनिटी का। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की बात करें, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की बात करें, यानी इंश्योरेंस का कोई भी प्रोडक्ट हो, आपकी नीड के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड आपके लिए पैकेज बना के देती हैं, और यही वजह है कि आपको इनका इंतज़ार हर हफ्ते रहता है, हमें भी उतना ही इंतज़ार रहता है। हरप्रीत जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लवी डवी शो, कैसी हैं आप?
1: जी शिवानी जी, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो दिन है हमारे वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो अपने आप अच्छे हो रहे हैं सब लोग जो है।
0: आज तो 26 डिग्री है दोपहर तक, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल से आए हैं ये दिन इतने अच्छे वेदर के।
0: इस बार तो ज्यादा इंतजार करा दिया ना
1: जी, बहुत लंबा इंतजार रहा हमें समर का। हाँ जी,
0: कहते कोई जब त्योहार होता है ना तो कुछ ना कुछ वो अच्छा ही लेकर आता है। आज ईद है और देखिए मौसम 26 डिग्री है, तो है ना, जो हमारे बहन भाई त्योहार मना रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। ईद मुबारक आप सभी
1: जी, सभी को ईद मुबारक जो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सबकी तरफ से, टॉप फाइनेंशियल की तरफ से, हरप्रीत की तरफ से
0: जी। और ईद के मौके पर आपने जो अभी मैं ऑफ देयर आपसे बात करी थी, बड़े ही जबरदस्त प्रोडक्ट आप लेकर आई हैं, तो जरा उनके बारे में बात करते हैं।
1: जी जी शिवानी जी, जो आज मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जो लिसनर्स को बताना चाहूंगी, वो हमारी है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। इनका हम कॉम्बो पैक भी बना के देते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले डिफाइन करना चाहूंगी कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्या चीज है, आपको क्यों जरूरत रहती है। तो शिवानी जी, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो हमारी है वो हमारे मंथली एक्सपेंसेस जो है, हमारे खर्चे जो है उनको मैनेज करती है। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, राइट, चोट लग जाती है, तो हम जॉब पे नहीं जा सकते, तो हमारी इनकम सोर्स रुक जाता है, राइट, और बट हमारे खर्चे वैसे ही चलते रहते हैं। तो उन चीजों को कवर अप करने के लिए डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो है, हाँ, वो आप मंथली जो है अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग $2,000, $1,000, $5,000, अप टू $5,000 जो है वो हम ले सकते हैं, और मिनिमम जो है वो $1 से $2 पर डे के हिसाब से ये स्टार्ट हो जाती है। ये आपके टोटल अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट लेना है, और आपके वर्क प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करता है कि वर्क प्रोफेशन जो है वो कैसा है, और उस अकॉर्डिंग जो है वो आपको जो प्रीमियम आता है। तो ये आपके मंथली खर्चे हैं, जो भी हमारी ग्रोसरी है, हमारे बिल्स है, उनको जो है वो एक्सपेंसिस को पूरा करता है। दो तरह की होती है, एक तो आप वर्क जो है अथॉरिटीज की तरफ से आपको मिलती है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, तो सभी लोग ये कह देते हैं कि हमें अपने वर्क की तरफ से मिली हुई है, हमें जॉब पे मिली हुई है, बट वो जो जॉब वाली होती है, देर आर सम क्राइटेरियाज फॉर दैट, कि वो जब तक आप अंडर वर्क एनवायरमेंट है वो आपको तभी तक कवर करती है। जैसे ही आप अपना वर्क का प्लेस छोड़ा, आपने उनकी पार्किंग लॉट छोड़ी, मेन रोड पे आए, आपकी कवरेज नहीं होती है तब। ये सभी लोग इसके साथ अवेयर नहीं है, राइट, सम पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। तो ऐसे एक मुझे कुछ कॉल्स भी आई एक दो जनों की, कि जैसे वर्किंग फ्रॉम होम एंड दे आर डूइंग, उनके पैर में स्टेयर से नीचे उतरते हुए पैर ट्विस्ट हुआ, फ्रैक्चर हो गया, ये हुआ, गिर गए, मसल प्रॉब्लम हो गई, तो वो चीजें वो कवर नहीं करते हैं उस टाइम पे। तो जो हम लोग डिसेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो आपकी 24 hours 7 days है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: एनी टाइम आपके ड्राइववे में आपको कोई, इवन स्नो साफ करते हुए आपका पैर स्लिप हो गया, एनी इंजरी हो गई, सब चीजें जो है वो कवर करती है।
0: आगे बढ़ने से पहले हरप्रीत जी, मैं आपका नंबर जरूर देना चाहूंगी, 647 347-334-6611. हरप्रीत जी, आपने बिल्कुल सही एक चीज़ बोली जो मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी, लिसनर्स को भी मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और हम सब, हमारी पूरी फैमिली उससे अफेक्टेड होती है, और सबसे ज़्यादा आयरनी ऑफ लाइफ इज़ कि बिल्स आने बंद नहीं होते, खर्चे बंद नहीं होते, क्योंकि ज़िंदगी बाकी घर वालों के लिए भी वैसे ही चलेगी, बच्चों के भी खर्चे हैं, स्पाउस के भी खर्चे हैं, तो उसके लिए एक आप रिकवर करें और टेंशन और स्ट्रेस के साथ रिकवर करें तो रिकवरी भी स्लो होती है, उस साइड से कोई टेंशन नहीं हो, इसलिए आपकी ज़रूरत पड़ती है 6473346611। जी हरप्रीत जी,
1: और इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि हम जो इंजरी के लिए तो डिसेबिलिटी आप ले ही सकते हैं, और अगर आप जो है सिक हो जाते हैं तो आप उस बीमारी के लिए भी उसके साथ अपनी डिसेबिलिटी जो है वो ऐड करा सकते हैं, राइट? तो वो ये दो तरह के आप पैकेज जो है इसमें ऐड करा सकते हैं, तो इन दोनों को मिला के हम प्रॉपर जो है आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन करके देते हैं। और इसके साथ साथ शिवानी जी, लाइफ इंश्योरेंस, जैसे सभी लोग लाइफ इंश्योरेंस सबके पास होगी, मैक्सिमम पीपल जो हमारे कनाडा में है सब में ली होगी, चाहे किसी ने मिनिमम ली है चाहे मैक्सिमम ली है, राइट? बट आज भी अगर किसी से इसकी डेफिनेशन पूछ ले या पूछे कि कितना अमाउंट है, कितने साल तक की कवरेज है, तो उसकी नॉलेज जो है वो बहुत कम लोगों को होगी कि कितनी हमें जरूरत है और हमारे पास कितना अमाउंट कवर्ड है और क्या कवरेज है हमारे पास। कई बार तो ऐसा होता है कि टर्म 20 आपकी खत्म हो चुकी होती है और आपको यही होता है कि हमारे पास तो लाइफ इंश्योरेंस है। ये मेरा तजुर्बा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब हमें कॉल आती है कि हमारी जो है लाइफ इंश्योरेंस है और हमने इसको एक्सटेंड करवाना है या हम इसे लेना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, तो जब पेपर्स देखते हैं तो वो तो उनकी पॉलिसी टर्म तो खत्म हो चुकी है और टर्म जो है वो आपको उसमें कोई पैसा नहीं मिलता है अनलेस समथिंग हैपन टू योर लाइफ, वो उस पैसा आपकी फैमिली को मिलेगा, राइट? टर्म जो है वो आप बड़ा अमाउंट कवर कर सकते हैं कम खर्चे में।
0: अच्छा।
1: और उसमें शालिनी जी टर्म 10 है, टर्म 20, टर्म 25, टर्म 30, तो 30 सालों तक वो हमारा जो बड़ा खर्चा है लाइक हमारी मॉर्गेज है 100,000 है, 500,000, 1,000,000 है वो, और जो बाकी हमारे घर के खर्चे हैं, गाड़ियों की जो पेमेंट्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का जो अमाउंट है, वो टर्म आपकी उस बड़े खर्चे को कवर करती है, राइट? दैट इज वन थिंग। और टर्म जो है जब खत्म हो जाती है तो आप अगर स्टिल आप उसको जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू कैन गेट अ न्यू पॉलिसी, बट वो आपने जो पहले ली थी, आप 10 साल पहले 20 साल पहले ली थी और आज की डेट में अगर नई पॉलिसी आप लेते हैं तो वो एज चेंज हो जाती है। और लाइफ इंश्योरेंस में हमेशा बताती हूँ कि एज की तरह जो है अकॉर्डिंग होती है। जो मेरे पास नया प्रोडक्ट आया है लाइफ इंश्योरेंस का, उसमें आप जो है अपनी लाइफ इंश्योरेंस का लिविंग बेनिफिट खुद यूज कर सकते हैं, मींस कि आप उसमें से पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं, वो पहले जो था वो नहीं था। That is a very very good thing. तो अपनी लाइफ इंश्योरेंस का लिविंग बेनिफिट हम इसको बोलते हैं। आपने 5 साल बाद 10 साल बाद आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी है तो जितनी कैश वैल्यू उसमें बनी है आप उसमें से विदड्रॉ करके अपना पैसा खुद यूज कर सकते हैं। और सेकंड जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो है कहते हैं कि बड़ा बेनिफिट आया है, आपने अगर मिनिमम भी स्टार्ट की है 50,000 से, ठीक है, तो 50,000 का जो कैश वैल्यू है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी और शिवानी जी इसका जो डेथ बेनिफिट है वो 50,000 का आने वाले 15-20 सालों में वो 100,000 में चला जाता है, लाख 2 लाख तक पहुंच जाता है वो 50,000 का,
0: बिल्कुल,
1: राइट? और इसमें आप अपना पैसा भी यूज कर सकते हैं लिविंग बेनिफिट, और आप जो है उसका जो पीछे से फैमिली है वो डेथ बेनिफिट भी आपका 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा उसका बन जाता है तो वो यूज कर सकती हैं। तो बच्चों के लिए अगर आप छोटे बच्चों के लिए साथ की साथ करवाते हैं और उनको फिर उनकी पढ़ाई में भी पैसा यूज कर सकते हैं, जैसे जब भी उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है RESP में पैसा पूरा अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। बच्चों ने आगे अगर घर लेना है कुछ है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट उनका जो है वो कैश वैल्यू का बन जाता है तो वो वहां से पिक करके वो भी पैसा यूज कर सकते हैं। और प्रीमियम जो है बच्चों का तो बहुत ही कम आता है, आप $2, $3, $1 के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द जो टोटल अमाउंट है कवरेज और एज के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं.
0: क्या बात है?
1: जी आप मेरा नंबर बताइए और उसका कॉम्बो प्लान भी हम बना के देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एनालिसिस ऑफ द क्लाइंट. डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें हम आपके मिनिमम क्रिटिकल भी जोड़ देते हैं साथ में.
0: क्या बात है, कंप्लीट पैकेज. देखिए हर के लिए आपको अलग अलग टाइम शॉप अराउंड करने की ज़रूरत नहीं है. आजकल टाइम बड़ा प्रेशियस है, हर पीजी सब कुछ है पर टाइम किसी के पास नहीं है. तो ये प्रेशियस टाइम को सेव कीजिए, एक ही जगह पर जाइए, एक ही नंबर घुमाइए और सारी सर्विसेज जो है आपकी हैंड्स रीच पर होंगी और आपको शॉप अराउंड करने की भी टेंशन नहीं लेनी है. हरप्रीत जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील्स आपको लेके देती हैं, शॉप अराउंड करती हैं आपके लिए, आपके बजट में रहे. आजकल का जो टाइम है उसके लिए सभी लोग फिक्रमंद हैं और हरप्रीत जी को अवेयर है इस बात के लिए कि आपको अच्छी से अच्छी डील्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले और बड़ी कन्वीनियंस के साथ आप फैमिली के साथ इंजॉय करें. 6473346611 नंबर एक बार फिर से बता दूँ. जी
1: जी जी शिवानी जी, एक बात मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी हमारे लिसनर्स को कि आप कई मेरे पास फोन आ जाते हैं कि आफ्टर 5 इयर्स हमारा लाइफ इंश्योरेंस का जी $4 बढ़ गए हैं, $10 बढ़ गए हैं, फिर 5 सालों बाद 10 साल बाद फिर बढ़ गए हैं. मैं वो दे आर डिफरेंट पॉलिसीज, उनको भी मैंने कई क्लाइंट्स को जो है क्लैरिफाई किया है कि ये इसकी डेफिनेशन ये है जो आपके पास प्रोडक्ट है किसी और से लिया है. बट मैं अपने वर्ड्स को बताना चाहूंगी कि जो हमारे से लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, डिसेबिलिटी लेते हैं, अगर आज की एज में आपने जिस प्रीमियम के साथ लिया है, आपकी पॉलिसी चाहे परमानेंट है, एज 100 तक की कवरेज है, या आपकी टर्म पॉलिसी है 20 की 30 की, आज जो प्रीमियम का रेट आपको दिया है वही रहेगा जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी, एक भी पैसा उसमें से आपका इंक्रीज नहीं होगा.
0: क्या बात है, अनदर एक और फेदर जोड़ दिया है हरप्रीत जी ने आपकी खुशियों में. 6473346611 हरप्रीत जी, प्लेजर हैविंग यू विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू सो मच शिवानी जी, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू, टेक केयर,
1: यू टू, बाय बाय.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 pounds की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: This is Lovey Dovey Show। मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिस्टनर्स। और ये है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स। जाना पहचाना ये कोर्स है। अरसे से ये जो लवी डवी शो रेडियो टोरंटो कनाडा की जानिब से आपको दिया जा रहा है। कितने ही ऐसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अपना अपना बिजनेस जो है इससे करने के बाद शुरू कर चुके हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपना बिजनेस अब खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं। हायरिंग के लिए किसी को हायर करके ज़िंदगी भर पेमेंट करने से अच्छा एक छोटे अमाउंट दे के आप ज़िंदगी भर के लिए अपना खुद प्रमोशन कर सकते हैं A to Z। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डिजिटल मीडिया कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आफीफ अली। आफीफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
6: Good morning, I'm well, how are you?
5: बिल्कुल ठीक ठाक, all good, thank you so much for asking। और डिजिटल मीडिया कोर्स के हवाले से सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स जो नए नए लिसनर्स रोज जुड़ते हैं, तो सबसे पहले ये हमसे जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स क्या है।
6: ओके, सो ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स है विच इज कल्मिनेशन ऑफ काफी डिफरेंट जो है ना फील्ड्स ऑफ मीडिया। इसमें कंटेम्प्रेरी मीडिया भी आ जाती है, जैसे फिल्म एंड टेलीविजन हो गई एंड सोशल मीडिया भी आ जाती है, राइट? तो इसमें हम सिखाते हैं काफी चीजें।
5: अच्छा।
6: सबसे पहले आपको कंटेम्प्रेरी मीडिया में सिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, कैमरा कैसे यूज करना है, उसके बेसिक्स, ISO वगैरह क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है, राइट? उसके बाद अगर हम डिजिटल साइड पे आए तो हम पढ़ाते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सच एज कि आपको अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वर्टिकल फील्ड मोर ऑफन, तो उसमें कैमरा जो है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसकी डिफरेंट चीजें सिखाते हैं। बहरहाल ये सिखाते हैं कि उसमें आप किस तरह रील्स बना सकते हैं, क्योंकि टाइम स्पैन भी छोटा होता है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको अपना मैसेज देना है, वो आप कैसे करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग सिखाते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स होते हैं आपको, फिर सिखाते हैं कि पोस्टर रील्स कैसे बनाते हैं, काफी सारी चीजें। और उसके बाद आखिर में आता है कि एडिटिंग, आखिर में तो नहीं लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस का, वो कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है, राइट? और एडिटिंग के लिए हम सबसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोबी प्रीमियर प्रो, वो सिखाते हैं।
5: एंड
6: उसके बाद हम, जब आपका एक वीडियो बन गई या आपका एक प्रोडक्ट बन गया, तो आपने वो अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं इस कोर्स में। एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइक 4 weeks का कोर्स है,
5: ठीक है,
6: सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 1 PM to 6 PM।
5: जी, 1 PM to 6 PM, महज 4 हफ्तों में, वो भी सैटरडे और संडे जब मसरूफियत नहीं होती है, उसमें आप ये आइए कोर्स कीजिए और सिर्फ 4 हफ्तों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। जिंदगी भर के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो आप खुद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। कंटेंट क्रिएशन और जो पंच लाइन होती है, जो टैग लाइन होती है, वो सब भी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फंडिंग?
6: जी बिल्कुल, पंच लाइन टैग लाइन ये भी हमारे जो राइटिंग के अंदर आता है ना उसमें आ जाता है।
5: अच्छा, ठीक है।
6: कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ब्रांड है तो आप उसकी जो है ना एक टैग लाइन क्या बनाएंगे या फिर आपके एड की पंच लाइन क्या होगी ये सारा भी सिखाया जाता है। एंड फंडिंग जहाँ तक आ जाते हैं तो फंडिंग भी सिखाते हैं क्योंकि कैनेडा में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को फंड करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है ये सारा सिखाया जाता है।
5: जी बिल्कुल, और उसके लिए नंबर एक ही घुमाना है आपको, एक छोटा सा अमाउंट, वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू व्हाट यू विल बी टॉट इन द कोर्स, बहुत रीजनेबल अमाउंट है जिंदगी भर के लिए, सिर्फ वन टाइम फी है ये। 416-303-3639, आई रिपीट द नंबर 416-303-3639। हफीफ, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
6: या मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज ये जो कोर्स है ये हमने बनाया इसलिए है कि वो लोग जो खुद अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहे या फिर वो खुद अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको शौक है कि उनको जो है ना एक इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर उनको वीडियोस बनाने का शौक है तो ये स्पेशली हमने उन लोगों के लिए बनाया है।
5: अमेजिंग।
6: तो मेक श्योर यू कम टू दिस कोर्स एंड जब आप आएंगे आपको खुद सीखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा इस कोर्स देने में।
5: क्या बात है, तो बस मजे मजे में प्रोफेशनल बनिए और बहुत जल्दी से चार हफ्तों में प्रोफेशनल बन जाइए इस कोर्स को करके। 416-303-3639। हफीफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, प्लेजर हैविंग यू विद अस, थैंक यू।
6: थैंक यू सो मच।
0: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
5: एक बात होठों तक है जो आई नहीं, एक बात होठों तक है।

बाहें डाल के इठलाए वो, लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है, खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बे आवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है, ये जाने कैसा राज है।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
5: सिर्फ मॉर्गेजेस। दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 License number 12374.

0: राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
3: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
4: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
3: क्या वो मदद करेंगे?
4: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
5: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
4: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
5: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
6: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
7: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
8: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਿ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
9: लवी रवि शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। वक्त हो चला है 10:12 का। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब हम खुश होते हैं, जब हम कोई किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और हम ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी हेल्थ को अच्छा रखना। किसी से आप पूछिए कि सबसे ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी में क्या है, कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा घर लेना है, कोई कहेगा हॉलीडे पर जाना है, कोई कहेगा फैमिली के साथ है, कोई कहेगा शादी करनी है, नो कंपेनियन लेना है। लेकिन अगर सही मायने में देखें, तो मैंने पिछले लिंक में भी एक बात कही थी कि अच्छी सेहत अगर साथ में है ना, और एक काम सोल, एक शांति अंदर आपके दिल में है और अच्छी सेहत है, इससे बड़ी जो दौलत है वो कोई और हो ही नहीं सकती। अच्छी सेहत जो है ना, वो हर एक खुशी का रास्ता खोल देती है। अब अच्छी सेहत कैसे आएगी जब हमारी सेहत, आजकल तो देखिए हर दूसरे दिन, आजकल पहले होता था ना कि कुछ बीमारियां एज के साथ आती थी, अब छोटे बच्चों से लेकर कोई एज का कोई बार ही नहीं है, किसी भी उम्र में कोई भी बीमारी हो सकती है। लोग परेशान हैं, लोग स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, सब कुछ है, अच्छी सेहत नहीं है। और अच्छी सेहत अगर ज़िंदगी भर के लिए अच्छी रहे, परमानेंट ट्रीटमेंट हो, तो क्या ही अच्छा हो। ये एक सपना लगता है, ये एक ड्रीम लगता है, लेकिन ये सपना नहीं है। ये सपना आपके लिए सच होता है जब आप एक जगह पर जाते हैं, एक नंबर डायल करते हैं, और वो नंबर है आयुर्वेद और हर्ब्स गुरु जी का। और दोस्तों, ये जो नंबर है, ये अपने पास हमेशा सेव रखिए, अपनों के साथ शेयर करिए ये नंबर, क्योंकि यही नंबर और गुरुजी ही आपको परमानेंट ट्रीटमेंट देकर आपको हमेशा के लिए सेहतमंद बना सकते हैं। बीमारी कितनी भी बड़ी हो, गुरुजी से बड़ी नहीं है। 4374383399 4374383399। 9 जनरेशन से, 9 पीढ़ी से गुरुजी और उनका जो परिवार है, उनके जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, इसी प्रोफेशन में हैं। और मुगल्स के टाइम में, राजा महाराजा के टाइम में उनके राजवैद्य हुआ करते थे, तो यही लेगेसी जो है वो गुरुजी कैरी कर रही हैं। 4374383399। नमस्कार गुरुजी, कैसे हैं आप?
10: नमस्ते नमस्ते बहन जी, गुड मॉर्निंग भैया को भी, गुड मॉर्निंग आपको भी,
9: गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी,
10: बताइए बहन जी।
9: जी गुरु जी, देखिए आजकल क्या हो रहा है कि अभी मैं आज सुबह आ रही थी तो मेरे पास 2 कॉल आए, और आज उनके साथ अपॉइंटमेंट था, तो उन्होंने दोनों ने कहा किसी का जो बच्चे हैं, किसी के घर में कोई चीज़ है। अब देखिए, सब बड़े सुबह सुबह एक अच्छा फील करना चाहिए, लोग बड़े लो फील करते हैं। डेफिनेटली जब तबीयत ठीक नहीं होती तो अच्छा फील भी नहीं होता है। तो कैसे मदद करते हैं? और वैसे तो हम मैंने खुद देखा है आपके पास इतनी लंबी लाइनअप है, लाइलाज बीमारियों में आपने ट्रीटमेंट किया है, तो ये क्या जड़ी बूटियां जो आप लेकर आते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है, कैसे ये सब कर पाते हैं?
11: ये आप अच्छा किया था, सही किया था, ये भगवान को आशीर्वाद है, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। मैं ये वैद्य कर रहा है, मैं आज कल से नहीं है, नौ जनरेशन से पापा दादा पदादा वैसा वैसा से मैं जनरेशन टू जनरेशन से ये काम मैं कर रहा है
9: जी।
11: ये सारा वेद जड़ी बूटियां सारा हिमालय से लेकर आता है
9: जी।
11: और ये जड़ी बूटियां भी आपको पास अभी शेयर करना है, जड़ी बूटियां भी वैसा के वैसा नहीं लेना है। जड़ी बूटियां लेने के टाइम होता है, सुबह 6 बजे के पहले लेना है थोड़ा, सम जड़ी बूटियां 12 बजे के लेना है
9: जी।
11: यस, चल सम जड़ी बूटियां शाम को लेना है, इसके लिए उसको टाइम होता है, जड़ी बूटियां का लेने के टाइम, वो टाइम में लिए थे ये काम करता है
9: जी।
11: नहीं तो वरना ये जड़ी बूटियां वैसा टाइम में टाइम चेंज करके लिए तो उसमें तो उसमें काम नहीं करता है। और उसको प्रोसेसिंग भी टाइम वो प्रोसेसिंग भी होता है, प्रोसेस शुद्ध करना है, सारा जड़ी बूटियों का शुद्ध करके उससे औषध दवा बनाया तो ये हमारा बात सुनेगा। इसका मतलब क्या है, हम किसके लिए दवा देता है उसको ये काम करेगा। वैसा जड़ी बूटिया का काम में आज से नहीं, हमारा 5000 से 6000 साल से हमारा आयुर्वेदिक हमारा ऋषि महाऋषि मुनि मुनि मुनीश्वर से सारा यही काम करके हमारा रोग को दूर कर दिया था पहले। आपको मालूम बहन जी 70-80 साल के पहले हमारा इंडिया में MBBS डॉक्टर बहुत कम था। उस टाइम लोगों को इलाज करने के लिए जाना है हकीम के पास, वैद्य के पास और मुनीश्वर के पास जाता है,
9: चाहे
11: तो वो नाड़ी देखता है, फल्स देखता है। नाड़ी फल्स में उसको वातक दोष, पित्त दोष, कफ दोष रहता है। ये 3 दोष को कौन सा जड़ी बूटी देता है वैसा देता है। उस टाइम हमको 60-70 साल के पहले वो नहीं है, ब्लड टेस्ट करने के लिए वो लेबोरेटरी और स्कैनिंग मशीन वो सभी कुछ नहीं था। तब भी नाड़ी देख के वो आपको क्या प्रॉब्लम बताएगा, उसको एग्जांपल क्या है, अभी जनरेशन पे भी नौ प्रेजेंट जनरेशन से भी हमारा गांव में बड़ा बड़ा लोग नाड़ी देख के आपको प्रेग्नेंट हो गया नहीं हो गए भी बताएगा। आपकी भी अभी बहुत बहुत सिनेमा में भी देखता है, वो भी ट्रू है, वो ट्रू है। वैसा वो नॉलेज से हम ये काम कर रहा है, बहुत लोगों को इलाज हो रहा है
9: जी।
11: उसमें हम ये केरला में है, ये केरला में क्लाइमेट के लिए हमारा खाना पीना के लिए हमारा वो सिचुएशन के ड्रेने के लिए इधर बहुत बहुत लोगों को बहुत बीमारियां आता है। उसमें ये ज्यादा है जॉइंट में बीमार आता है इधर
9: जी।
11: जॉइंट में विटामिन डी कम हो के वो जॉइंट को अंदर वो ज्यादा वो यूरिक एसिड बैठता है। यूरिक एसिड बैठ के आर्थराइटिस प्रॉब्लम इधर ज्यादा होता है, ये कोल्ड के लिए। लोअर बैक पेन होता है हमारा भाई बहन लोग, बहुत लोग ट्रैवलिंग करता है, वो कार चल रहा है, ट्रक चल रहा है, बहुत देर बैठ के हमारा वेट पूरा लोअर बैक में जाके लोअर बैक में L2, L3, L4 में बल्जिंग होके वो सायटिका पेन, लोअर बैक में डिस्क प्रॉब्लम आता है। उसको लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, उसको बहुत लोग आके ठीक हो गया था। और स्किन प्रॉब्लम के लिए छोटा बच्चे से बड़ा लोगों को तक इधर स्किन प्रॉब्लम ज्यादा लोगों को हो रहा है। स्किन प्रॉब्लम के लिए हमारा बस बहुत लोग हो गया, 1 वीक को अंदर उसको इफेक्ट हो गया था, ठीक भी हो गया था।
9: क्या बात है, अमेजिंग।
11: और दूसरा प्रॉब्लम ज्यादा इधर डायबिटिक के लोग ज्यादा लोग है जी। डायबिटिक को लोगों को इधर क्या प्रॉब्लम होता है, यूरिन को कंट्रोल नहीं करता है। विदाउट डायबिटिक लोगों को भी 60+ लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होके यूरिन नहीं रुकावट होता है, बार बार जाना पड़ता है, रात को 2-3 बार उठता पड़ता है और यूरिन जाने तक नहीं रुकता है, वो लीकेज भी होता है बहुत लोगों को। वैसा लोगों को भी मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है, वैसा लोगों को बहुत ठीक हो गया था हमारा पास वो अच्छा है जड़ी बूटिया से, वो विदाउट ऑपरेशन से हमारा वो यूरिन में वो ग्लैंड को भी प्रोस्टेट ग्लैंड को भी कंट्रोल करने के लिए, और प्रोस्टेट नहीं तो भी थोड़ा लोगों को यूरिन जाता रहता है, फ्लो कम हो जाता है, वैसा भी हमारा बहुत लुप्त किया है ऊपर वाला का आशीर्वाद से
9: जी।
11: और शुगर भी कंट्रोल कर दिया था जड़ी बूटिया से मैंने, सारा भगवान का आशीर्वाद था। हम करता हूँ ये काम भगवान को आशीर्वाद से करता हूँ, हम कुछ भी नहीं है, सारा भगवान को आशीर्वाद से करता हूँ। आपको भी मालूम है मैं, आप एक बार मेरे पास आने के टाइम कितना लोग ठीक हुआ, आपको भी फीडबैक दे दिया।
9: बिल्कुल बिल्कुल, और कॉल आते रहते हैं हमारे पास और लोग हमें कहते हैं कि जब आप गुरुजी से मिलवाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल गई है, हमारी जीवन बदल गया है, लाइफ बदल गई है। ऐसे ही होता है गुरुजी, जब हमारी सेहत अच्छी होती है ना, जब कोई भी इंसान अपने बच्चों को अपने फैमिली को एक अच्छी सेहत में देखता है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो बिल्कुल ट्रैक पे आ गई है। कोई भी स्ट्रगल का हम फेस कर सकते हैं अगर हमारी सेहत हमारे साथ होती है तो। 437-438-3399 यहाँ ये ज़रूर बताएंगे। गुरुजी का कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, बड़े सेवा भाव से गुरुजी सबके दुख दर्द ठीक करते हैं, तो कंसल्टेशन का कोई भी चार्ज नहीं है। चार दिन गुरुजी ब्रैम्पटन में होते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, तीन दिन गुरुजी स्कारब्रो में होते हैं। आप जो भी आपके घर के नज़दीक पड़ता हो, जहाँ भी आप जा सकते हैं जाइए, और अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों के, अपने लव्ड वंस के सारे दुख दर्द हेल्थ रिलेटेड इशूज़ ठीक कीजिए। 437-438-3399 गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने का।
11: थैंक यू बंजी, नमस्ते नमस्ते। शुभ दिन है आपको, आज शुभ दिन है हमारा। और दूसरा बात भाई, हमारा भाई भाई लोगों को, मुस्लिम भाई को आज ईद है, सारा लोगों को हैप्पी ईद है बंजी।
9: जी बिल्कुल, आज ईद है और आमिर जी को भी मैं आपकी ओर से ईद की पूरी पूरी बधाई दूंगी।
11: हमारा भाई को भी बताइए।
9: बिल्कुल, नमस्ते जी।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: लवी शो पर आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स के बैचेस टाइम टाइम पे आप शुरू करते हैं
5: जी।
4: चार हफ्ते का ये कोर्स होता है
5: जी।
4: और हर हफ्ते में दो दिन बड़ी कन्वीनियंटली सैटरडे और संडे हम ये क्लासेस रखते हैं, पांच घंटे 1 बजे से 6 बजे तक, जिससे कि कन्वीनियंटली हमारे स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं। और इतने सैकड़ों लोग, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोफेशनल बन चुके हैं बड़े ही एक महीने में, जो जीरो नॉलेज रखते थे वो 100% नॉलेज के साथ अपना बिजनेस खुद प्रमोट कर रहे हैं।
5: बिल्कुल ऐसा ही।
4: ये तो बात थी कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तबके के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हाउस वाइफ्स आती हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं। यहाँ हम आज बात कर रहे हैं उन ऑफिसेस की, उन कंपनीज की, जो अपने एम्प्लॉयज को डिजिटल मीडिया में ट्रेन करना चाहते हैं।
5: बिल्कुल ऐसा ही।
4: और ये पूरा ग्रुप होता है जो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठता है और उसको उनको ट्रेन किया जाता है, जिससे कि वो अपना कॉन्सेप्ट और जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है जो उनको प्रमोट करना है वो अपने तरीके से और पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ कर सकें। तो आमिर, कैसे हेल्प करता है इसमें डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स?
5: बिल्कुल जी, आपको बता दें शिवानी कि हम ऑन लोकेशन ट्रेन करते हैं लोगों को। एक तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन का कोर्स वो है जो वीकेंड ओनली है, सैटरडे संडे है, जिसको हम चला रहे हैं। कोर्स इज रनिंग क्वाइट सक्सेसफुली। और दूसरा वो कोर्स है जो हम ऑन लोकेशन देते हैं।
4: अच्छा।
5: मंडे टू फ्राइडे, कोई से भी दो दिन रख लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे कोई से भी दो दिन रख लेते हैं, दोनों अतराफ की बाहमी रजामंदी के साथ। यानी जिनको हमने ट्रेन करना है वो दे देंगे दो दिन और हम देखेंगे हमारे पास वो दिन है कि नहीं। दो उसके बाद तय पा जाएगा कि ये दो दिन ट्रेनिंग के होंगे। हम उनकी लोकेशन पे जाएंगे, शर्त सिर्फ ये है कि 8 से 10 लोग होने चाहिए।
4: अच्छा।
5: उन्हीं के कॉन्फ्रेंस रूम में, उन्हीं के बोर्ड रूम में 8 से 10 चेयर्स लगा के वहीं पे हम एक महीने के अंदर उनके स्टाफ को ट्रेन करेंगे।
4: अच्छा।
5: बजाय इसके के एक ब्रोकरेज किसी रेडियो, किसी टेलीविजन, किसी डिजिटल मीडिया के प्रोफेशनल को कॉन्ट्रैक्ट दे, हम आपके पास आते हैं, हम आपके सारे स्टाफ को ट्रेन कर देंगे। आपको सस्ता भी पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आप कन्वीनियंटली अपने ऑफिस में वो ट्रेनिंग ले लेंगे। इसमें मार्केटिंग भी है, कन्वेंशनल मार्केटिंग भी है, मॉडर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी है, कन्वेंशनल मीडिया भी है, मॉडर्न मीडिया भी है। और आपको वो स्किल्स सिखाए जाते हैं कि आप रियल स्टेट में हैं तो अपने वर्चुअल टूर्स हुए, रील्स हुई, घरों की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज हुई, आपने कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है वीडियो के अंदर, वो कैसे बनानी है फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, पोस्टर कैसे बनाना है, आर्टवर्क कैसे बनाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे उसको इनकॉर्पोरेट करके आपने फॉलोइंग या सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ानी है, और सबसे बढ़कर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाइप कैसे क्रिएट करनी है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है, प्लान क्या बनाना है, ये सब बताया जाएगा। आप ऑन लोकेशन हमारा ट्रेनिंग सेशन बुक कीजिए, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एक ऐसा स्किल सीखिए जो आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगा। नंबर ये मिलाएंगे आप 416-303-3639। पूरे जीटीए में आप कहीं भी हैं, 8 से 10 लोगों का ग्रुप है, हम आपके पास आएंगे हफ्ते में दो दिन, आपको ट्रेन करेंगे, मंडे टू फ्राइडे 12 से 5 के बीच की टाइमिंग होगी। नंबर अगेन 416-303-3639।
4: नंबर एक बार फिर से 416-303-3639। इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को बुक कर सकते हैं आप इस कोर्स के लिए। स्टे ट्यून्ड। लवी रवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555 905-731-2555 रूहानी कॉलेज।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रिफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
6: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th generation एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर। ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
0: लवी डवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। 416-303-3639। 20 degrees Celsius टेम्परेचर, बहुत खूबसूरत सा दिन और दोपहर में तो अच्छी खासी गर्म दोपहर आपको मिलने वाली है। 25 degrees to 26 degrees Celsius शो हो रहा है इस वक्त, विद टन्स ऑफ सनशाइन। ऐसे में अपने आप को हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी है, लिक्विड इनटेक करना बेहद ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इन्जॉय समर टाइम। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम जब पानी पीते हैं ना, तो सिर्फ पानी पानी पीते रहना बोरिंग हो सकता है, और इसीलिए हमें अपने डाइट में अगर हम ऐसे कुछ वेजीज और फ्रूट्स शामिल करें जिसमें बहुत सारा पानी हो, तो हमारा पानी भी इनटेक हो जाएगा और फ्रूट्स और वेजीज का जो टेस्ट है उसके ज़रिए हम वाटर की भी जो अपने रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी में वो पूरी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ईट योर वाटर, पानी पीजिए नहीं, पानी को खाइए। अब कैसे खाइए? कुछ चीज़ें खाइए जिनके ज़रिए आपको पानी भी मिल जाए। अब जैसे अगर हम एप्पल्स की बात करें तो उसमें 84% वाटर होता है, स्ट्रॉबेरीज़ की बात करें 90% वाटर होता है, आइसबर्ग लेटस की बात करें तो 96% उसमें वाटर होता है। तो अगर आप लेटस खाते हैं तो यकीन मानिए 96% तो वाटर ही आप इनटेक कर रहे हैं। वाटरमेलन में 92%, ऑरेंजेस में 87%, स्पिनिश में 96%, सेलरी में 95%, टमेटोज में 93%, ग्रेप फ्रूट में 91% वाटर और क्यूकम्बर में तो 96% वाटर होता है। ये सब चीज़ें, ये इनमें से कुछ भी चीज़ें, एक या दो चीज़ें आप अपनी डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट करते रहिए और टेस्ट के साथ साथ वाटर की कमी को भी पूरा कीजिए। और फिलहाल तो अगला गाना आपके लिए, इंजॉय दिस ब्यूटिफुल ट्रैक, ममता शर्मा ऐश्वर्या निगम का गाया हुआ मुन्नी बदनाम फ्रॉम द मूवी दबंग, 416-303-3639।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
4: Nikki Gandhi of Home Life Miracle Realty brings you brand new freehold townhomes in Brampton. Mavis Road and Ray Lawson Boulevard ke Asan se intersection par Rollingwood Towns launching June 1st. Starting price just from $600,000. 3 se 5 bedroom options available. Approximately 1300 se 1900 square feet ke layouts available. Extended deposit structure, extended closing available and great incentives for first time home buyers. Early launch pricing or limited release ke liye exclusively call Nikki Gandhi at 416-456-3815. That's 416-456-3815. Your trusted listing agent for Rollingwood Towns for VIP access pricing and floor plans. Don't miss this opportunity.
5: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: लवी डवी शो, और अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, डिजिटल मीडिया कोर्स के हवाले से बातचीत करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके की हमसे आप शो रिलेटेड किसी गाने की फरमाइश करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं, कस्टमाइज प्रमोशन डिज़ाइन करना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 416-303-3639। राजा हिंदुस्तानी कौन भूल सकता है, इस फिल्म को 15 नवंबर 1996 को रिलीज़ हुई थी, धर्मेश दर्शन के डायरेक्शन में, और नदीम श्रवण का सुपर हिट म्यूज़िक था, और आमिर खान और करिश्मा कपूर मेन लीड रोल में थे, और तबाही मचा दी थी इस फिल्म ने पॉपुलैरिटी के हवाले से। और बड़े इंटरेस्टिंग सी फैक्ट्स भी हैं इस मूवी के। ये मूवी की पहली जो इसमें हीरोइन की पहली चॉइस जो थी करिश्मा कपूर की जो रोल था उसके लिए पहला चॉइस जो था वो ऐश्वर्या राय का था। उस वक्त वो अपने पेजेंट की तैयारी कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं ये रोल के लिए टाइम नहीं दे पाऊँगी, तो लिहाजा दूसरा जो सेकेंड इन लाइन जो ऑफ़र मिला, ऑफ़र दिया गया, वो जूही चावला को दिया गया। लेकिन इस मूवी से पहले की कुछ फिल्मों में उनकी आमिर खान के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो उन्होंने अवॉइड करना ठीक समझा, तो वो भी इससे अलग हो गई। पूजा भट्ट के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, वो इस फिल्म का ऐसा नहीं बन पाई, लिहाजा करिश्मा कपूर को अप्रोच किया गया और ये इन दोनों की जो जोड़ी थी आमिर खान और करिश्मा कपूर, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म को किया और इट वॉज़ एन अमेजिंग अमेजिंग हिट फिल्म। और इसका गाना था आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, सारे गाने हिट थे इस फिल्म के। उसको अलका याग्निक ने भी गाया था और उदित नारायण ने भी गाया था। यहाँ प्ले कर रही हैं उदित नारायण की आवाज़ में, ओनली ऑन लवी डवी शो।

0: Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
1: लवी डबी शो, और इसी के साथ आमिर और शिवानी को आप दीजिए इजाज़त. कल होती है आपसे मुलाकात. रखिएगा अपना बेहद ख्याल. इन्जॉय द डे. एक बार फिर से आप हमारे लिसनर्स को ईद मुबारक. और किसी भी जानकारी के लिए हमसे रीच करने का नंबर है, हमसे रबते का नंबर है 416-303-3639. 416-303-3639. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. नमस्कार.

लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम प्रोवाइड करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 months एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
3: Rano ready!
4: Advertise your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: listen to us. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहां बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट। Asians is the best.
2: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1,000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000, 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहाँ न्यूज़, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और बाहर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर इज गोइंग टू हिट 25 टुडे एंड नाइट इज गोइंग टू बी एट 12, टुमारो 20 and 10, फ्राइडे को 25 डिग्री टेम्परेचर फिर से, एंड सैटरडे इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल 19 डिग्री सेल्सियस with 9 degrees minimum। And आप हमारे सारे भाई बहनों को जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद मुबारक, हमारी पूरी टीम की तरफ से, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो CMR 101.3 FM की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। एंड स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, आज आपकी जो ईद के मौके पर सॉन्ग रिक्वेस्ट हैं कॉल करके आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वी विल प्ले ऑल योर रिक्वेस्ट टिल 2 PM एंड सेलिब्रेट ईद विद यू एंड योर फैमिलीज। 416-593-0055। सवा बारह की हेडलाइंस बिल्कुल रेडी है एंड उसके अलावा स्पॉन्सर्स के मैसेजेस। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर ईद की स्पेशल सेल, स्पेशल डील चल रही है ऑन टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री। देर ओपन 11 AM टू 7 PM 7 days अ वीक, 801 Bovade Drive West at the corner of Bovade and Chikusi in Brampton. So we will, you know, have Sultan Ji over on air aur kuch amazing Eid wali deals aap tak zarur pahunchayenge. Win lifetime trading 905-206-1008. Free seminar hota hai har Saturday afternoon 12:30 to 3:30. Aap apni seat zarur reserve karwa lein. Call karke apni seat reserve karwa lein. Please don't walk in. And finally, the power, jo kal outage power hua tha Toronto mein, it came back and things did go back to normal, but it was few hours ki power outage report hua tha kuch transmission failure ko lekar, and TMU, Toronto Metropolitan University mein bhi jo hai power failure jo hai dekha gaya hai. And city ने outline किया है extreme heat plan, obviously तैयारी चल रही है एक तरफ FIFA की और एक तरफ जो आने वाले हफ्तों में weather sort of expected है। Western Europe की बात करें वहाँ पर भी heat wave का कहर है। India Pakistan की बात करें some record breaking temperatures देखने को मिल रहे हैं, and India के तकरीबन हर हिस्से में, हर कोने में, और पाकिस्तान के भी हालात कुछ इसी तरह से हैं with the weather absolutely crazy heat wave, and अभी तो सिर्फ मई का एंड हो रहा है, वी स्टिल हैव लाइक लॉन्ग वेज टू गो, यू नो, खासकर जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, लॉन्ग वेज टू गो बिफोर यू नो द समर एक्चुअली सेज गुड बाई। ए लॉन्ग समर होने वाली है। And reports says Toronto among cities driving Canada's progress on diversifying trade beyond US and tariffs ki taraf se ye report aayi hai, and US trade rep says tariffs on Canada Mexico will remain despite CUSMA trade pact. So CUSMA पे ऊपर डील हो भी जाती है तो भी टैरिफ्स जो है विल रिमेन एज इज फॉर नाउ, और कुस्मा को लेकर भी अभी काफ़ी जो है एक मिक्स रिपोर्ट है, नथिंग मच कमिंग आउट। पार्लियामेंट हिल की तरफ से खबर आई और

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर everything automotive। चाहे हो डेली commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same। हर journey को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ। Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language। Offering 9 brands across 15 dealerships। From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there। आज ही visit करें waynesautogroup.com।
3: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर, जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, East or West, Asians is the best.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट
2: पूजाहट.com। इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: लेक डेदा प्लान सी, पर टोयोटा टंडरा दे बिना सकून नहीं, शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंडरा ले आओ, ता इस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेड टेक डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टंडरा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर खोल जा।
4: वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या, अपना ही रिश्तेदार होता है। किसी से अपने दिल की बात तू कहना ना भूले से, किसी से अपने दिल की बात तू कहना ना भूले से, यहां खत भी थोड़ी देर में अखबार होता है, यहां खत भी थोड़ी देर में अखबार होता है।
5: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

0: Welcome, our friends, and the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Asians, Popular South Asian Clothing and Textile Store, Clear Optical by Varun Kanda, Rajdhani Sweets and Restaurant, McVean Dental Care, Kavya Home You Care, as well as Win Lifetime Trading. Shuru karte hain taza tareen headlines. Big AI profits ke baad 78,000 Samsung workers set for 3 crore rupees in bonuses. Ukrainian drones ne Baltic airspace mein key entry, raising tensions with Russia. Washington mill mein chemical tank explode hone se ek shakhs ki maut hui, kai hue zakhmi. Donald Trump ne report kiya perfect annual medical checkup ahead of his 80th birthday. Israeli defense official ke mutabik, Gaza, Lebanon and Iran back group se hame lagatar threat hai. रिपोर्ट के अनुसार क्राइसिस के दौरान नेटो को यूएस की कम सपोर्ट मिलेगी, फ्यूअर बॉम्बर्स एंड वॉरशिप्स दिए जाएंगे. यूएस टेक फाउंडर्स ने न्यू ग्रीन कार्ड रूल पर कहा, फ्यूचर में हमारे पास कम डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी होंगे. बेल्जियम में हुई ट्रेन और स्कूल बस टक्कर में 4 लोग मारे गए, 5 हुए जख्मी. और ईरान ने यूएस स्ट्राइक्स को ग्रॉस वायलेशन ऑफ सीज फायर कहते हुए उसे कंडेम किया. रशिया ने और भी ज्यादा कीव स्ट्राइक्स की धमकी दी एंड टेल्स फॉरेन नेशनल्स टू लीव right away. NVIDIA to invest 12,000 crore rupees in epicenter of AI revolution, Taiwan. Local samacharon mein, Ontario auto theft probe leads to arrest of 9 suspects, jisme 7 teenagers shamil hain. Earlier switch issue ki wajah se all GO train lines seen significant delays or manager approval ke baad, Ontario civil servants ko World Cup ke dauran 2 days work from home ki ijazat milegi. Mississauga ka Paramount Fine Food Center to be renamed, and one crash mein motorcycle बुरी तरह हुआ जख्मी. मिसागा होम स्टैबिंग में 2 लोग हुए घायल. दूसरी ओर भारतीय समाचारों में, पंजाब लोकल पोल्स की वोटिंग के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने वायलेंस को लेकर ब्लेम गेम शुरू किया. ट्रेड पैक टॉक्स के लिए यूएस टीम टू विजिट इंडिया फ्रॉम June 1st टू June 4th, एंड 2025 के गंदा धर्म बयान को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज किया गया. आइडेंटिटी डिटेन एंड डिपोर्ट, केंद्र ने पैनल फॉर्म किया टू एड्रेस डेमोग्राफिक चेंज. एंड रेड फोर्ट ब्लास्ट के पीछे मिली फेक आईडीज, ऑनलाइन शॉपिंग स्प्री एंड होम ग्रोन बॉम्ब लैब. दिल्ली सीएनजी प्राइसेस हैव जंप्ड 6 रुपीज इन 11 डेज. दिल्ली अदालत ने चाइल्ड रेप कॉन्विक्ट को डेथ पेनल्टी डिनाई की. अदालत का कहना है कि इंसिडेंट डिड नॉट फॉल अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी. डाउरी हरासमेंट के बाद लखनऊ की महिला मृत पाई गई, ओनली 6 मंथ्स इनटू मैरिज. और दिल्ली के बकरा ईद के पहले इलीगल एनिमल सैक्रिफाइस पर क्रैकडाउन शुरू किया गया. दिल्ली गवर्नमेंट डिप्लॉयज रैपिड रिस्पॉन्स टीम. टूरिस्ट ने सिकम हिल्स को क्राउड किया, ट्रैफिक केओस एट 0 point. एंड इंडिगो एयरक्राफ्ट पर हुए स्मोक स्केयर के बाद इमरजेंसी इवैक्यूएशन करवाई गई. सूत्रों के अनुसार सिद्धरमैया टू रिजाइन, कांग्रेस बॉसेस ने डीवी शिवा कुमार को किया बैक. हैदराबाद के एक माउंटेनियर के परिवार ने बॉडी को एवरेस्ट पर ही छोड़ने का फैसला किया, और उन्होंने कहा कि भगवान शिव की गोद में है उनकी बॉडी. उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड इन असम नाउ. पाकिस्तान की खबरों से, एस्केलेटिंग टेंशन के बीच डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार और यूनाइटेड नेशन चीफ ने मिडल ईस्ट सिचुएशन पर की चर्चा. और कराची कैटल मार्केट ने 99% एनिमल सेल्स रिकॉर्ड किए, मोर देन 250,000 सैक्रिफिशियल एनिमल्स वर सोल्ड अहेड ऑफ ईद उल अदा. 5,000 रुपए के चलान के बाद इनरेज्ड ड्राइवर ने बस को झीलम नदी में गिराया. ड्राइवर और पुलिस ऑफिसर ने कूदकर अपनी जान बचाई. 4.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ने पंजाब के कुछ हिस्सों को हिलाया, एक शख्स की मौत हुई. पीएमडी के मुताबिक डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड एट 12 किलोमीटर्स. अर्थक्वेक का एपिसेंटर साउथ वेस्ट ऑफ झीलम बताया गया. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार ने वार्न किया कि प्रोलॉन्ग्ड मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल ऑर्डर को खतरा होगा. यूनाइटेड नेशन एड्रेस में उन्होंने पैलेस्टाइन और कश्मीर के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि पाकिस्तान, चाइना आर वर्किंग for the peace in Middle East together. Opposition ne Donald Trump ke Abraham Accord demand ko reject kiya, asked the government to take parliament into confidence. Aur Quetta attack par Field Marshal Asim Munir ne kaha, inhuman brutal attacks Pakistan ko kamzor nahi kar sakte. Quetta train attack mein 14 log shaheed hue. Field Marshal ne frontline troops ke saath Eid celebrate ki. Aur Pakistan marks Eid ul Adha with the prayers for peace in Middle East. स्पोर्ट्स जगत से सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर मैच से पहले पैट कमिंस की बिग वार्निंग, कहा विल ट्राई टू बी मोर अग्रेसिव और ब्रिलियंट. रजत पाटीदार लीड्स आरसीबी टू द सेकंड सक्सेसफुल आईपीएल फाइनल अनबीटन 93 रन्स ऑफ 33 बॉल्स. आरसीबी स्किपर सरपासेस विराट कोहली, क्रिस गेल एंड श्रेयस अय्यर टू क्लेम सेंसेशनल रिकॉर्ड. Hashmatullah Shahidi to lead Afghanistan in Test and ODI series against India, and Pakistan players unhappy hain with their cricket board. Bollywood khabron se, singers Abhijit ne Chunri Chunri remake ko slam karte hue kaha ki Varun Dhawan kabhi bhi Salman nahi ban sakta. Dawn 3 exit ko lekar Ranveer Singh ke khilaf action par Ashok Pandit ka kehna hai ki not a ban on Ranveer Singh but a temporary non cooperation directive. Hum koi adalat nahi hai ki we can ban people, we can't really do that. 30 crafts ke members ki choice hogi whether they want to work with Ranveer Singh or not. Dawn 3 controversy par director Sanjay Gupta ne film body ko indirectly slam kiya. Tushar Kapoor kehte hain ki Golmaal 5 shoot is 80 to 90% complete aur Jackie Shroff kehte hain ki Tiger Shroff pushed me towards fitness. Dawn 3 ki controversy ke duran actors body head Poonam Dhillo ne Ranveer Singh ko slam kiya aur kaha Ranveer could have come to us but he chose not to. Ye thi South Asian Unlimited Radio ki taza tareen headline. Studio ka number 416-593-0055. स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055, 416-593-0055. एक कॉलर है, उन्हें लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. गीत संगीत का कारवां चलेगा. आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
1: हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं
0: जी? जी ठीक हैं, आप सुनाइए.
1: अभी आपने शेर पढ़ा कि जिगर का कुछ हो गया, जिगर को जख्मी हो गया या उसका ब्लड निकल गया या क्या हो गया.
0: अच्छा जी,
1: जिगर से ज्यादा इम्पोर्टेंट दिल है. ठीक है.
0: अच्छा.
1: और जिगर आप कहते हैं किसको, ये समझ में आना चाहिए कि जिगर की कुर्बानी, जिगर से जिगर आप पे कुर्बान कर दिया या दिल आप पे कुर्बान है, फर्क है. कौन सा इम्पोर्टेंट है, या दोनों एक साथ कुर्बान करें वो ज्यादा बेहतर है. और आज तो ईद की कुर्बान भी है.
0: जिगर जो है वो आपका कलेजा है, वो मतलब साहस है, हिम्मत है, तो जिगर की इसलिए बात की जाती है.
1: जिगर कलेजा है जो सांस लेता है, वो है
0: नहीं, वो लिवर है जो कलेजा होता है, लिवर होता है.
1: अच्छा, लिवर होता है
0: जी.
1: तो लिवर, फैटी लिवर से भी तो आदमी जिंदा होता है, लेकिन हार्ट अटैक हो जाए
0: हाँ
1: तो आदमी मर जाता है. इसका मतलब है कि जिगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. दिल की तस्बीहात ठीक है, क्या कहते
0: हाँ
1: है?
0: लेकिन अगर दिल कमजोर होगा तो फिर आप जो है किसी पे प्रहार नहीं कर सकते वाली बात हो जाती है. सो जिगर की जरूरत होती है. दिल तो धड़कता है पर जिगर भी होना चाहिए.
1: नहीं, लेकिन दिल जो है ना वो मुसलसल इन एक्शन में है. ये आप देखे दिल जो है ना.
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी.
1: हाँ, तो जिसको कबूल करना है वो बंदे का दिल कबूल करे, जिगर ना कबूल करे. अच्छा, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ.
0: अच्छा जी.
1: वो ये है कि इंडिया में अभी गाय की कुर्बानी पे कुछ हंगामे या कोई मामला या कुछ
0: नहीं अभी फिलहाल. आज तो कोई रिपोर्ट इस तरह से आई नहीं है, बट शायद हो सकता कल तक कोई रिपोर्ट इस तरह से आ जाए.
1: हाँ, मैं इसमें एक बात करना चाहता हूँ कि गाय की कुर्बानी इसलिए करते हैं कि उसमें 8 हिस्से आप डाल सकते हो. ठीक है ना.
0: अच्छा जी.
1: और बकरे का एक हिस्सा होता है, तो अगर बकरा अगर 20-50 हजार का है तो गाय जो है हो सकता है वहाँ कोई 2 लाख की हो, तो उसमें 8 हिस्से डाल सकते हैं.
0: एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि सैक्रिफाइसिंग काउज और जो बछड़ा होता है कैमल्स ड्यूरिंग बकरीद इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड इलीगल इन मोस्ट स्टेट्स अक्रॉस इंडिया. ये लोकल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करते हैं एंटी काउ स्लॉटर लॉज. इवन सुप्रीम कोर्ट रेगुलरली डिसमिसेस पिटीशंस.
1: ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए. इंडिया को चाहिए कि ज्यादा तादाद में ऊंट मंगा ले. ऊंट पे 40, मेरे ख्याल में 40 हिस्से पड़ते एक ऊंट पे.
0: अच्छा जी.
1: तो गाय को क्या जरूरत है गाय काटना, अगर लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं या वो अच्छा नहीं फील करते हैं तो वैसे ही नहीं काटनी चाहिए. ठीक है ना.
0: ठीक है जी.
1: अगर आपने अपनी सेलिब्रेशन करनी है, और ज्यादातर जो सऊदीया में या जब इस्लामिक टाइम में ऊंट की कुर्बानी होती थी ज्यादा, गायें शायद तो वहाँ कहाँ करते होंगे, गायें होती भी नहीं थी मेरा ख्याल में उधर.
0: ठीक है जी, चलिए.
1: ऊंट ले आया करे, ऊंट की कर ले कुर्बानी भाई. ऊंट ज्यादा आसान है और ऊंट का गोश्त भी थोड़ा साल्टी होता है ना, अच्छा होता है. ये नियारियां शारियां जो खाते हैं ना,
0: हाँ हाँ,
1: उसमें ऊंट का गोश्त बड़ा अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपको ईद मुबारक, आप इंजॉय करें ईद जो है। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी ये डिस्कशंस। एशियंस एक बहुत ही पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग और टेक्सटाइल स्टोर है, मार्कम रोड और लॉरेंस एवन्यू के पास है, स्कारब्रो में, एंड 3601 लॉरेंस एवन्यू ईस्ट नंबर 23 यूनिट है, और यहाँ पर स्कारब्रो में। एंड यहाँ पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त फैशंस, डिज़ाइन, स्टाइल्स पहुँच चुके हैं, साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स। और ज़्यादा जानकारी के लिए 416-438-6568 एशियंस आपने याद रखना है। डॉन वैली नॉर्थ हांडे दे रहे हैं फीफा की टिकट्स, और ये बैलेट जो है ये ड्रॉ किया जाएगा ये जून के महीने में, बट ऑफर एंड होती है 31 मई को। और अगर आप हांडे की गाड़ी डॉन वैली नॉर्थ हांडे से खरीदते हैं तो टू नेम्स फॉर टू टिकट्स विल बी पुट इन फॉर द लकी ड्रॉ। इफ़ यू बाय विंटर टायर्स फ्रॉम देम विद स्टोरेज, वन नेम फॉर वन टिकट, और कोई एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करते हैं, वन नेम फॉर वन टिकट विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। 7537 वुडबाइन एवेन्यू इन मार्कम, स्टील्स वुडबाइन वाला मेजर इंटरसेक्शन। चलिए आज जहां पर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पे आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, वी विल प्ले देम। टुमारो 10 सेंट्स अ लीटर ड्रॉप होगा गैस में, टू क्लोज टू अबाउट $1.74 हो जाएगा। सो शुक्र है भाई, आज अगर बिना भरवाए रहा जा सकता है तो यू नो जस्ट वेट टिल टुमारो एंड सेव अनदर 10 सेंट्स। एंड चलिए किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में मैं तेरे प्यार में पागल, ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए लाइनअप कर दिया। एंजॉय करें एंड ईद को सेलिब्रेट करें हमारे साथ। वील बी बैक।

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries.
1: This is dangerous. Into the box.
2: Winter tires ya extended warranty le. Aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: 3 meter. ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 meter ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਛੂਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 meter ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ esasafe.com/stop-look-live ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और जितेंद्र गंदम हमारे साथ हैं, रियल्टर, और एक बहुत ही मस्कोका में अमेजिंग प्रॉपर्टी है, कॉटेज है, जिसकी जानकारी लेकर पहुंच गए हैं। 416-265-2222 जितेंद्र जी का नंबर। जितेंद्र जी, थोड़ा स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो ते।
4: हैलो, सत श्रीकाल जोशी भाजी, गुड आफ्टरनून। तो अब आप अपने स्रोतों लिए मस्कोका के कॉटेज लैके आए हैं। ये जी कॉटेज है, 2 acre के लॉट के बनी हुई है। 2 साल तो घट समा हो इस कॉटेज में बने हुए हैं। 3 bedroom ने, 3 washroom ने, प्लस थोड़े को अनफिनिश बेसमेंट है जिसे एक्सट्रा बैडरूम बना सकते हो। फुली अपग्रेड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पर चल रही है पिछले 1.5 साल तो। लास्ट ईयर 2025 के लगभग $100,000 के लगे शगे एयरबीएनबी का रेवन्यू से, प्लस ओनर आप भी उत्थे जाके रह रहे हैं। जे तुसी इस प्रॉपर्टी नू लेना चाहुंदे हो इदां दी कॉटेज, ते साडे नाल गलबात कर लिओ। साडा नंबर 416-265-2222। रियल स्टेट दी मार्केट दे विच कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहुंदे हो जां सेल करना चाहुंदे हो, कॉल 416-265-2222। थैंक यू वेरी मच
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। 416-265-2222, 416-265-2222 इज द नंबर।
2: Genesis Markham, yahan mile luxury ka first class experience with a state of the art dealership aur aapki apni language mein expert service. Lease kare beautifully designed 2026 G70 sirf 1.9% se, ya lease kare 2026 GV70 sirf 4.9% se. Aaj hi book kare test drive. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ, minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें, 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040। काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cotrell Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779. वेलकम बैक फ्रेंड्स, और हम पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर पर। गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओजा इन पिनाक ओजा जी, 10 Cotrell Boulevard, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन से आपको करते हैं सर्व, नॉर्थ पार्क और एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन। द क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे फॉर योर कन्वीनियंस, 10 AM to 6 PM। वॉक इन करें या अपॉइंटमेंट बनाएं, और ऑब्वियसली अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो फोन पर कंसल्टेशन करें और दवाई आपको शिप कर दी जाएगी। 647-760 2779-647-760-2779. देखते हैं मीता जी आज किस हेल्थ टॉपिक पर करेंगी बातचीत. मीता जी वेलकम टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो.
5: हेलो एवरीवन, क्या आप कोई भी एडिक्शन से परेशान हैं, एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी एडिक्शन हो गई है, मैरवाना ले रहे हैं या कोई वैपिंग कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं या फिर केमिकल नशा कोई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लोग इससे एडिक्टेड हो जाते हैं वो चीज़ को काफ़ी बार छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है बॉडी में कि एकदम से आपको तोड़ लगती है जब वो चीज़ आप नहीं ले रहे हो. आपकी लतें दर्द कर रही हैं, आपकी बॉडी में पेन्स आ रहे हैं, माइंड फोगी सा हो रहा है, कुछ भी आपको याददाश्त पे इसका असर आ जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, एनर्जी लो चली जाती है, रात को नींद तक नहीं आती है एंड काफ़ी बार लूज मोशंस के डायरिया लग जाता है. अब छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन काम पे जाना है, तो इन सारे सिम्टम्स के साथ किस तरह छोड़ पाएं. ये जो सारे सिम्टम्स आप देखते हैं इसको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं कि जब किसी भी नशा आप कर रहे हो कोई भी तरह का और उससे आप एडिक्टेड हो जाते हैं और वो चीज़ बॉडी को नहीं मिलती है तो आपकी बॉडी ये सारे सिम्टम्स देने लगती है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इससे एडिक्टेड हो गए हैं. एक तो ये विड्रॉल सिम्टम्स, तो दूसरा क्या होगा कि वही टाइम हुआ कि डेली घर आके शाम को आप जैसे अल्कोहल लेते हैं और फिर कितना पीना उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये भी एक तरह का एडिक्शन है. एंड फिर वही टाइम हुआ उसी वक्त आपको अर्ज होती रहती है कि मैं और पी लूं, तो ये जो अर्ज है उसको खत्म करना. तो यहाँ पे दो चीजों पे अगर आप फोकस करते हो तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और यही हमारा ट्रीटमेंट करता है कि आपके जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम मेडिकेशन देते हैं जिस करके आपको ज़्यादा परेशानी ना हो. तो इसके जो रिसेप्टर्स आपके लीवर में सेट हुए हैं और वो टाइम होता है आपको तंग करते हैं कि मैं नशा कर लूँ, इतनी बारी वो लेना पड़ेगा चीज़, तो उसको हम क्लिंजिंग उसका करते हैं जिस करके क्या होगा कि इसकी तलब है, इसकी अर्ज है वो ख़त्म होती जाएगी. सो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उसके साथ ही आप देखोगे कि बहुत अच्छे से इस पे कंट्रोल आ गया है और आपको जो अर्ज हो रही है वो अर्ज खत्म होती जाती है, आपके विड्रॉल सिम्टम्स पे कंट्रोल आता जाएगा, फिर आपको ना तो तोड़ रहेगी ना नींद की प्रॉब्लम और आसानी से इस नशे को आप छोड़ पाएंगे. सो किसी भी तरह के एडिक्शन वास्ते काव्या होम्यो केयर से आप हमारा कॉन्टेक्ट ज़रूर कर सकते हैं. ऑल ओवर कैनेडा, यूएस, सारी जगह पे मेडिकेशन हम मेल करते हैं. तो लोकेशन है हमारी 10 Cottrell Boulevard, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, एंड मंडे टू सैटरडे क्लिनिक के आवर्स हैं सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक. फ़ोन नंबर है मेरा 6476027796647607779. थैंक यू
0: सो मच मीता जी. एंड दोस्तों याद रखें काव्या होम्यो केयर, मीता ओजा एंड पिनाक ओजा, 10 Cottrell Boulevard, यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन, नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का इंटरसेक्शन. क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM एंड द नंबर टू कॉल इज 6477602779. काव्या होम्यो केयर 6477602779.
2: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक. लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 months. सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड. बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें. जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th. विजिट DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
6: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
7: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
6: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
8: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
9: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
10: अच्छी याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
9: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
11: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca। कॉल 9054582448।
12: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन-इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स।
13: क्रेडिट कार्ड, GST या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस GTA। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 4166710577, 4166710577, alldeatsolutions.ca।
14: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दी बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे। जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ, ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आईफोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाले सेगमेंट में बहुत जल्द हमारे साथ 1:45 यानी 12:45 मनन गुप्ता जी होंगे स्काईलेक इमिग्रेशन से, आपके सवाल उनके जवाब। और लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत आपकी रिक्वेस्ट है, ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन, अमित मिश्रा की आवाज़ में, ओले ओले 2.0।
15: She likes to drop it low, man.

एट वेन्स ऑटो ग्रुप आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम हर जर्नी को बनाए खास वेन्स ऑटो ग्रुप हमेशा आपके साथ ओवर 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज ऑफरिंग 9 ब्रांड्स अक्रॉस 15 डीलरशिप्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर Wayne's Auto Group is always there. Aaj hi visit kare wayneautogroup.com.

0: जोशी।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 6476280040।

0: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
1: साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो प्रेजेंट्स इमिग्रेशन अनलिमिटेड बाय मनन गुप्ता, पावर्ड बाय स्काईलेक इमिग्रेशन।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स। जी हाँ, स्काईलेक इमिग्रेशन के स्पेशल सेगमेंट में मनन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। द नंबर टू कॉल मनन जी राइट आफ्टर द सेगमेंट इज 416-451-0040। आपके सवाल, मनन जी के जवाब। मनन जी, आपका स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच सनी जी फॉर हैविंग मी, और प्रोग्राम को सुन रहे, प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए सभी लिसनर्स परिवारों को बहुत प्यार भरी नमस्कार। गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, थैंक यू।
2: गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मनन जी, हमारे करमजीत सिंह लिसनर पूछ रहे हैं कि मनन जी, आई हैव अप्लाइड फॉर टेम्प रेजिडेंट वीजा TRV विद इन कैनेडा, हाउएवर आई नीड टू ट्रैवल अर्जेंटली टू इंडिया, व्हाट शैल आई डू नेक्स्ट टू फैसिलिटेट द रिटर्न ट्रिप?
3: देखिए अपने कमल जी जी, डेफिनेटली अगर आपने TRV जिसे हम टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा कहते हैं, अगर आपने विद इन कैनेडा अप्लाई किया हुआ है और आपको कोई एमरजेंसी कारणों के कारण यू नीड टू ट्रैवल टू इंडिया, सो द बेस्ट थिंग वुड बी, आई एम नॉट श्योर, आपके क्वेश्चन में ये नहीं पता चल पा रहा कि आपका वो अप्रूव हो गया है, स्टैंपिंग नहीं हुई या इट इज स्टिल अंडर प्रोसेसिंग। दोनों ही सिनेरियोज में, अगर क्योंकि वी हैव डेल्ट विद सिमिलर केसेस इन द पास्ट, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और अगर आपको एमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो डू रिक्वेस्ट वाया वेब फॉर्म टू IRCC की यू नीड टू ट्रैवल टू योर होम कंट्री, ताकि उनके नोटिस में हो। और अगर आपका TRV अप्रूव हो गया और अगर आपने पासपोर्ट अभी भेजना बाकी था, तो वो उस अप्रूवल लेटर को आप इंडिया जाकर भी वहाँ लोकल VFS के ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक कराकर अपना पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं, ताकि आपकी स्टैंपिंग हो जाए पासपोर्ट की और आप सकुशल जब भी आपने वापस कैनेडा आना है, वेदर यू आर हेयर ऑन वर्क परमिट और स्टडी परमिट, आप आराम से यहाँ पर वापस आ सकते हैं। सो इन बोथ सिनेरियोज यू नीड टू इन्फॉर्म एंड अपडेट IRCC।
2: जी, और करमजीत सिंह को मेरी गुजारिश होगी कि इस सेगमेंट के बाद आप स्काईलेक इमिग्रेशन के मनन गुप्ता जी और उनकी टीम से संपर्क करें 416-451-0040 पर, 416-451-0040। मनन जी, अगला सवाल गौरव सिंगला साहब का है। गौरव जी पूछ रहे हैं कि मनन, आई रिक्वेस्टेड GCMC MS नोट्स फॉर अ पास रिफ्यूजल रिलेटेड टू माई फादर्स वीजा एप्लीकेशन, इट हैज बिन मोर देन 4 months एंड आई हैवन रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स, मुझे प्लीज आप सजेस्ट करें अगले मेरे क्या स्टेप होने चाहिए।
3: देखिए DCMS नोट्स नॉर्मली तो 4 से 6 हफ्तों के बीच में रिलीज कर दिए जाते हैं, प्रोवाइडेड आपने बकायदा ड्यू यू नो जो से फॉर्म सबमिट किए हैं, साथ में उनकी ID प्रूफ वगैरह भेजे हैं और फीस सबमिट की है। लेकिन अगर आपको 4 महीने हो गए हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू फॉलो अप विद द ATIP ऑफिस, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी ऑफिस। जब आपने अपने फादर के GCMS ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम नोट्स अप्लाई किए थे, आपको एक ईमेल आई होगी, उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है आपकी फाइल का। सो उस रेफरेंस नंबर का आपने रेफरेंस देकर दोबारा ATIP को फॉलो अप ईमेल करनी है कि भाई 4 महीने हो गए हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा, प्लीज एक्सपीडाइट दिस रिक्वेस्ट। तो उस रिक्वेस्ट को डेफिनेटली दे विल रिकंसिडर एंड दे विल होपफुली रिलीज द GCMS नोट्स। कई बार GCMS नोट्स को काफी समय एक्स्ट्रा भी लग जाता है ड्यू टू सो मेनी अदर रीजन, सिक्योरिटी बैकग्राउंड, कई बार रिडक्शन करनी पड़ती है, लेकिन औसतन बेस्ड अपॉन आवर एक्सपीरियंस 4 से 6 हफ्तों में एक जेन्युइन रेगुलर फाइल के GCMS नोट्स रिलीज हो जाते हैं।
2: सुपर। मनन गुप्ता जी, स्काईलेक इमिग्रेशन द नंबर वन कंपनी, 416-451-0040। अगला और आखिरी सवाल विपिन बंसल जी का है। हमारे लिसनर विपिन जी पूछ रहे हैं कि मनन जी, इज इट एडवाइजेबल टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप वाया द ऑनलाइन पोर्टल और द ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड एप्लीकेशन?
3: बिल्कुल, देखिए दोनों ही जौन से फॉर्मेट्स हैं, दे आर एक्सेप्टेबल। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो ऑनलाइन पोर्टल स्पेशली फॉर एप्लीकेंट्स इसीलिए इनिशिएट किया था, ताकि फास्टर प्रोसेसिंग हो सके, एफिशिएंटली हो सके और आपका जौन सा खर्चा है वो कम हो सके। खर्चा इन द सेंस कि आपको अगर आप बाय पोस्ट भेजते हैं, पेपर डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो आपकी पोस्टेज फीस लगेगी, तो उसमें डिले भी कई बार हो जाता है। सो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप ऑनलाइन फॉर्म्स भरें। ऑनलाइन फॉर्म बड़े आसानी से भरे जाते हैं और सारी आपने इन्फॉर्मेशन डिजिटली अपलोड कर देनी है सरकार के पोर्टल पर। बट फॉर एनी रीजन अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन ज्यादा नहीं अपने आप को यूज टू या दे डोंट फील कंफर्टेबल, तो यू आर मोर देन वेलकम टू यूज पेपर बेस्ड एप्लीकेशन. दोनों की सरकारी फीस तो सेम ही है, प्रोसेसिंग टाइम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ऑनलाइन की एडवांटेजेस अपनी है. इन बोथ द सिनेरियोज यू कैन यूज द एक्सटर्नल सर्विसेज ऑफ आरसीआईसीज और इमिग्रेशन लॉयर्स, वी आर हियर टू असिस्ट यू. ऑनलाइन पोर्टल में आपको खुद भरनी पड़ेगी, बट यू कैन सबमिट अ यूज ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म. पेपर बेस्ड एप्लीकेशन तो हम आपके डायरेक्टली भी आपके बिहाफ के ऊपर भेज सकते हैं. सो बोथ सिनेरियोज आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद IRCC.
2: एक्सलेंट. दोस्तों बता दूं, immigrationsegment@gmail.com पर आप मनन गुप्ता जी स्काईलेक इमिग्रेशन के लिए हर हफ्ते अपने सवाल भेज सकते हैं. टॉप 3 क्वेश्चंस हम मनन जी को ऑन एयर ऑलवेज पूछते हैं. मनन जी का नंबर स्काईलेक इमिग्रेशन 416-451-0040. मनन जी, जाने से पहले क्विकली मैं एक आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि जो आपने अटेंड किया, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया पीयूष गोयल साहब जो आए हुए हैं कनाडा, वो कैसा रहा, कैसी रही उनकी विजिट, क्या चीजें डिस्कस की गई, एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाट वाज द आउटकम?
3: देखिए, दो दिन से इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड हैं पीयूष गोयल जी, वो कनाडा की फेरी पर हैं और अपने जबरदस्त वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर बिजनेस ट्रेड डेलीगेशन को लेकर आए हैं, 150 से 200 के करीब टॉप एंडेड बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को. और बताया तो यही जा रहा है कि इस सारी पहलकदमी में दोनों देशों को जो रीसेट किया जा रहा है ट्रेड टाइज, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस विजिट के बाद. और कल पीयूष गोयल जी के मान सम्मान में ब्रैम्पटन के पियर्सन कन्वेंशन सेंटर में एक कम्युनिटी रिसेप्शन भी थी, वहां पर उनको मिलने का भी मौका मिला, उनको सुनने का भी मौका मिला. और बहुत ही वोकल है इंडिया का जो इंडिया और कैनेडा के जो टाइज को रीडेवलप किया जा रहा है विद द सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी एंड हिज कैबिनेट. उन्होंने स्पेशली पीयूष गोयल जी ने ब्रैम्पटन ईस्ट के मेंबर पार्लियामेंट और हमारे अपने मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मनिंदर सिद्धू जी का बहुत स्पेशली धन्यवाद किया कि उनकी जौन सी पकड़ है इस सब्जेक्ट के ऊपर और उनकी जो लीडरशिप है एट द मिनिस्ट्री लेवल, दैट इज रियली हेल्पिंग टू मूव अहेड. आने वाले कुछ महीनों में सनी जी जो सीपा एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया के साथ कैनेडा का, वो बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहा है और फाइनलाइज करने की उम्मीद की जा रही है. G20 समिट जो अमेरिका में होनी है, उससे पहले पहले प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी चाहते हैं कि इंडिया और कैनेडा ये जो सा सीपा एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज कर दे.
2: वाह. एंड मनन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में कुछ और अपडेट्स भी इस तरह की जो है हम आपसे जरूर लेंगे हमारे लिसनर्स के लिए. और नंबर मैं एक बार फिर से स्काईलेक इमिग्रेशन का दूं, 416-451-0040. दोस्तों, कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है, ऑलवेज रिमेंबर स्काईलेक इमिग्रेशन, मनन गुप्ता जी एंड हिज अमेजिंग टीम. बहुत बहुत शुक्रिया मनन जी.
3: थैंक यू सो मच जी. नमस्कार
2: जी. 416-451-0040. और एक छोटी सी ब्रेक, प्यारा सा गीत आपके लिए लाइनअप कर दिया है, और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आपके साथ. एंड जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो एक एक करके प्ले करेंगे. आगे चलकर सुखी कौर जी भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे. आयशा मुनव्वर जी विल ऑल्सो जॉइन अस. डेथ सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट हैं, इंसॉल्वेंसी काउंसलर हैं विद ओवर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. 416-428-2165 आयशा जी का नंबर है. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बहुत ही जल्द वापस आते हैं.
4: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज, विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले, और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. विजिट DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
5: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave इन Ajax, 289-372-3330 और acvc.info.
1: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hain. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hain, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
6: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं शोर मिला. बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
7: इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों के अपनों पर यहां इल्जाम बहुत है, अपनों के अपनों पर यहां इल्जाम बहुत है. शिकायतों का दौर देखता हूं तो मैं थम सा जाता हूं, शिकायतों का दौर देखता हूं तो मैं थम सा जाता हूं. लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: लेक डेटा प्लान सी पर टोयोटा टंड्रा दे बिना सकून नहीं, शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंड्रा ले आओ, ता एसडी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ। लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफरोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा आज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर को।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और हम बात करते हैं आयशा मुनव्वर जी से, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट, इनसॉल्वेंसी काउंसलर। और आयशा जी का ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑप्शंस आपको देती हैं अलग अलग फॉर डेट सेटलमेंट और मैक्सिमम डेट रिलीफ के लिए। आपने कॉल करना है 416-428-2165, 416-428-2165। आयशा जी, वेलकम टू साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो।
1: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर। सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो, दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन। देर आर ऑप्शन जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज़ में है, कौन सी चीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती। सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी एंड वी हैव टू एडवाइज यू। और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ। और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ियों हो गई बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा RRSP, RESPs हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेफ रहती हैं। और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि इजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें। और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है

0: कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसेस दे देते हैं तो कई दफा इजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और वो फिर कई दफा जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज टू बी अ फेयर और जो कहते हैं लिजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर, के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाए। बट एनीवेज, फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन गिव अस अ कॉल। माय फोन नंबर इज जी 416-428-2165, दैट इज 416-428-2165। थैंक यू वेरी मच।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी। और दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट इंसॉल्वेंसी काउंसलर आयशा मुनव्वर जी एंड आपको देते हैं अलग अलग ऑप्शंस फॉर डेट सेटलमेंट। द नंबर टू कॉल आयशा मुनव्वर 416-428-2165, 416-428-2165, आयशा मुनव्वर।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस May 16th तक। Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
0: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
2: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905 4573232. Clear Optical by Varun Kanda.

0: Win at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं. For everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates, जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें. WaynesAutoGroup.com.
2: भागम भाग, ये इतने लोग आखिर कहां जाते हैं सुबह सुबह? ढेर सी चमक चहक चेहरे पे लटकाए हुए, हंसी को बेचकर बेमोल वक्त के हाथों, शाम तक उन्हीं थकानों में लौटने के लिए. ये इतने लोग आखिर कहां जाते हैं सुबह सुबह?
3: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
4: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ.
3: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ.
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ.
3: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ.
4: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਨੂੰ
3: 647-739-8710. License number M200-34504.
5: Hi, I'm Realtor Sikhi. Jee tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
6: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. एंड सुखी कौर जी होम लाइफ सिग्नेचर रियल्टी से हमारे साथ हैं और कुछ अमेजिंग लिस्टिंग्स लेकर सुखी जी पहुंच चुकी हैं. कुछ इमिग्रेशन साथ ही साथ रियल एस्टेट की जो अपडेट है उसको, उसकी जानकारी भी हम सुखी जी से क्विकली लेंगे. 647-408-7066 इज द नंबर. 647-408-7066, जहां पर मई का महीना इज ऑलमोस्ट एंडिंग नाउ, जस्ट कपल मोर डेज टू गो, एंड वी आर एंट्रिंग इन टू द एक्चुअल गुड मंथ्स ऑफ रियल एस्टेट, जहां पर कहा जाता है जून जुलाई अगस्त सितंबर का टाइम, यू नो. लेट्स सी सुखी जी क्या इस पर राय रखती हैं. सुखी जी आपका स्वागत है.
7: थैंक यू सो मच सनी जी. सबसे पहले तो आपको एंड सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी वेंसडे एंड ईद मुबारक, हूएवर इज सेलिब्रेटिंग.
6: बिल्कुल जी, आपको भी ईद मुबारक एंड हैप्पी वेंसडे. और सबसे पहले तो सुखी जी, किस तरह से आप आने वाले जो महीने हैं, जून जुलाई अगस्त, मोर सो द समर हार्डकोर मंथ्स फॉर रियल एस्टेट, हाउ आर यू लुकिंग एट इट? I am seeing, I could be wrong, correct me if I'm wrong, I am seeing a lot of open house boards going up this past weekend. Kya GTA mein action badh raha hai? What exactly is the scenario?
7: 100%. Jaise ki summer aa rahi hai, weather is opening up and more of more listings are coming. And also, Sunny ji, batate chalo ki hum as realtors dekh rahe hain ki again market mein multiple offers aane shuru ho gayi hain. Ek ek property par kam se kam aapko 5-6 offers aa rahi hain. So uska matlab, having said that, this means that buyers are coming out. They are looking to purchase a property. They have been waiting for so long, but now they're out to do the real home shopping.
6: जी
7: तो इंटरनल न्यूज है जी, वन ऑफ द बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो सून एक दिन में हायर जाने वाला है, जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा. क्योंकि वो दे कैन सी, दे कैन प्रेडिक्ट, ऑब्वियसली देर सिटिंग वेरी, यू कैन से प्रोफेशनल, जिनको पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है.
6: जी बिल्कुल. सो लेट्स, हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि क्यों, हाउ आर यू लुकिंग एट फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, किस तरह से मार्केट को आप देख रही हैं? आपको लगता है कि भाई जिन्होंने बहुत वेट किया है, मे बी दिस इज द टाइम, अब वेट खत्म हो गई है?
7: ओके, सॉरी, गिव मी वन सेकंड.
6: जी मैं नंबर दे दूं सुखी जी का, 6474087066, 647-408-7066. जी सुखी जी.
7: Sorry, I couldn't really hear you properly. Can you hear me?
6: Yeah, I can. मेरा सवाल आपसे ये था कि जो first time home buyers हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी that have waited for quite some time कि अब उनको market में finally जो है they should jump because the rates are really not only mortgage rates की नहीं मैं बात कर रहा हूँ but property की जो कीमतें हैं वो अच्छी दिख रही हैं.
7: 100%. This is the for sure first time home buyer की market है, क्योंकि जो जिन्होंने घर sell करना and buy करना होता है ना, उनके लिए it doesn't really make big of a difference अगर properties के prices high हैं या low, क्योंकि अगर आपने sell high पर करना है तो आपने buy भी high price पर करना है, अगर आपने sell low price पर करना है तो जो आपने buy करना है वो भी low price पर. So first time buyers के लिए बहुत अच्छी opportunity है because properties के जो prices हैं it's still not high rock, जैसे कि हमने 2-3 साल पहले देखा था properties were, it was touching the sky. The prices were so high. Right now is the time for first-time buyers to step in the market. If you have any questions, या फिर घर buy करना चाहते और अगर आपको guidance भी चाहिए, please give me a call at 647-408-7066.
6: 647-408-7066. जी 647-408-7066. सुखी जी मैं चाहूँगा कि कुछ लिस्टिंग ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे लिसनर्स जो हैं दिस वीक अपने परिवारों के साथ जाएं, प्रॉपर्टीज़ को चेकआउट करें एंड मे बी दैट बी द ड्रीम होम दे वर वेटिंग फॉर.
7: Of course, I have an amazing listing in Kitchener. 3-bedroom ka detached ghar hai. Under 10 years old ye ghar hai. Finished basement milegi aapko ek bedroom ki with kitchen and bathroom. Low 700s mein ye ghar lena chahte hain to mere sath to contact kar lijiye at 647-408-7066. And Brampton mein Chinkuzi and Steels area mein abhi property market mein aayi nahi hai par aane wali hai. Pehle hi aapke sath details share kar leti hu. Detached ghar hai, double car garage hai, 4-bedroom ka ghar hai, 2-bedroom ki legally finished basement milegi aapko, extended driveway hai, driveway par aap 5 gaadiyan park kar sakte hain and 2 in the garage, so total 7-car parking in Brampton. देखना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन है मार्केट में आने से पहले देखना चाहते हैं, अगेन एक ही नंबर है 647-408-7066.
6: जी और दोस्तों मैं बता दूं सुखी जी इज जहां पर एक बहुत ही प्रोफेशनल रियल्टर हैं और लंबा एक्सपीरियंस रखती हैं, आपकी मदद कर सकती हैं, आपको आपका ड्रीम होम दिलवा सकती हैं. वहीं शी आल्सो हैज़ अ टीम ऑफ मॉर्गेज स्पेशलिस्ट जो उनके साथ काम करते हैं, लॉयर हैं, अप्रेजल की जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है, होम एवेल्यूएशन आपके लिए फ्री किया जाता है. ऑल दैट सर्विसेज, ऑल दो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू यू बाय सुखी कौर एंड हर टीम. और नंबर प्लीज़ नोट कर लीजिए सुखी जी का, 6474087066. सुखी जी बहुत बहुत शुक्रिया.
7: थैंक यू सो मच सनी जी, हैव अ वंडरफुल डे. लास्ट थिंग ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हमारे स्पेशली लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम बायर, अगर आपके पास चाहे एज लो एज 5% की भी डाउन पेमेंट है, प्लीज मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए. 5-10-15%, do not need to worry about it. Hamare paas, like you've mentioned, sari team hai. Hum purchase se lekar closing tak puri tarah se help karte hain. 647-408-7066.
6: Bilkul ji, 647-408-7066. Sukhi Kaur ji ka direct number hai. Sukhi ji, have a wonderful week.
7: Thank you, you too.
6: बहुत बहुत शुक्रिया. 6474087066 इज द नंबर. एंड अगला गीत भी हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है, आप ही की रिक्वेस्ट है, सो आपकी रिक्वेस्ट हम जरूर प्ले करेंगे. आई एम द बेस्ट. कई बार जिंदगी में अपने आप को आप बेस्ट कहें तो अच्छी बात है. एंड इट वॉज अभिजीत की आवाज़ में, फिर भी दिल हिंदुस्तानी का गीत एंड फिल्म आया ऑन नन अदर देन जो अपने आप को कहते ही हैं आई एम द बेस्ट, शाहरुख खान.

0: yes, yes. Say it again.
1: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke sath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, jo ki do location se aapko serve karte hai, Brampton and Georgetown. Exams ke liye doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle ke superstar realtors, Sarabjit Gill, CP Chatwal, for real estate buying, selling, investments. Ek bar inse zarur sampark karein, some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 or 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, which serve 30-plus locations. 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
4: ये वो जगह है जहां हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है। ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट, धर्म, संस्कृति और कला का सुमेल। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808.
3: Genesis Markham. Yahan mile luxury ka first class experience with a state of the art dealership aur aapki apni language mein expert service. Lease kare beautifully designed 2026 G70 sirf 1.9% se. Ya lease kare 2026 GV70 sirf 4.9% se. Aaj hi book kare test drive. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: बेस्ट साउथ एशियन क्लोथिंग के लिए एक ही स्टोर जहां पर आपको मिलेंगे एक छत तले बेस्ट फैशंस, बेस्ट स्टाइल्स एंड बेस्ट प्राइसेस। एशियंस पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर नियर मार्कम रोड एंड लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, यूनिट नंबर 23, स्कारब्रो। नोन फॉर देयर साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स। एशियंस 416-438-6568, ईस्ट और वेस्ट, एशियंस इज द बेस्ट। एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 647-866-1086, 647-866-1086, राज जोशी, नाम ही काफी है।
5: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जी हमारे साथ हैं और थोड़ी सी करते हैं बातचीत। राज जी, आपका स्वागत है।
6: तनी जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून।
5: जी गुड आफ्टरनून
6: जी। आज हमारा फोकस है नायग्रा का एरिया और यहाँ पर बहुत जबरदस्त ये कम्युनिटी है, 23 फुट टाउन होम कलेक्शन की थोरोल्ड में, 4 बेडरूम के 2 स्टोरी टाउन्स हैं, 1800 स्क्वायर फुट के, और साथ में 1 बेडरूम का लेआउट बेसमेंट में भी अवेलेबल है बिल्डर की ओर से, 3.5 बाथरूम। सो बेसिकली 4+1 बेडरूम, 3.5 बाथरूम का 2 बेडरूम फिनिश्ड लेआउट अवेलेबल है सिर्फ 589 में। जो ये 5th बेडरूम है, प्राइवेट एडिशनल बेड होगा फॉर फैमिली और गेस्ट, फुल 3-piece bath, कन्वीनियंट फुल बैथ कंफर्ट फंक्शनैलिटी के लिए, रेक रूम भी है, एक्स्ट्रा स्टोरेज रूम टू ग्रो फॉर योर फैमिली। इसमें फीचर्स में अगर हम देखें, 9 फुट की सीलिंग्स, लग्जरी वाइनल प्लाइंट फ्लोरिंग, सेंट्रल एसी, ऑफ क्लोज कैबिनेट्री, अलार्म और होम ऑटोमेशन, VIP कंस्ट्रक्शन एक्सेस है और माई होम ट्रैकर के साथ अवेलेबल। बहुत ही एक्सलेंट ये अपॉर्चुनिटी है सनी जी, बहुत शॉर्ट ड्राइव टू हाईवे 406, हाईवे 58 का इंटरसेक्शन, यानी कि जिसको थोरोल स्टोन रोड कहते हैं, बहुत ही नजदीक है आप टू द मेरिटवेल हाईवे. थोरोल्ड इज अ ग्रोइंग कम्युनिटी और हमारी टीम की ओर से एक स्पेशल पैकेज है जो कि आप जब कॉल करेंगे और इस डेवलपमेंट में आप बुकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी. ये स्पेशल अप्लायंस पैकेज है हमारी ओर से जिसमें आपके लिए टू चॉइसेस भी रहेंगी. सो अगेन प्री होल 23 फुट के टाउन होम, 4+1 बेडरूम का लेआउट विथ 3.5 बाथरूम, वन कार गराज, वन कार इन द ड्राइववे, बहुत जबरदस्त. प्राइस सिर्फ 589,000. हमें कांटेक्ट कर ले इंफॉर्मेशन के लिए और आपके साथ सारी डिटेल शेयर की जाएंगी. साथ ही साथ क्विकली बता दूं, 38 बंगलोज की एक डेवलपमेंट कैम्ब्रिज में, बंगल ऑफ टाउन्स है ये, एक्सक्लूसिव कलेक्शन. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें कांटेक्ट कर ले. अनवेल हो रहा है ये फर्स्ट फेज, लिमिटेड रिलीज है सिर्फ 38 ब्यूटिफुली डिजाइन बंगलोज का और इनके प्राइजेस हैं फ्रॉम द हाई 600. अगर आप इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं कैम्ब्रिज में, कोई भी डिटेल चाहते हैं हमें कांटेक्ट कर लें. वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. और सरी जी, ऑलवेज वी आर वेरी थैंकफुल, व्हाट एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी के साथ कॉन्टैक्ट में और एक ब्यूटिफुल रिलेशन बनाने की अपॉर्चुनिटी हमें जो मिलती है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. थैंक यू सो मच. विशिंग एवरी वन अ वंडरफुल आफ्टरनून.
5: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज जी. 6478661086 रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जी का नंबर है जिस पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स रखे हुए हैं जो आप ज़रूर चेकआउट करना चाहेंगे. एंड इफ़ यू आर सेलिंग योर प्रॉपर्टी, देर आर सम मोर इंसेंटिव्स दैट राज जी ने निकाले हैं आपके लिए. यू माइट वॉन्ट टू यू नो talk to him and get to know a bit more about that as well. 6478661086. Raj ji, bahut bahut shukriya.
6: Thank you, Sunil ji.
5: Ji. 6478661086. Jitni requests hain, we will play them. Bahar ka taapan 23 degrees Celsius, feels like 25. And ये प्यारा सा गीत हमने आपके लिए लाइनअप कर दिया, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है. और जितने भी हमारे लिसनर्स ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको एक बार फिर से ईद मुबारक. एंड आशा भोसले एंड अमित कुमार की आवाज़ में ये गीत फिल्माया ऑन संजय दत्त एंड मंदाकिनी. द फिल्म वॉज जीवा. इज ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक.
2: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला. बट वन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
7: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है. ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं. घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान. फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com. प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: अब घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस हो गई बिल्कुल टेंशन फ्री। अप्लायंस टू फिक्स है आपका भरोसेमंद सर्विस पार्टनर। फ्रिज, अवन, चूल्हा, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन या ड्रायर, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस एक ही जगह। तजुर्बेकार टेक्नीशियन, समय पर काम का वादा। अप्लायंस टू फिक्स, अभी कॉल करें हरविंदर 6474071470, 6474-407-1470। आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान अब रही हमेशा फिट।
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। विजिट DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
0: एक और कहानी मेरी जुबानी, बाप और बेटा। एक बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस आ रहा था तो उसकी बीवी ने फोन किया और कहा, अपने बाप को यह भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं, अब वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ खुश गप्पों में व्यस्त है और वे यूं बैठे हैं जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उस इंसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने आए थे तब से। Stay blessed. Life I refuse to give up.
4: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी हमारे साथ हैं। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिकूसी इन ब्रैंटन। 905-450-2828 इज द नंबर। ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM to 7 PM। ब्रैंटन अप्लायंसेस .com पर जाकर आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की सारी डील्स सुल्तान जी से लेते हैं। सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर करेंगे रुख। सुल्तान जी, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सुल्तान जी। सबसे पहले द अमेजिंग टीवी सेक्शन पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
1: डेफिनेटली जी, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके साथ साथ रैप्टर्स की गेम चल रही हैं, साथ में ब्लू जेस की गेम चल रही हैं, तो जो भी स्पोर्ट्स के शौकीन कस्टमर हैं वो तो डेफिनेटली बिग स्क्रीन पे फुली इंजॉय करते हैं। और अगर बिग स्क्रीन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है जी। तो ये जो भी कस्टमर इस वक्त 85 इंच QLED लेना चाहते हैं, क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसेसर के साथ QLED सैमसंग का 85 इंच $2000 वाला सिर्फ $1299 में मिलेगा। $700 आप 85 इंच QLED पे सेव करेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे जी। इसी तरह 65 इंच सिर्फ $699 में मिल जाएगा और 55 इंच सिर्फ $399 में ले सकेंगे। पेमेंट आपने 6 महीने में करनी है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी होगी। आपको आना है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी। ब्रैम्पटन अप्लायंसेस .com हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं। और जब बिग स्क्रीन की बात करें तो 98 इंच को मिस ना करें, क्योंकि 98 इंच सिर्फ 3 TV इन स्टॉक रह गए हैं। $3500 से सेल प्राइस $2799 का था, लेकिन $1999 में 3 lucky कस्टमर कैन गेट इट 6 month नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान के साथ। 98 इंच सैमसंग टीवी $1999 का। 905-450-2828, 905-450-2828 जी,
0: 905-450-2828। ब्रैंटन टीवी एंड अप्लायंसेस। सुल्तान जी, अप्लायंस एंड लॉन्ड्री की सेक्शन पर भी क्या अमेजिंग डील्स चल रही है, उस पर भी प्लीज डाले रोशनी। कुछ बंडल पैकेजेस भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल जी, 40% का डिस्काउंट अप्लायंसेस इंडस्ट्री में नहीं मिलता, हाईएस्ट वॉल्यूम डीलर होने की वजह से 40% का डिस्काउंट जो है हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं जी। अगर तो बिल्ट इन किचन लेना है तो ह्यूज सेविंग है, क्योंकि बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर और बिल्ट इन काउंटर टॉप फ्रिज जो पूरे का पूरा बिल्ट हो जाएगा आपके किचन कैबिनेट्स में, और आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ होगा ये आपको $12,000 वाला बिल्ट इन किचन सिर्फ $6,900 में मिलेगा जी। ह्यूज सेविंग है, 40% की सेविंग करवा रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी होगी, 6 month में आप पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिविजुअल भी अगर आप लेना चाहते हैं, सिंगल फ्रिज आपको $2500 वाला $1799 में मिलेगा, और इसमें भी आप $700 एक फ्रिज खरीदने पे सेव करेंगे। स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1300-1400 वाला $799 में मिलेगा सिर्फ, इसमें भी $500 की सेविंग है। टॉल टब की डिशवाशर जो है $1000 वाली, ये तो मोर देन 40% डिस्काउंट है, क्योंकि $1000 से सिर्फ $499 में ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे डिशवाशर ले सकेंगे, स्टेनलेस स्टील की $499 फ्री होम डिलीवरी के साथ। फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर की बात करें जी, तो $2200 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर $1499 में, और टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर की अगर बात करें तो $1700 वाला टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ $1099 का पेयर मिलेगा। वॉशर ड्रायर दोनों ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है। हमारा मैसेज जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव को। ह्यूज सेविंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में मिलेंगी। 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
0: जी, 905-450-2828, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
0: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक। बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी। 6478631940, 6478631940।

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Real estate is not easy business. और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley. घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल. ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल. Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086. 647-866-1086. Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है.
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी. अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास. टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ. लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन. विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे.
3: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाजत. अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM. शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 647-863-1940. टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Mastiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aaj hi hai.
4: Jal pe sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, Mastiki Rail Gari, aayi Sean Express, Mastiki Rail Gari.
5: Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
5: ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आपका वेलकम करती हूँ Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. हमारा और आपका साथ बरकरार रहेगा पूरे 4 बजे तक बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ. और दोस्तों, आज है ईद मुबारक और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो आज का त्यौहार. आज का दिन है खुशियों का, मोहब्बत का और दिलों को करीब लाने का. सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी खुशियां, सुकून और बरकत भरी ईद की शुभकामनाएं हमारी तरफ से. शुरुआत करते हैं आज के शो की एक बहुत ही प्यारी सी शायरी के साथ जो कहती है, चांद की रोशनी से रोशन हो घर आपका, चांद की रोशनी से रोशन हो घर आपका, खुशियों से भर जाए हर सफर आपका. दुआ है दिल से बस इतनी आज, दुआ है दिल से बस इतनी सी आज, कि हर दिन हो खूबसूरत और बेहतर आपका. आज का बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव थॉट कहता है कि खुशियां जो है बांटने से बढ़ती हैं और मोहब्बत से रिश्ते और ज़्यादा मजबूत बनते हैं. तो आज अपनों को गले लगाइए, मुस्कान बांटिए और इस खूबसूरत से दिन को दिल से सेलिब्रेट कीजिए. म्यूजिक रहेगा सोलफुल, मस्ती रहेगी स्वीट एंड वाइब्स रहेंगी फुल ऑन फेस्टिव. वंस अगेन आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ईद मुबारक. चलते हैं सुपर हिट ट्रैक की तरफ. इंजॉय.

0: आदाब अर्ज है, बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर किया। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन सीएमआर एफएम 101.3 आपका मैं वेलकम करती हूँ और 4 बजे तक भरपूर एंटरटेनमेंट देने का वादा भी करती हूँ। और हमारे सोशल मीडिया पर जितने भी फैंस हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन ऑन टुडेज राइड। ये आफ्टरनून आपकी बेहतर बनाने का पूरा इंतजाम हमारे पास है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने, बहुत सारी गॉसिप्स, बहुत सारी बिहाइंड द सीन स्टोरीज भी आज आपकी नजर करेंगे। और आज तो ईद का दिन है तो एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट्स आज जरूर बनते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों एक और फन फिल्ड राइड हमारे साथ एंजॉय करने के लिए। और हमारी लाइंस ओपन है, अगर आप ईद के मैसेजेस किसी अपने को देना चाहें, मुबारकबाद भेजना चाहें, तो हमारे शो पर आप जो है राइड कर सकते हैं और अपनों तक अपना जो मैसेज है, अपनी दुआ जो है पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, और अब मैं चेक करती हूँ कि आज का मौसम क्या कहता है। डबल डिजिट्स में टेम्परेचर है, इट्स अ ब्यूटिफुल सनशाइन, 23 डिग्री सेंटीग्रेड, फील्स लाइक 25 ऑलरेडी, इट्स अ ग्रेट वेदर। और ये जो है आज का हाईएस्ट जा सकता है 25 डिग्रीज एट 4 PM, जब हम आपको अलविदा कहेंगे आज की राइड में, तो उस वक्त आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ छोड़ेंगे और आपको महसूस होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस वुड बी द हाईएस्ट फॉर टुडे। और रात में 11 बजे जा सकता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सुपर हॉट डे टू एंजॉय विद योर लव्ड वंस दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेस्टिवल। तो चलिए दोस्तों स्टूडियो का नंबर नोट कर लीजिए, 416-593-0055, दैट्स 416-593-0055। और एक प्यारा सा टॉपिक आज भी आपको देंगे और उस टॉपिक पर आपके कॉमेंट्स लेंगे। बहुत जल्दी वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन सीएमआर 101.3 एफएम पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye.

0: सर्टिफाइड जनरल अकाउंटेंट राजीव मदान, टैक्स अकाउंटिंग के सभी पहलुओं पर पैनी नजर, फर्क आजमाने पे पता चलेगा। कॉल CGA राजीव मदान 905-362-2200, 905-362-2200, 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga. CGA Rajiv Madan, thoughts become things.
1: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
2: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
1: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
2: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
1: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल। वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली, स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली, वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर, अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600।

0: टाइम।
1: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहाँ पहुँचे सभी वहीं पहुँचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
3: Team hashtag homes and Rahul Kashyap Lekar. I have first time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
4: Sean Express kare aapko unwind. Leave your problems behind. This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant. दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और ऐसा ही खूबसूरत गाना आप लोगों की नज़र अब हम करने जा रहे हैं। 90s की पूरी पूरी फील है इस गाने में, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा विश्वास है। कहते हैं तुझे अपना बनाने की चाहत भी क्या चीज़ है, तुझे अपना बनाने की चाहत भी क्या चीज़ है, दिल को हर पल तेरी आदत सी हो गई है। तू पास हो या दूर कहीं, हर धड़कन में बस तेरी हसरत सी हो गई है। ये गाना जब बजता है ना दोस्तों, तो दिल में एक खामोश सी मोहब्बत जग जाती है। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस एक सच्चा सा एहसास। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री, ये इसका जो नया वर्जन आया है इस फिल्म का, उसमें बड़ी नेचुरल लगती है। हर सीन जो है वो दिल को छू जाता है। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं ओरिजिनल फिल्म की तरफ। ओरिजिनल फिल्म जिसमें थे सलमान खान और चांदनी, फिल्म का नाम था बागी, और ये 90s के दशक का एक बहुत ही क्लासिक गाना है। कहते हैं मोहब्बत जब सच्ची हो तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं, मोहब्बत जब सच्ची हो तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं, और खामोशियों में भी दिल के जज्बात नज़र आते हैं। अगर आप भी किसी को दिल से अपना बनाना चाहते हैं और किसी के यादों में खो जाना चाहते हैं, तो ये गाना ज़रूर डेडिकेट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगता है। शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3। गुड आफ्टरनून।

0: फिल्म का नाम बागी और बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर किया मस्ती की रेलगाड़ी पर CMRFM 101.3। और ये गाना आप तक पहुंचाया यश विंडोज एंड डोर्स ने। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में आप तक पहुंचाए जाते हैं और सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और खुद ही इनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम इंस्टॉल करती है आपकी प्रॉपर्टी पर। कोई मिडलमैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक। सुपीरियर स्टाइल, एक्सेप्शनली गुड लुक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भी, और फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यश विंडोज एंड डोर्स का नंबर आप नोट कर लें, 416-732-3600। दैट्स 416-732-3600। और आपके घर में अगर किसी भी तरह की आप होम रिपेयर कराना चाहते हैं, इंटीरियर या एक्सटीरियर, किचन में कुछ काम कराना है, बाथरूम्स को रेनोवेट करना है, बेसमेंट्स में काम कराना है, रूफ, साइडिंग्स, डेक, अप्लाइंसेस, ड्राईवॉल, फ्लोर वर्क, पेंटिंग और फिनिशिंग, कुछ भी आपको काम कराना है घर में, तो अजीम गेट्स इट डन राइट द फर्स्ट टाइम। वेरी वेरी गुड रिव्यूज, ऑनेस्ट, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी हैं अजीम, और क्वालिटी वर्क आप तक करते हैं विच इज गारंटीड। योर होम इज इन गुड हैंड्स। आप आज ही कॉल करें अजीम को 647-280-8806। और वेदर इज ओपनिंग अप दोस्तों, आप अगर जाना चाहते हैं कहीं घूमने या अपनों को अपने आप चाहते हैं कि वो लोग आपके पास आ जाएं, तो देओल ट्रेवल से जरूर बात करें। दे हैव सम एक्साइटिंग एक्साइटिंग ऑफर्स। दिल्ली से टोरंटो जून में जा सकते हैं वन वे 799 में। नाउ दिल्ली से मुंबई और दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं फ्रॉम टोरंटो जून से अगस्त तक। राउंड ट्रिप लगा है 1369 में। टोरंटो से अमृतसर या टोरंटो से दिल्ली जा सकते हैं सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप 1699 दो बैग्स के साथ। और इन सारी डील्स के लिए कॉल कीजिएगा देओल ट्रैवल, टू लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन, 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 एंड 588-4200। आप मस्ती की रेलगाड़ी पर सवार ऑन CMRFM 101.3। छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद चलते हैं पुराने दौर की तरफ। एक बहुत प्यारा सा गाना आपकी यादों को जगाने आ रहा है, स्टे ट्यून्ड। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: आँखें।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157। That's 416-570-0157.
2: नमस्कार, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते का शुरुआती ड्राफ्ट तैयार हो गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मरियम नवाज सरकार ने लाहौर की सड़कों, चौक और इलाकों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला फिलहाल टाल दिया। कनाडा में एक बार फिर खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी गतिविधि की है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े खालिस्तानी कार्यकर्ता इंद्रजीत सिंह गोसल ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक का काफिला रोका। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को वैध और संवैधानिक करार दिया है। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस फैलने के चलते युगांडा, दक्षिण सूडान और कांगो से अहमदाबाद आए 11 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया। महाराष्ट्र में एक दूल्हे ने शादी में आए मेहमानों का कराया एक्सीडेंट इंश्योरेंस। और वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, उसका गाना चुनरी चुनरी रिलीज हो चुका है। ये गाना 1999 की फिल्म बीवी नंबर 1 के गाने का रीमेक है।
3: और दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की टॉप लोकल खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हाउसिंग मार्केट की, जहां से थोड़ी राहत की खबर आ रही है। बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड लैंड डेवलपमेंट एसोसिएशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में GTA में 1100 नए घर बिके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर हैं। इनमें से 901 सिंगल फैमिली होम्स थे, जो 10 सालों के एवरेज से भी ज्यादा हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल ही में आया HST रिबेट इस स्ट्रगलिंग मार्केट को संभालने में मदद कर रहा है, लेकिन कॉन्डो मार्केट अभी भी कमजोर बना हुआ है, क्योंकि सिर्फ 199 कॉन्डो यूनिट्स ही बिक पाए हैं। अब बात एक सीरियस क्राइम केस की वॉन से आ रही है। पुलिस ने 65-year-old चार्ल्स मैनिकन को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल इंटरफेरेंस और सेक्सुअल कन्फाइनमेंट के गंभीर आरोप लगे हैं। ये घटना एक कम्युनिटी सेंटर में हुई, जहां पर दो माइनर्स को कमरे में ले जाकर बंद किया गया और उनमें से एक के साथ कथित तौर पर गलत हरकत की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त वो सिटी के वर्कर नहीं थे। टोरंटो में पब्लिक सेफ्टी को लेकर एक नया कदम उठाया जा रहा है। मेयर ओलिविया चाओ ने अनाउंस किया है कि सबवे स्टेशन पर स्टील बैरियर्स लगाए जाएं। ये पायलट प्रोजेक्ट टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी स्टेशन से शुरू होगा, जिसका मकसद लोगों को ट्रैक्स पर गिरने या कूदने से बचाना है। अब एक इंपॉर्टेंट कंज्यूमर अलर्ट। टोरंटो की एक रेजिडेंट लुई रेनविक ने अपने अवन की रिपेयर के लिए एक लोकल कंपनी को कॉल किया और करीबन $800 खर्च करे, लेकिन समस्या ठीक नहीं हुई। इसके बाद कंपनी ने और पैसे मांगे। ये मामला हमें सावधान करता है कि किसी भी रिपेयर सर्विस को हायर करने से पहले उसकी पूरी जांच, पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरे रिव्यूज चेक करें। और इसी बीच टोरंटो पुलिस शहर में हुई 3 अलग अलग फायरिंग इंसिडेंट्स की जांच कर रही है। ये घटनाएं शेपर्ड और जेन, इज़लिंगटन एंड बेरिंग और डाउनटाउन के बे एंड चार्ल्स एरिया में हुई हैं। अच्छी बात यह है कि इन घटनाओं में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज जरूर हुआ है। अब बात ऑटो थेफ्ट पर बड़ी कार्रवाई की। नायग्रा रीजनल पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में 9 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार करा है, जिसमें 7 युवक शामिल हैं। ये गिरोह जो था वो साउदर्न ओंटारियो में 100 से ज्यादा गाड़ियों की चोरियों से जुड़ा हुआ था और इसका कुल नुकसान करीबन $20 मिलियन बताया जा रहा है। ड्राइवर्स के लिए एक अच्छी खबर, एनर्जी एनालिस्ट डैन मैकटैग के अनुसार कल गैस प्राइसेस में करीब 10 सेंट की गिरावट आ सकती है, जिससे कीमत करीब 173.9 सेंट प्रति लीटर हो सकती है। डीजल की कीमत भी कम होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और अब लास्ट में वेदर अपडेट दे दें, आज जीटीए में मौसम काफी सुहावना रहेगा, हाई ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडेक्स के साथ आपको महसूस हो सकता है हाइएस्ट 27 डिग्री, और लो आज रात का रह सकता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, हल्की धूप और कुछ बादल, परफेक्ट समर वाइब। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157, दैट्स 416-570-0157। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
0: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं, लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं, बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023, इट्स 437-829-6023, मास्टर धनिक महाराज।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first-time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: कैंपिंग दा प्लान ता मस्त सी, पर टोयोटा टकोमा दे बिना सारे लोग जिथे तुसी भी पहुंचे उथे। जेकर रेड टैग डेज च तुसी टकोमा ले आओ, ता इस दी जबरदस्त समर्था ते दमदार आई फोर्स इंजन तुहानू ले जावे थोड़ा होर दूर, सकून दे होर नेड़े। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ, लीज करो 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 $114 वीकली तो 36 मंथ्स लई 4.69% ते $4900 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca या अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जाओ।
3: Jamming as much variety into your workday as possible.
4: Radio Resync complete.
5: Hit music.
6: Hit after hot hit.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती है इस ब्यूटीफुल सी आफ्टरनून राइड में। और कल हमने बहुत मिस किया हमारे एक मेहमान को, और हम सब तैयार थे उनको वेलकम करने के लिए और उनसे बहुत कुछ सुनने के लिए। तो चलिए, कल नहीं आ सके तो आज उनको लेकर आते हैं हमारे साथ, 9 generations के अनुभव के साथ। 9 साल नहीं, 9 पीढ़ियों का अनुभव की बात कर रहे हैं। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर हम अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं, वेदर इज़ ओपनिंग अप, तो एज पेरेंट्स अगर हम बच्चों के साथ खेलते कूदते भागते रहते हैं तो हम भी फिट रहते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं। अगर हम फिजिकली फिट हैं और तो अपने आप मेंटली फिट हो जाते हैं, अदरवाइज फिजिकल फिटनेस नहीं है तो मेंटल फिटनेस में भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कुछ हो गया बॉडी में, कभी कुछ हो गया, तो आइए नेचुरल तरीके से जड़ से इलाज किया जाए हमारी परेशानियों का। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, नंबर 4374383399। गुरुजी नमस्कार और आपका वेलकम है।
4: नमस्ते नमस्ते बायन जी, कैसा है आप?
0: बिल्कुल ठीक गुरुजी, आप कैसे हैं?
4: मैं भगवान आशीर्वाद से ठीक है। आप सजी कया है क्या है? हमारा हेल्थ अच्छा हुआ तो वेल्थ भी अच्छा होता है। शरीर में ताकत अच्छा नहीं, शरीर में एनर्जी अच्छा नहीं, शरीर में बीमार हुई तो कितना हम कमाता है भी वो वेस्ट है। मेरा दादा मेरे को बताया था एक बात, अरे बाबा आप कमाता है, कमाने के बाद वो खाने के लिए आपको हेल्थ अच्छा चाहिए। बॉडी में शुगर रहता है हमारा, बात स्वीट रहता है, सारा रहता है, कुछ भी नहीं खा सकता है, थोड़ा थोड़ा खाता है।
0: जी जी जी,
4: बॉडी में प्रेशर आता है और स्पाइसी नहीं खा सकता है, नमक नहीं खा सकता है, ऑयल नहीं खा सकता है, क्या फायदा हमारा पास होता है? वैसा वो पेट में अल्सर रहता है, कुछ भी खाना ज्यादा नहीं खा सकता है, वैसा हमारा पास कितना कितना पैसा कितना वो होता है, बट वो उसको उसको हम खाने के लिए, उसको हम अनुभव करने के लिए हमारा हेल्थ चाहिए। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ के लिए मैं आजकल नहीं है, है 9 generations से ये काम कर रहा है। आपको एग्जांपल बता रहा है बहन जी, 80-90 साल के पहले इंडिया में MBBS डॉक्टर बहुत कम था।
0: जी जी बिल्कुल,
4: तब तब तब तब हमारा लोग बीमार हुए तो हम जाता है, आपको मम्मा पापा, मम्मा को मम्मा, नानी नानी बीबी, वो हमको हमको बताता है मेरे को वो बीमार होता है, मैं वैद्य को पास जाया, हकीम को पास जाया, हकीम मेरे को वो दवा दिया, ये दवा दिया, वैसा बताता है हमारा हैंगस्टर से, वैसा ये फैमिली से मैं आ गया था। ये जड़ी बूटियां किधर से लेता है? ये सारा इलाज सच्ची स्वच्छ जड़ी बूटियां से बनाता है।
0: क्या बात है।
4: यस, और दूसरा बात इम्पोर्टेंट बात क्या बहन जी, जड़ी बूटियां हम फार्म नहीं करना, फार्म नहीं करना, फार्म करे तो उसको अंदर ताकत बहुत कम होता है।
0: Okay.
4: उसको प्रकृति से आना है, इसलिए हम पेड़ों के ऊपर एंड फॉरेस्ट के ऊपर जाके ये कि और अलग अलग अलग जड़ी बूटियां होता है, ये सारा जड़ी बूटियां एक ही टाइम में नहीं लेना है। सुबह सुबह 10 बजे के पहले थोड़ा जड़ी बूटी लेना है, उसको 10 बजे के बाद 11 को 11 बजे को ले तो उसको अंदर पावर कम हो जाता है, नहीं होता है।
0: ओके, अच्छा।
4: वैसा वैसा वो शाम को 6 बजे के बाद लेना है सम जड़ी बूटियां, वो जड़ी बूटियां दोपहर में लिए तो उसको वेस्ट।
0: अच्छा,
4: वैसा टाइम देके और सम जड़ी बूटियां पूर्णिमा, अमावास, ब्लैक मुंडे, फुल मुंडे, वैसा होता है उस दिन वो लेना पड़ता है।
0: अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग।
4: यस, वो ही जड़ी बूटियां हम नॉर्मल टाइम में लिए तो काम नहीं करता है।
0: अच्छा अच्छा दैट्स वेरी नाइस।
4: किसके लिए बोलता है? हम मंदिर को जाता है बहन जी, हर रोज मंदिर को जाता है। इम्पोर्टेंट डे से जाए तो आपको उसका पावर ज्यादा होता है। वैसा ये जड़ी बूटिया में पावर हमको मालूम पड़ता है तब लेना है, इसलिए ये जड़ी बूटे लेकर आके उसको प्रोसेस करके ये हम लोगों को देता है इलाज के लिए। इसलिए ऊपर वाला का आशीर्वाद से, भगवान आशीर्वाद से आपको, आप भी मेरे पास आ गया था देखने के लिए। कितना लोग आपको फीडबैक बताया था सारा, भगवान अच्छा है अच्छा है, आपको भी मालूम पड़ गया था।
0: और मुझे मैंने देखा उस दिन आपका फास्ट था गुरुजी, और आप तो पता नहीं 8 घंटे तक चेयर से ही नहीं उठे थे, जैसा मुझे सामने नजर आ रहा था कितने लोग, लेकिन आपके चेहरे पर जो स्माइल थी, एक जो अंदर से आपकी भावना है ना लोगों की केयर करने की, वो चीज वॉज अनमैचेबल। और लोग आ रहे थे, यू नो कितने कितने वक्त से आपके पास आ रहे हैं, और कई लोग तो बहुत कम टाइम से भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि दवाइयां लंबी चलती हैं। मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ हमारे लिसनर्स के लिए कि क्या कोई दवाई लें तो क्या उसका प्रोलॉन्ग लेना पड़ता है, हमें आदत हो जाती है दवाइयों की?
4: नहीं नहीं वैसा नहीं, हमारा शरीर से बीमार बाहर जाने के तक लेना है, वो लेता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना दर से, उसके बाद हम कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है।
0: ओके ओके वेरी नाइस गुरुजी।
4: तो और दूसरा बात क्या बहन जी, हमारा हमारा दवा से, हमारा वो है वो हर्बल से, वो एक बार ठीक हो जाए तो ये प्रॉब्लम रूट से ठीक हो जाता है, फिर वापस नहीं आता है।
0: क्या बात है, वेरी नाइस। तो चलिए भाई, वापस प्रॉब्लम हमें चाहिए नहीं, प्रॉब्लम को तो दरवाजा ही दिखाना है, तो इसीलिए आपको जाना है गुरुजी से मिलने। तो गुरुजी अपने कोऑर्डिनेट्स बता दें, कहाँ कहाँ आपसे मुलाकात हो सकती है और कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं, कब कितने बजे मिल सकते हैं आपसे हमारे लिसनर्स?
4: मेरा वो कोऑर्डिनेट बन जी, वीकली फर्स्ट 3 डेज में स्कार्बरो रहता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज स्कार्बरो में रहता है, 4 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन ब्रामटन में रहता है। किसी को भी हमारा साथ जोड़ना, हमारा का साथ बात करना है तो मेरा नंबर बहन जी दीजिएगा, वो नंबर पर कॉल कर लिए, अपॉइंटमेंट ले लिए, एड्रेस आपको मैं भेजूंगा।
0: वेरी नाइस। 4374383399 4374383399। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी हमसे जुड़ने के लिए, और फिर आपसे बातचीत होगी।
4: थैंक यू नमस्ते
0: जी। इट्स 2:51 दोस्तों, और आपका मैं शालिनी वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMRFM 101.3। 4374383399 है गुरु जी का नंबर, राइट वे डायल कीजिएगा। चलिए आज के टॉपिक का वक्त है, और आज का टॉपिक इतना मज़ेदार है कि बस अब, लेकिन ये है कि इसको आप ओपनली बोलते हैं कि नहीं। मैं एक बार फिर से आपको चैलेंज करती हूँ, आई लव टू चैलेंज ऑल ऑफ यू एंड माई सेल्फ एज वेल। नथिंग टू फियर डे है, यानी आज का दिन कहता है अपने डर को जरा साइड में रखो और खुलकर जी लो। डरना मना है यहाँ पर, लेकिन ऑनेस्टली अगर हम ह्यूमनली सोचें तो किसी ना किसी चीज़ से हमें डर लगता है। कहते तो हैं कि डर सिर्फ खुदा से लगना चाहिए, सिर्फ भगवान से लगना चाहिए, अल्लाह से लगना चाहिए, जीसस से लगना चाहिए, ऊपर वाले से लगना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी को ड्राइव टेस्ट से डर लगता है, कुछ तो लोग जो हैं अभी तक ड्राइविंग क्लियर नहीं कर पाए, कितने टेस्ट दे डाले, उन्हें आता है, लेकिन डर की वजह से उनमें नर्वसनेस आती है। और इसके बाद कुछ लोगों को फियर है कि यू नो किसी से बात कैसे करें, जाकर किसी को प्रपोज कैसे करें। लड़कियों से डर लगता है कई बार, लड़कों को कई बार, लड़कियों को लड़कों से डर लगता है। तो भाई हर इंसान के अंदर डर कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, कभी हार का, कभी किसी को खोने का, मगर जिंदगी वही खुलकर जीता है दोस्तों जो डर के आगे भी मुस्कुराना जानता है। तो आपसे पूछती हूँ आज कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, ये मेरा आपसे सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डराती है। कि आपको कॉकरोच से डर लगता है मेरे जैसे, हाइट से डर लगता है मेरे जैसे, डार्कनेस से डर लगता है, फोन कॉल से डर लगता है, कभी फोन बजता है तो आपको लगता है आउच पता नहीं किसका कॉल आ गया, या कई लोगों को अपने बैंक बैलेंस को चेक करने से भी डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको किस चीज से डर लगता है। 4165930055। अब देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो ओपनली आकर मुझे बताते हैं कि मुझे इस चीज से डर लगता है। और हाँ, ये भी बता सकते हैं कि आपको डर लगता था और उस डर को निकालने के लिए आपने जिंदगी में क्या किया, ये भी बताइएगा। कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन सी स्ट्रैटेजी आपने अपनी जिंदगी में लगाई। अब मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग कॉल करते हैं इन स्टूडियो और हमें बताते हैं कि आपको वियर्डेस्ट से वियर्डेस्ट चीज से डर लगता है। आपको किसी फोन से डर लगता है, आपको पेन से डर लगता है, आपको किसी लाइट से डर लगता है, ऐसे वियर्ड भी डर लगते हैं कई बार लोगों को। सो टॉक टू अस ऑन 4165930055। और कॉकरोचेस की बात रही तो आपको मैं जरूर बता दूं, आपको बात करनी है वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल से। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट पेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल करते हैं। इको फ्रेंडली सेफ ऑप्शंस हैं इनके पास। फास्ट रिस्पांस टाइम है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। घर और बिजनेस को आप सेफ और पेस्ट फ्री रख सकते हैं। अयान काशिफ जी से राइट अवे बात कर लें। 6479664355 6479664355। वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल, इसको गूगल जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों, CMRFM 101.3 पर आपका फिर से वेलकम करती हूँ। छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, जब तक आप लोग कॉल करते हैं हमें जरूर कीजिएगा, बताइएगा किस एक चीज से आपको डर लगता है या आपने अपना डर कैसे दूर किया है। 4165930055। गुड आफ्टरनून,
3: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 4165697812 4165697812।
5: वीरे, वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
6: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
7: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालों 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
8: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
7: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810 4169012810। मिड्डा फर्नीचर।
9: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20+ साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली, वड़ा, स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 9057896600। दैट्स 9057896600।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
0: भाई, यू गाइज गिव मी सम क्रेडिट, क्योंकि आपके जो सीक्रेट्स हैं मेरे तक बिल्कुल सेफ रहते हैं। आपके सीक्रेट्स बाहर नहीं जाते, लेकिन मैं बाहर निकाल रही हूँ आपके सीक्रेट्स, बिकॉज़ ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है डर लगने का। आपका नाम मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। तो दो लोगों के मैसेज आए हैं। एक ने कहा है मुझे अपनी बीवी से डर लगता है, और दूसरे मैसेज में ये कहा गया कि उन्हें समर से डर लगता है क्योंकि उनके इन लॉज आते हैं हर समर में। तो भाई ये चीज़ तो ऐसी है कि जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल बिटवीन यू गाइज, इट्स योर फैमिली, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। कभी कभी होता है कि कहते हैं कि मियाँ बीवी के बीच में अगर कोई और टांग अड़ाता है तो पूरा घर जो है ना बेडौल हो जाता है, कि इधर उधर सब कुछ हिल जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए वो जो सुखी परिवार है उसको सुखी रहने दें। आप लोग प्लीज़ जाइए, विजिट कीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए और रिस्पेक्ट दीजिए भी, एट द सेम टाइम इन्जॉय योर टाइम। आपके जाने से कभी किसी को डर नहीं लगना चाहिए, किसी को ये नहीं लगना चाहिए उफ समर्स हमारे ख़राब हो गए। आपके जाने से वो जो मौसम है और भी अच्छा लगना चाहिए, इवन इफ द मौसम इज़ नॉट राइट। तो समर, ट्राई टू मेक अदर फील ग्रेट, ट्राई टू मेक अदर्स फील हैप्पी अबाउट देमसेल्व एंड अबाउट योर सेल्फ एज वेल। सो दैट वॉज द इंटरेस्टिंग टू मैसेजेस आई रिसीव। और आप लोग कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं किस चीज़ से आपको डर लगता है। फिलहाल चलते हैं कश्मीर की कली के सुपरहिट गाने की तरफ। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया। This part of the show is sponsored by Win Lifetime. क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो Win Lifetime लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना। फ्री सेमिनार एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा। लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। कॉल 905-206-1008 और विजिट winlifetime.com। मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वैग और साउथ का तड़का। फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26। एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कंक्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर। कॉल 647-766-4335, 647-766-4335।

0: सफर में भी सहूलत चाहती है, मोहब्बत अब मुरव्वत चाहती है। तुम्हारा शौक है, ख्वाहिश भी होगी, मगर तख्लीक हैरत चाहती है। शीन काफ निजाम साहब के इन अशआर के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का, और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते का शुरुआती ड्राफ्ट तैयार हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी ने एक शुरुआती और अनौपचारिक दस्तावेज मिलने का दावा किया है, जिसमें अमेरिका ईरान समझौते का ढांचा तैयार किया गया। ड्राफ्ट के अनुसार अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाएगा और नौसैनिक घेराबंदी खत्म करेगा। इसके बदले ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही को युद्ध से पहले के स्तर पर बहाल करेगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मरियम नवाज सरकार ने लाहौर की सड़कों, चौक और इलाकों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। सरकार जिन नामों को बहाल करना चाहती थी उनमें कई हिंदू और सिख दौर के नाम शामिल थे। सरकार ने एक कदम कट्टरपंथी समूहों और सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध के बाद उठाया। कुछ लोगों ने इसे हिंदू और सिख पहचान वापस लाने की कोशिश बताते हुए धार्मिक रंग दे दिया था। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद अली एजाज ने पाकिस्तानी अखबार डॉन से कहा कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। कनाडा में एक बार फिर खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी हरकत की है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े खालिस्तानी कार्यकर्ता इंद्रजीत सिंह गोसल ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक का काफिला रोक दिया। इतना ही नहीं, खालिस्तानी समर्थक ने पुलिस घेरा तोड़कर उनके सामने भारतीय तिरंगे को फाड़ दिया और उसे पैरों तले रौंदने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारे भी लगाए, साथ ही उसने आरोप लगाया कि पटनायक ने उसकी हत्या की सुपारी दी है। फ्रांस इस समय एक बड़े चाइल्ड अब्यूज स्कैंडल से जूझ रहा है। पेरिस समेत 100 से ज्यादा स्कूलों और डे केयर सेंटर में बच्चों के साथ हिंसा, यौन शोषण और रेप के आरोपों की जांच चल रही है। मामला सामने आने के बाद देश भर में आक्रोश बढ़ गया है। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, जिंदगी एक ही है और चॉइस हमारी होनी चाहिए कि जिंदगी में हम कितना खुश रह सकते हैं। आज हमने हैप्पीनेस की बात की, तो कल भी हम हैप्पीनेस की बात करें, परसों भी हैप्पीनेस की बात करें। तो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। अगर पैसा आपके पास कंसिस्टेंटली आता रहता है ना, तो हैप्पीनेस और सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं और आपकी ज़िंदगी एक परफेक्ट लाइफ होती है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसी परफेक्ट लाइफ चुनना? आई एम श्योर चाहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेकर हम हाजिर हुए हैं मस्ती की रेलगाड़ी पर, और क्योंकि हम यहां पर मस्ती और फन की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं आपकी लाइफ भी ऐसी हो जाए। विन लाइफ टाइम का रुख करेंगे और वहां से एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर एंड ट्रेनर राफी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राफी जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
2: गुड, वेरी वेल। गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच राफी जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर मैं कहूं कि एक लाइन में सम अप करें कि विन लाइफ टाइम किस तरह का इंस्टीट्यूशन है और यहां पर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर कल आने वाले वक्त में आपको ये स्ट्रेस ना हो कि आपकी इनकम कहां से आएगी, तो विन लाइफ टाइम पे आए, सीखें कि हम आपको कौन सा बिजनेस सिखा सकते हैं, ये है विन लाइफ टाइम।
1: हाउ नाइस, क्या बात है कि मतलब अगले दिन

0: डूइंग दिस फॉर सो लॉन्ग नाउ, लेकिन अगर एक मैं एक बोलूँ सब्सटैंशली गुड अमाउंट कमाने के लिए कितना वक्त देना पड़ता है?
1: कुछ लोग 14 दिन में सीख जाते हैं, मोस्ट यूजर्स हमारा सॉफ्टवेयर 3 माह के अंदर अंदर सीख लेते हैं. कुछ लोग थोड़ा एग्रेसिव आते हैं लर्निंग के मोड में, 4 आपकी क्लासेस होंगी, सिखाया जाएगा इन पर्सन, और उसके बाद आपके पास 8 मेंटर्स हैं, एक्सपर्ट सुपरविजन के साथ आप बैठ जाएंगे. खुद से आपने कुछ करना नहीं है, ना आपको इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए ना आपको, तो सारी की सारी चीजें हम टेक केयर करेंगे. आपने सिर्फ आके फॉलो करना है, हमारे सिस्टम को देखना है, और फिर एवरी डे 100, 200, 300. आज भी हमने जो रिजल्ट्स अनाउंस किए, सिंगल डे 24 आवर्स, $1,500.
0: अमेजिंग, क्या बात है, ब्यूटिफुल. तो इसके लिए राफी जी, जैसा आपने कहा कि किसी तरीके का प्रायर एक्सपीरियंस या कोई स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो अगर मैं पूछूं कि जो भी हम ट्रेडिंग सीखते हैं, जो भी पैसा इसमें लगाते हैं, तो क्या उसके लिए हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए इस काम को करने के लिए, रिस्क लेने के लिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारी एक वाहिद फर्म है, हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में आप आए और बिल्कुल अपना पैसा लेके नहीं आना. अपनी हार्ड एंड हनी आपने किसी और कारोबार से बनाई है, अपने ट्रेडिंग में नहीं डालनी. हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एज ए ट्रेडर राइट अवे एज ए कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेती हैं, हम उनके साथ अफिलियेटेड हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ट्रेड करना है.
0: ओह वेरी नाइस. तो राफी जी, आपका जो सेमिनार होने लगा है सैटरडे, उसके लिए जरूर बता दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स पहुंचें और अपनी जिंदगी परफेक्ट कर लें.
1: जी ऑफ कोर्स, बिकॉज इस 5 मिनट के इंटरव्यू में पूरे वीक में चलता है, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारा सेमिनार वेल ओवर 3 to 4 आवर्स जाता है. हमारा क्लेम है कि इस दोनों ऑफिसेस में होगा इस सैटरडे. आप आए, जब तक आपका आखिरी क्वेश्चन नहीं खत्म होगा हम पोडियम नहीं छोड़ेंगे.
0: वाओ, दैट्स अमेजिंग. तो वेल दोस्तों, 10 नंबर के फासलों पर है आपकी खुशी, आपकी एक ब्यूटीफुल सी लाइफ. कॉल कीजिएगा विन लाइफ टाइम में टू बुक योर फ्री सीट, नो ऑब्लिगेशन सीट फॉर द सैटरडे सेमिनार विच इज हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ मिसिसागा, सैटरडे एट 1 PM. 905-206-1008, 905-206-1008, or visit winlifetime.com. Thank you so much, Rafi ji. फिर आपसे जुड़ेंगे. All the best and take care.
1: Thank you, Ji. Take care.
2: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.

वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को वैध और संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बुधवार को कहा कि SIR मनमाना नहीं है और चुनाव आयोग को ये प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन ये फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनके नाम 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजे जाएं। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस फैलने के चलते युगांडा, दक्षिण सूडान और कांगो से अहमदाबाद आए 11 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अधिकारी डॉक्टर भाविन सोलंकी ने बताया कि प्राथमिक जांच में इनमें से कोई भी संदिग्ध नहीं पाया गया, लेकिन एहतियातन ये कदम उठाया गया। वहीं भारत सरकार ने बुधवार को बताया कि देश में इबोला वायरस से जुड़ा एक भी मामला नहीं है। सरकार को ये स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ा क्योंकि युगांडा से भारत आई एक महिला में इबोला जैसे लक्षण देखे गए थे, हालांकि बाद में महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई। महिला 23 मई को बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद उसे एहतियातन सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया। महिला के शरीर में हल्का दर्द था, हालांकि अब वो पूरी तरह स्वस्थ है। तेज गर्मी से जूझ रहे भारत के 80-90% हिस्से में 29 मई से 5 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है। ये बारिश इसलिए अहम है क्योंकि मानसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। यहाँ 14 तय स्टेशनों में लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर बारिश होने पर मानसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है। मौसम विभाग ने 26 मई को मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन यहाँ नमी कमजोर होने

0: से मॉनसून आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं दक्षिण मध्य अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन से भी बादल कमजोर हुए हैं। यूरोप की मौसम एजेंसी यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने सैटेलाइट, समुद्री और वायुमंडली डेटा को मिलाकर भारत में 15 दिनों की बारिश का पूर्वानुमान निकाला। इसमें अगले 8 दिनों में दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी के इलाकों में ज्यादा बारिश के संकेत हैं। और अब कुछ दिलचस्प खबरें। महाराष्ट्र में एक दूल्हे ने शादी में आए मेहमानों का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराया। अमेरिका में एक महिला गलती से दवा समझकर एयरपोर्ट्स निकल गई। दिल्ली में शॉपिंग बैग उठाने के लिए भी अब लड़के किराए पर मिलने लगे हैं। और अहमदाबाद में बैंक कर्मचारी ने आरबीआई खजाने से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा चुरा लिए। वहीं बिहार में गैंगस्टर के घर छापा मारने पहुंची पुलिस टीम की ही तलाशी हो गई। और अब खबर बकरीद से जुड़ी हुई। देशभर में 28 मई को ईद उल अजहा मनाया जाएगा, यानी कि बकरीद। इस मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर में 220 किलो के बकरे सुल्तान की कुर्बानी दी जाएगी। ये एक साल पहले सुल्तान को पंजाब से 1000 किलोमीटर का सफर तय करके लाया गया था। सुल्तान को रोज 2 लीटर दूध, 250 ग्राम ड्राई फ्रूट और करीब 10 किलो पत्ते की डाइट दी जा रही है। जो इसके मालिक हैं मोइन खान, उन्होंने बताया कि उन्हें शुरू से ही कुर्बानी के लिए भारी बकरे लाने का शौक था। सुल्तान को उन्होंने 1,20,000 रुपए में खरीदा। गायक और रैपर यो यो हनी सिंह ने अपनी सेहत और निजी जिंदगी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर और नशे की लत से लड़ाई के दौरान भारी दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण वे पूरी तरह गंजे हो चुके हैं और अब विग लगाते हैं। हनी सिंह ने अपने मानसिक तनाव के दिनों को याद करते हुए बताया कि वे 7 साल तक घर के अंदर ही रहे, जिसमें से 3 साल उन्होंने सिर्फ अपने बेडरूम में बिताए। अब वे इस बीमारी से ठीक होकर इंडस्ट्री में कमबैक कर रहे हैं। हनी सिंह ने साल 2018 और 19 के मुश्किल समय को याद करते हुए बताया कि उन्हें हर वक्त ये वहम रहता था कि वे मर चुके हैं और स्वर्ग नरक के बीच कहीं फंसे हैं। जबकि उनकी माँ उन्हें खाना देती थी तो उन्हें लगता था कि ये उनका आखिरी खाना है। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, और इसका गाना चुनरी चुनरी रिलीज हो चुका है। ये गाना आपने पहले भी सुना होगा। 1999 की फिल्म बीवी नंबर 1 के गाने का रीमेक है ये, जिसे अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा श्रीराम ने गाया था। अब अभिजीत नया गाना देख भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि सुनकर ये किसी भजन जैसा लग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वरुण इस गाने से कभी सलमान नहीं बन सकेंगे। हाल ही में मीडिया से बातचीत में सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा, जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा ये कोई भजन है। चुनरी चुनरी एक रोमांटिक ट्रैक था और इन लोगों ने अब इसे भजन बना दिया है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
1: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
5: Sanjeev Puri of Star Life Insurance and Investment Inc. एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. He can shop around for you for the best plans of insurance that will suit your budget and needs. Sanjeev Puri insurance plans में तो माहिर है ही, लेकिन high risk insurance plans के best rates दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को blood pressure, diabetes, heart attack, bypass surgery, liver या kidney के issues हो या insurance company ने आपकी insurance decline की है, तो Sanjeev Puri को आप call करेंगे free quote के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप insurance policy के बहुत high premium pay कर रहे हैं, तो policy review करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
6: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
7: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
6: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
7: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
6: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
1: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना, जमाना शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना.
8: Say whoa!

0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
3: Yes!

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165. Hum honge aapke
1: saath hamesha. इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
4: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
5: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
6: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600। दैट्स 905-789-6600।
7: शॉन एक्सप्रेस यानी आप और हम, और इस गाने में है कुछ दम।
8: वेल दोस्तों, आपका फिर से शालिनी वेलकम करती है मस्ती की रेलगाड़ी सीएमआर एफएम 101.3। और आज जो है ईद का त्यौहार है, आप लोगों को बहुत बहुत बहुत मुबारक हो आज का त्यौहार। तो आज का जो दिन है वो है सेलिब्रेशन, केयर एंड पॉजिटिविटी से भरा हुआ। ईद उल अधा आज का दिन कहते हैं। कुर्बानी, ग्रैटिट्यूड और शेयरिंग का त्यौहार है और आप के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनों का आप साथ लीजिए, अपनों को वक्त दीजिए और बांट कर जो है ना खुशियां लेने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बांट कर हम जो भी चीज़ लेते हैं, खाना बांट कर लेते हैं, खुशियां बांट कर लेते हैं, समय बांट कर लेते हैं, कोई काम भी अगर आप बांट कर करते हैं तो बरकत होती है। तो कोशिश करें कि शेयरिंग अपनी ज़िंदगी में हम शामिल करें। आप सभी को एक बार फिर से हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। और आज का दिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, नथिंग टू फियर डे। और ये मैं आपसे पूछा था, मैंने आपसे सवाल कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, ज़रूर बताइएगा। हमारे लाइन्स आर ओपन नाउ और आज का जो विनर है उनको दिए जाएंगे स्केचेस के पोलोरॉइड सनग्लासेस और वो स्पॉन्सर कर रहे हैं स्पेक्स एक्सप्रेस। एक विनर निकालेंगे और बिल्कुल फ्री पेयर ऑफ सनग्लासेस उनको दिए जाएंगे। और मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी चीज़ से आपको डर लगता है, या ये बताइए आपकी ज़िंदगी में कौन सा डर था और जो आपने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करके डर निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से, क्या आपने अप्लाई की टेक्निक, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नथिंग टू फियर डे है, कहते हैं डरना हमें सिर्फ ऊपर वाले से चाहिए, डरना किसी और चीज़ से नहीं चाहिए। फिर आज के दिन में क्या खास है, नेशनल हेयर स्टाइलिस्ट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे। जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है उसके लिए, अवेयरनेस के लिए आज का दिन है। स्टाइलिस्ट जो हैं वो सिर्फ लुक नहीं बदलते बल्कि लोगों का जो मूड है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी अपलिफ्ट करते हैं। क्योंकि जब सेल्फ केयर की बात आती है तो ये लोग हमारे बड़े करीब होते हैं, जो हमारे हेयर स्टाइल करते हैं, जब हम फेशियल्स कराने जाते हैं, मसाज कराने जाते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें, तो वो हमारा मूड और कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट करते हैं। तो आज उनकी मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस डे है। वर्ल्ड ऑटर डे भी है। ऑटर्स प्लेफुल अडोरेबल नेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। इसके अलावा नेशनल सीनियर हेल्थ एंड फिटनेस डे है। सीनियर्स जो हैं उन्हें भी अपनी हेल्थ का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए, और हमें भी अगर हमारे साथ कोई सीनियर हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। नेशनल सेलोफीन टेप डे। सेलोफीन टेप हम कैसे भूल सकते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, छोटी छोटी चीज़ों को आपस में जोड़ने के काम आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज सनशाइन है तो वेयर द सनस्क्रीन टुडे, बिकॉज टुडे इज नेशनल सनस्क्रीन डे। स्किन प्रोटेक्शन ज़रूरी है, मौसम चाहे कैसा भी हो, डोंट स्किप योर SPF। तो ये है आज के दिन को देखते हुए बहुत सारी बातें। और अब जो गाने की बारी है, वो गाना मेरे महबूब, बहुत अमेजिंग सा गाना है, तो ये गाना साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। उसके बाद एक मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, बड़ी इंटरेस्टिंग डील्स आपकी नजर करेंगे। मस्ती की रेलगाड़ी पर स्टे ट्यून्ड।

0: भाई प्यार में तड़पना भी बनता है, जब प्यार किया है तो थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेस, थोड़ी बहुत एंजाइटी होना भी ज़रूरी है, राइट? और हमारा बनता है अच्छी अच्छी डील्स लेना, क्यों नहीं? आप जब मस्ती की रेलगाड़ी पर सवार हैं तो आप प्लेन में भी तो जा सकते हैं, प्लेन की भी तो डील्स चाहिए आपको, तो उसके लिए हमारे साथ देओल ट्रैवल की टीम जुड़ने जा रही है लेटेस्ट लेटेस्ट डील्स के साथ। नवजोत जी जुड़ेंगी। नवजोत जी वेलकम
1: थैंक यू सो मच शालिनी।
0: जी, बताइए क्या स्पेशल है आज आपके पास?
1: तो आज हम लेके आए हैं जी बहुत सारी अमेजिंग डील्स। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी जी, वन वे टोरंटो से बैंगलोर अगर आप जून के मंथ में जाते हो तो आपको ये डील सिर्फ और सिर्फ $900 की मिल रही है, जस्ट फॉर वन वे। एंड अगर आप सितंबर से अक्टूबर राउंड ट्रिप करेंगे, इधर यू चूज बॉम्बे और बैंगलोर, बोथ आपको मिल जाएंगे $1580 में, सिर्फ और सिर्फ $1580 में राउंड ट्रिप आपको।
0: क्या बात है।
1: एंड दिल्ली टू बॉम्बे आपके लिए जून से अगस्त मंथ तक हम लेके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 1369 में राउंड ट्रिप।
0: ब्यूटीफुल।
1: एंड वन मोर थिंग, अगर आप टोरंटो से अमृतसर और दिल्ली भी जाना चाहते हो सितंबर से अक्टूबर मंथ में, दो बैग्स के साथ ये डील आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 1699 में।
0: अमेजिंग,
1: और ये सभी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। इसी को प्राप्त करने के लिए अभी कांटेक्ट करें देओल ट्रैवल्स ऑन बोथ लोकेशन, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन। एंड आर फोन नंबर्स आर 9055884200, 9055885100।
0: 9055884200 and 5885100. These are the two numbers, Brampton and Etobicoke, two locations to serve you. Thank you so much, Navjot, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपसे जुड़ेंगे। All the best.
1: Oh, thank you.
0: जी, you're most welcome. Well, दोस्तों, एक बार फिर से आपका हम करते हैं स्वागत। और आज का टॉपिक रिपीट कर दूं, नथिंग टू फियर डे, मतलब आज का दिन कहता है कि डर को जरा साइड में रखो और जिंदगी खुल के जियो। व्हाई नॉट? किसी ना किसी चीज से इंसान डरता जरूर है। हमारे पास जैसे मैसेज आए, एक ने कहा कि मुझे बीवी से डर लगता है, दूसरे ने कहा मुझे अपने इन लॉज से डर लगता है, इसीलिए मुझे समर से डर लगने लगा बिकॉज समर में मेरे इन लॉज मेरे पास आते हैं। एक तीसरा मैसेज आया, उन्होंने कहा जब मैं बचपन में छोटा था, बचपन में छोटे ही होते हैं एनीवेज, तो मैं स्कूल जाने से बहुत डरता था और रोज़ाना ये रिक्वेस्ट करता था, हे भगवान आज मेरे टीचर को कुछ हो जाए, या तो उसका हाथ पैर टूट जाए या कुछ हो जाए और मेरी क्लास की छुट्टी हो जाए। एनीवेज, बच्चे जो होते हैं इस तरह की बातें सोचते हैं, दे डोंट फील कि इसके क्या ये चीज़ कैसी है, कितनी स्ट्रेंज है या कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, उन्हें सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है कि स्कूल ना जाना पड़े। तो बच्चों का मन बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, और इस तरह की चीज़ें बच्चे सोचते हैं, बड़ा क्लियर हार्टेड होते हैं बच्चे। तो किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी को ड्राइविंग से डर लगता है, किसी को बिल्कुल अजीबोगरीब चीज़ से डर लगता है, भूतों से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है वगैरह। तो मुझे आपसे पूछना था कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, या आपको डर लगता था और आपने कुछ स्ट्रेटजीज लगाई और आपका डर ख़त्म हो गया, तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा 4165930055 पर। और आज के विनर को मिलेंगे स्केचर्स के पोलरॉइड सनग्लासेस वन पेयर, और ज़रूर कॉल कीजिएगा और हम सुनेंगे आपसे कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। इट्स 3:35 राइट नाउ। आप हैं हमारे साथ सवार मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3। एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको मैं बता दूँ कि यश विंडोज एंड डोर्स आप तक पहुंचाते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स और रीजनेबल प्राइस में, और खुद ही जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इनकी खुद ही जो है इंस्टॉलर टीम प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है, यानी इनकी फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक, नो कॉम्प्रोमाइज, नो मिडल मैन। और दिस इज अ परफेक्ट एंड सुपीरियर स्टाइल के आपको विंडोज एंड डोर्स मिलते हैं, एक्सेप्शनली गुड लुक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी मिलती है, टॉप ऑफ द लाइन सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ मिलती है। और इनकी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी भी है, अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो एक ग्रोइंग टीम का आप हिस्सा बन सकते हैं। यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600, 416-732-3600। और इसके साथ साथ आप अपने घर या बिजनेस के लिए लगा सकते हैं पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी एक बहुत ही ट्रस्टेड नाम है फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड, और अपनी आउटडोर स्पेस को और ज़्यादा सुंदर एंड फंक्शनल बना सकते हैं। 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन में आप जाइए। कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी का नंबर 416-831-4790, 416-831-4790। और आज का मैं क्विज फिर से बता दूं कि आपको कौन सी चीज़ से डर लगता है, आप ज़रूर बताइएगा। आप डायरेक्टली हमें हमारे डायरेक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 416-569-7812, 416-569-7812, और इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने व्यूज दीजिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, आज के विनर को मिलेंगे स्केचर्स के पोलरॉइड सनग्लासेस स्पॉन्सर्ड बाय स्पेक्स एक्सप्रेस। कॉल कीजिएगा दोस्तों 416-569-7812, 416-569-7812। गुड आफ्टरनून। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
2: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
3: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
2: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
3: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232, 890-3232।
4: लेक डेदा प्लान सी पर टोयोटा टंडरा दे बिना सकून नहीं, शोर मिलिया। जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंडरा ले आओ, ता इस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है। रेड टैग डेज दा लाभ लाओ, लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स DRD ऑफ रोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% APR ते $5,800 डाउन दे नाल। विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर खोल जाओ।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: शॉन एक्सप्रेस, गानों की स्वीट डिश। नजरों ने नजरों से जब बात कर ली, नजरों ने नजरों से जब बात कर ली, दिल ने भी धीरे से मुलाकात कर ली। ना इजहार हुआ ना कोई वादा हुआ, ना कोई इजहार हुआ ना कोई वादा हुआ, फिर भी मोहब्बत ने अपनी शुरुआत कर ली। एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपकी नज़र करने जा रही हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर, और ये गाना बहुत अमेजिंग है। मैं इस गाने को अटेम्प्ट करती हूँ, मैंने कभी इस गाने को गाया नहीं है, बट आई एब्सोल्युटली लव द सॉन्ग। इसकी जो फील है वो बहुत ही पेपी फील है, एंड आई एम श्योर यू विल फॉल इन लव विद समवन आफ्टर लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। ऑलराइट, तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं।

0: ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, बहुत अमेजिंग सा गाना आपकी नजर किया। और हमारे साथ राहुल कश्यप जी जुड़े जा रहे हैं, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हैं हैशटैग होम्स के, और उनके भी ना जहन में दीवानगी की हद तक शामिल है आपको जो है ना अच्छी अच्छी डील्स देना। तो इसीलिए ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। तो राहुल जी, यू प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, ये मैंने गाने को आपके साथ कनेक्ट कर दिया बिकॉज आई नो यू वांट टू गिव द मैक्सिमम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील्स टू अस, सो वेलकम।
1: Dishan ji, very good afternoon to you and all our listeners.
0: गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।
1: जी बिल्कुल, और ये जो अब डील हम लेकर आ रहे हैं, दिस इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ जून। जून में हम एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन लॉन्चेस लेकर आने वाले हैं। पहला जो लॉन्च आने वाला है वो है साउथ मिसिसागा में, राइट एट द पोर्ट क्रेडिट, लेक व्यू विलेज, ओरा टाउन होम्स का फेज टू। जी हाँ, दीज आर टू स्टोरी स्टैक टाउन्स जो साउथ मिसिसागा पोर्ट क्रेडिट के एरिया में आने वाले हैं। फेज वन गॉट सोल्ड आउट इन टू डेज, ओवर टू डेज कंप्लीटली सोल्ड आउट। दिस इज फेज टू, यहाँ पे प्राइसिंग शुरू होने वाली है नेट ऑफ एजेसी के साथ आपको फ्रॉम मिड 500 से, एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग फॉर लोकेशन लाइक दिस। यू गेटिंग टू बेडरूम्स मिनिमम, एंड अगेन सेम फेज वन की तरह यहाँ पे फेज टू की एक्सपेक्टेशन यही है कि इट्स गोना गेट सोल्ड आउट विद इन द फर्स्ट वीकेंड। सो जो भी हमारे लिसनर्स हैं, अगर आप साउथ मिसिसागा में इंटरेस्टेड हैं, यू वॉन्ट टू गेट एक्सेस टू लेकव्यू विलेज साइट, यू वॉन्ट एक्सेस टू दीज ओरा टाउन होम्स फेज टू, get in touch with our team right away because iska launch first week of June mein ho jayega, and waisa ki tarah we have priority access for our clients. Number two, Shalini ji, which I'm really really excited about, this project is coming up at Caledon, aur yahan pe townhomes, semis, detached homes ki master plan community aane wali hai, jahan pe almost 2500 homes ki ye master plan community hai, yahan pe especially for the South Asian community ke ko mindset mein rakhe. Yeah, so city is building, and this community itself, you are going to have a cricket pitch being built for you guys. On top of that, basketball courts, tennis courts, splash pad area for the kids. So this is, it's a master plan community that's been built. Yahan pe almost 2500 homes aane wale hain, mix of freehold town homes, semis and detached.
0: Wow.
1: Now, iska launch hai, wo June 17th ko hoga. Lekin, we can start reserving units beforehand. We have guaranteed allocations available in this site, and I'll give our listeners the price range today, so you don't have to wait till June 17th. Jo
0: very nice.
1: Townhomes hai, they will be starting from mid 700s. And
0: beautiful.
1: These are not small townhome guys. These are big townhomes. I have more details, but I cannot share everything on the radio. So townhomes, why townhomes starting from mid 700s? Semi-detached homes starting from mid-800s.
0: Wow.
1: Fully detached, double-car garage detached homes starting
0: very nice.
1: From mid-900,000 range.
0: Oh,
1: that's
0: my
1: the
0: God.
1: Pricing, guys. So mid-700 pounds, mid-800 for the semis, mid-900 for your detached homes. Closing up end of 2027, going into early 2028, and that's for phase one. And
0: very
1: I can
0: nice.
1: Tell you, phase one is the one where you're going to make a lot of money, guys, because these prices are unheard of for Caledon, for that location. And these are not your three-story towns. These are your traditional two-story townhomes, semis, and detached homes with backyards.
0: Very nice.
1: So,
0: kya baat hai, Rahul ji? आप तो राहुल जी ये जो प्रोजेक्ट है ना, इतनी अच्छे दिन बता रहे हैं, क्योंकि आज ही जो हमने खबर शेयर करी है अपने लिसनर्स के साथ कि हाउसिंग मार्केट से बड़ी राहत की खबर आ रही है, और अप्रैल के महीने में 1100 से ज़्यादा घर बिके हैं, तो ये जो मार्केट है वो पिकअप हो चुका है, और इसके बाद जो अपना HST क्रेडिट भी दिया जा रहा है उसके चलते पीपल आर वेरी एक्साइटेड, और इसको देखते हुए आपकी जो प्राइसिंग है और जो एरिया है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग।
1: जी absolutely, and you basically said it rightly. जो अप्रैल के नंबर्स आए हैं, they are very very promising, especially for the low rise. जो low rise की साइट्स हैं, they have done phenomenally well, as long as they were priced right, and they have been priced right. So तभी आपने सक्सेस देखी, जो इवन कायवन लेकर आए थे, ओरा फेज वन, वो बिका है, वो फिल्म में जो उनका भी पीछे रिव्यू का लॉन्च हुआ था, that got sold out in matter of 3 hours. 127 lots were sold in 3 hours, guys. Now, wow. Once again, Aura Phase 2 in South Mississauga, Fort Credit ka wo area hai, Lakeview Village, wahan pe aane wale hain. Aur saath hi saath ab jo ye Caledon mein project aane wala hai, jahan pe mid-700 se aapko bade townhomes milne wale, chote nahi hain. These are wider. Wow. We have more details. Unfortunately, I can't share everything on the radio channel, so jo humare listeners hai, unko aur details chahiye, they have to call me. They have to get in touch with our team, because we can definitely tell you over the phone what else you're going to be getting here.
0: That's right.
1: So again, the pricing is king. The location is king. The incentives that you're going to be getting, which I can't tell you right now, but they're going to be phenomenal. And you cannot go wrong, guys. So get in touch with our team right away. And Shalini, I'm looking forward to seeing you this Friday to share more information on these upcoming sites that we have.
0: That's right. बिल्कुल राहुल जी, आपसे मुलाकात होती है इन स्टूडियो और सारे हम एक एक करके डिटेल्स जानेंगे और हमारे लिसनर्स आपको देख भी सकते हैं सोशल मीडिया पर और आपको सुन भी सकते हैं. तो दोस्तों, नंबर आप हॉटलाइन नंबर नोट कर लें, इससे पहले कि प्राइस बढ़े इन घरों की, आप जल्दी से अपना फेवरेट लॉट बुक करा लें, राहुल जी से बात करें. 6479934844 6479934844. Thank you so much, Rahul ji, and look forward to seeing you on Friday then. Take care.
1: Thank you so much,
0: Rahul. All the best. Well, दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं वेलकम करती हूँ CMR FM 101.3 पर. शो के बाद हमारा डायरेक्ट नंबर 416-569-7812 416-569-7812. और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें कि घर में अगर किसी तरह की रिपेयर करानी हो, इंस्टॉलेशन करानी हो, इंटीरियर या एक्सटीरियर, किचन, बाथरूम्स, बेसमेंट्स, रूफ, साइडिंग्स, डेक, अप्लाइंसेस, कोई भी काम हो, ड्राईवॉल का काम हो, फ्लोरिंग का काम हो, पेंटिंग करानी हो, फिनिशिंग करानी हो, रेनोवेशन का कोई भी काम हो, ए टू जेड, तो अजीम गेट्स इट डन राइट द फर्स्ट टाइम. वेरी वेरी गुड रिव्यूज, ऑनेस्ट, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी हैं अजीम, और क्वालिटी वर्क डिलीवर करते हैं और विच इज़ गारंटीड. और आपका घर जो है एक सेफ हैंड्स में होना चाहिए. कॉल कीजिए अजीम को 6472808806. कुछ मैसेजेस लेंगे, टाइनी से मैसेजेस, और उसके बाद वापस लाते हैं दोस्तों. और आज का आखिरी गाना बहुत प्यारा है, आपकी नजर करेंगे. स्टे ट्यून्ड.
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी. शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट. और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ. डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल. तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए. लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए. कॉल 416-522-0543.
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस.
0: जादू है, नशा है, मदहोशिया तुझको

यही गाना आपकी नजर करते हैं, और ये वादा रहा कि कल फिर से जुड़ेंगे हम 2 से 4 मस्ती की रेलगाड़ी लेकर ऑन CMR FM 101.3। शालिनी को दें इजाजत शो के बाद। फॉर ऑल योर बिजनेस प्रमोशंस हमारा डायरेक्ट नंबर, अगर आप अपने एडवर्टाइजिंग स्पॉट्स हमारे शो में बुक करना चाहें, डायरेक्ट नंबर टू रीच अस 416-569-7812, 416-569-7812। कल तक के लिए शालिनी को दे इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812 और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com. Shawn Express, a Shawn Media presentation.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: Opinions and endorsements by various advertisers and contributors to the following show on CMR 101.3 FM are not to be considered as that of the show or CMR. Listeners are urged to use their own discernment to draw their own conclusions. The following show and CMR 101.3 FM does not confirm nor deny the validity or accuracy of the information conveyed by the advertisers and contributors. Its sole purpose is to provide information and entertainment.
3: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
4: जो हो आपके दिल के करीब,
3: जो मनाए आपके त्योहार,
4: रखे चुटकुले तैयार,
3: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
4: जहाँ मचे शायरी की धूम,
3: जो दे खबरें अप टू डेट
4: और दे ढेरों इनाम।
3: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
4: जतिन के संग
3: ऑन CMR 101.3 FM. Tune in Monday to Friday or log on to cmr.fm.
5: हाँ जी मित्र भाइयों, यू नो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम, ईद मुबारक। मित्र भाइयों, ईद उल फितर इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है। यह पर्व त्याग, भक्ति और दान का प्रतीक है। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है क्योंकि इस ईद में विशेष रूप से मीठे पकवान बनाए जाते हैं, विशेष रूप से सेवइयां। हाँ जी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये हिडन वॉइस हम है आपके दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
4: इसके पीने पे तबीयत तुम्हें रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए।
5: वाह मॉम, डैड इज इन अ जॉली गुड मूड टुडे, व्हाट इज द रीजन?
6: दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ फेमस मसाला चाय बाय नेविगेटर्स कैफे।
5: आई नो दिस प्लेस, दे आर आल्सो फेमस फॉर डिलीशियस स्नैक्स लाइक आलू पेटीज, समोसा, वड़ा पाव, स्प्रिंग रोल्स, मैंगो लस्सी एंड माय फेवरेट समोसा चाट एंड भेल।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरुलक्ष्मी.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: लेक डेदा प्लान सी पर टोयोटा टंड्रा दे बिना सकून नहीं शोर मिलिया जेकर तुसी अपने स्थानक टोयोटा डीलर तो टंड्रा ले आओ ता एस दी 11,000 पाउंड्स तक दी टोइंग कैपेसिटी दे नाल तुसी फैसला करोगे कि रुकना किथे है रेडटेक डेज दा लाभ लाओ लीज करो 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स डीआरडी ऑफरोड $172 वीकली तो 36 मंथ्स लाई 4.29% एपीआर ते $5,800 डाउन दे नाल विजिट shoptoyota.ca जा अज ही अपने लोकल टोयोटा डीलर कोल जा
4: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545
5: घर कहीं भी लेना हो या

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
7: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
8: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
9: Another Don Clean with the Don Ducks.
10: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
11: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
10: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
11: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
10: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
11: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
10: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
9: Dawn Platinum, the better grease getter.
12: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस. कॉल करें 416-660-8545.

0: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
1: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
3: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
5: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
5: डॉक्टर नील गजर, 735 ट्वीन एवेन्यू, स्वीट 16, मिसिसागा। कॉल 289-401-0009।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई और ले जाना है, तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस FM 101.3 और मैं हूं अमिताभ। ईद मुबारक आप सभी को। आज का दिन अपनों के साथ मोहब्बत और खुशियां बनाने का दिन है। रेडियो वॉइस FM 101.3 की तरफ से आप सभी को दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मे योर होम्स बी फिल्ड विद लव, सेवैया एंड ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। आइए अब बात करें GTHA के रियल एस्टेट की, क्योंकि अपना घर होना तो हम सभी का सपना है। जॉइनिंग अस नाउ एंड एवरी वेंसडे एट 4:25 PM इज अ मैन हु हैज टर्न्ड दैट ड्रीम इनटू अ रियलिटी फॉर थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज अक्रॉस द GTA एंड बियॉन्ड। अ नेम यू ट्रस्ट, अ वॉइस यू रिलाई ऑन, द वन एंड ओनली मिस्टर PK सबरवाल। सबरवाल जी अपने साथ लाते हैं डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, हजारों फैमिलीज का अपना घर खरीदने के सपने को पूरा करने का इत्मीनान, और हर हफ्ते आपके लिए मार्केट का पूरा हिसाब किताब बिल्कुल सीधा और सच्चा। चाहे आप पहला घर खरीदना चाहते हो या प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन और विश्लेषण सबरवाल साहब से आपको मिलेगा यहीं रेडियो वॉइस पर। सबरवाल साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे 4:50 तक। तो अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप PK से डायरेक्टली पूछ सकते हैं बाय कॉलिंग आवर स्टूडियोज ऑन 416-593-0055। सबरवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज हमारी श्रोताओं को अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाने दे और हम सभी को रियल एस्टेट की दुनिया की कुछ खास अपडेट्स दे इस हफ्ते की।
2: थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल अवर लिसनर्स। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि इस वक्त एक्टिविटी कुछ स्टार्ट हो चुकी है रियल एस्टेट के अंदर, जो है अब हलचल आ गई। स्पेशली 1 अप्रैल से जो 13% HST इन्होंने हटाई है और नए घरों में, उसके बाद हलचल शुरू हुई है और उसका असर कुछ रीसेल के अंदर भी पड़ा है। और एक आज ही की सुबह की खबर है कि मार्च से अप्रैल के अंत के बाद ये लो राइज के अंदर बड़ा भारी सेल्स के अंदर जंप आया है, और जो कि अपने आप में एक पिछले 10 साल के अंदर ये पहली बार देखा जा रहा है कि इस तरीके से बड़ा हुआ है डिटैच घरों में, सेमी डिटैच के अंदर, विच इज ए वेरी गुड न्यूज। और ऑन द होल अपार्टमेंट्स के अंदर, प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर, रीसेल के अंदर ये इस वक्त यस गहमा गहमी आ चुकी है और हलचल स्टार्ट हो चुकी है और हमारे यहाँ पर हमारे रियल्टर्स बिजी हो चुके हैं जी।
1: ये तो बहुत अच्छी खबर है क्योंकि मौसम भी सुधर रहा है और हमारी उम्मीद है कि रियल एस्टेट का मार्केट भी धीरे धीरे सही लेकिन थोड़ा सा अपने उतार की तरफ आए, ये हमारी उम्मीद है।
2: स्प्रिंग और समर जो है, वैसे भी स्प्रिंग और समर ये रियल एस्टेट के लिए ये एक्शन का महीना माना जाता है, महीने माने जाते हैं स्प्रिंग और समर के महीने। तो ये भी एक कारण होगा कि मौसम खुल गया, डबल डिजिट में गर्मी आ गई और थोड़ा लोग बाहर निकले जी।
1: चलिए अच्छी पॉजिटिव खबर के साथ शुरुआत करिए हमने। सबरवाल साहब, मेरा पहला प्रश्न था जो मेरे को किसी ने टेक्स्ट पे पूछा है कि रिटेल सेल जो इंक्रीज हुई है, विल इट हैव एन इंपैक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट्स एज वेल?
2: रिटेल सेल का इंटरेस्ट रेट पे या इंटरेस्ट का रिटेल सेल पे?
1: सॉरी, अदर वे अराउंड।
2: देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी आपने ये देखा होगा कि रिटेल सेल जो है ये हमारी अभी फ्राइडे को जो रिपोर्ट आई वो बड़ी है 0.9%, और ये 0.9 बढ़ के 72 बिलियन समथिंग हुई है फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। और जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी जो स्टैट्स कनाडा की वो थी 0.6% ग्रोथ की, लेकिन 0.9 हुई। अब जब ये रिटेल सेल बढ़ी तो ये कहा जाने लगा कि अब तो इंटरेस्ट रेट का इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे भी कुछ मैसेज आए, जैसे अभी आपने पूछा, आपको भी टेक्स्ट मैसेज आया ये वाला, लेकिन इसमें बैंक ऑफ कनाडा कुछ एक्शन नहीं लेगा मेरे हिसाब से। कारण ये है कि ये सेल का जो बड़ा है ये इसमें बहुत बड़ा हिस्सा गैसोलीन का है, 12.4% सर्ज इन सेल्स एट गैसोलीन। अब गैसोलीन के अंदर भी कहते हैं सेल बढ़ गई 12.4, वो फिगर भी गलत है। गैसोलीन का वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है, थोड़ा कमी हुआ होगा, लेकिन क्योंकि प्राइस बहुत जबरदस्त बढ़ गया तो उससे सेल बढ़ती नजर आ रही है। उससे सेल बढ़ती नजर आ रही है और एक एक रॉन्ग सी फिगर सामने आ रही है जिसको कि कई इकोनॉमिस्ट ने भी कहा कि ये फिगर एक करेक्ट फिगर नहीं है, ये टेम्परेरी। हाँ, एक क्वार्टर के अंदर आ जाए, दो क्वार्टर के, तीन क्वार्टर के अंदर तो फिर बात मानी जा सकती है, लेकिन अगर ये एक बार की एक महीने की ग्रोथ है तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपने भी देखा कि एक महीने के अंदर अंदर गैस सिलेंडर के प्राइस कहाँ से कहाँ चले गए, और उसको अगर हम रिटेल सेल में डाल दें तो रिटेल सेल बढ़ गई, अगर उसको हटा दें तो नहीं बढ़ी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर बैंक ऑफ कनाडा कहता है कि हमने इंटरेस्ट रेट को छेड़ना है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है ये होल्ड में ही रहेगा, जिस हिसाब से हमारे हालात चल रहे हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2026 कोई बढ़ने घटने वाला मुझे नजर नहीं आता। जी
1: हाँ, पिछले हफ्ते थोड़ी सी आशाएं बंधी थी कि ईरान और यूएस के बीच में जो तनाव है वो थोड़ा शायद कम हो, लेकिन पिछले दो दिनों में जो घटनाएं हुई है उससे तो लगता नहीं है कि वो तनाव अभी फिलहाल खत्म होता दिख रहा है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा ही मार्केट सेंटिमेंट्स पे, मेरा ऐसा मानना है। आप कैसे?
2: बिल्कुल ठीक बात है। और आपका, और उसके अलावा ये जो ईरान वगैरह का कंफ्लिक्ट है और जो इन्फ्लेशन है उसका असर ज्यादा यूएस में पड़ रहा है ना कि ज्यादा कनाडा में, क्योंकि कनाडा अभी भी बड़ा अपने आप रिलायंट है, सेल्फ रिलायंट है। और पहले कहा जाता था कि कनाडा जो है फॉलो करेगा यूएस को फॉर इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल, पर अब वो फॉलो करने वाली बात मुझे नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूएस में पहले पड़ेगा ये इन्फ्लेशन के ऊपर, ये वॉर का गैस जो जो ये स्टेट ऑफ ह्यूमस का जो है ये जो है इसका असर मैं फिर कहूंगा कि यूएस में पहले है, कनाडा में बाद में है। और कनाडा अपने ढंग से चलेगा, देख लीजिए अभी कहाँ कहाँ जगह जगह इनकी कहानी साहब जा रहे हैं मुलाकात, अभी स्वीडन से भी बात हो रही है उनकी, जो आपने देखा होगा उससे पैकेज साइन करके आए हैं, अभी बात चल रही है आगे। तो मेरे को लगता है कि हम लोग इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं और ये एक अच्छी खबर है या अच्छा झटका है मैं तो कहूंगा सेल्फ रिलायंस होने के लिए। जी
1: बहुत मेरे ख्याल, मेरा ये मानना है सबरवाल साहब कि ये बहुत अच्छी खबर है। और आपने सुना होगा कि कल से आज और परसों तक शायद इंडिया से करीबन 100 लोगों का ट्रेड डेलीगेशन आया है मिनिस्टर पीयूष गोयल के नेतृत्व में टू साइन एंड टॉक टू बिजनेसेस एंड अदर पीपल इन कनाडा टू मेक डील्स। तो कनाडा ने भी शुरू कर दिया है यूएस से।
2: कल मैं अमिताभ जी, कल मैं उसी डेलीगेशन जी उनके साथ था, मैं कल शाम को पीएसएन कन्वेंशन के अंदर लगभग 1000 लोग थे और बड़े बड़े इंडस्ट्री हजार थे। लकीली विद गॉड ग्रेस मैं भी इनवाइटेड था वहां पर और मेरे को भी उनसे मिलने का मौका मिला कल, पीयूष जी को मेरे को मिलने का मौका मिला कल। और जी, और 100 लोगों का डेलीगेशन, ये बहुत सालों के बाद ये हुआ है ऐसा एक्शन। और ये मैं कहूंगा कि जब कहानी साहब गए थे वहां पर इंडिया और तो ये उसी का ही रिजल्ट है। और पीयूष साहब का कल लगभग 45 मिनट का भाषण था, बहुत एनकरेजिंग था और बहुत अप्रिशिएट करने वाला भाषण था उनका।
1: टाइज बिटवीन कनाडा एंड इंडिया,
2: और बहुत कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ से इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, वो यूरेनियम की भी बात चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था और ये हमारे हक में जा रहा है बिल्कुल। ऑलरेडी वो डेलीगेशन जो आया यहाँ पर 100 लोगों का, दिस इज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी
1: तो ये एक और अच्छी खबर होगी, मतलब ठीक है, जब हम तो डूबते को तिनके का सहारा, तो जो भी छोटी छोटी भी अच्छी खबरें आ रही हैं उसको हम पकड़ लेते हैं और उस पर फोकस रखना मेरे ख्याल से आज की तारीख में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिविटी तो हमारे पास आसपास घूम ही रही है इतने महीनों से, तो उस पर हम क्यों फोकस करें।
2: हम अपना जरा स्टूडियो का नंबर एक बार फिर दे दें अपने लिसनर्स को अगर कोई कॉल करना चाहे तो।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, सबरवाल साहब ने जैसा कहा कि सबरवाल साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगले 15 से 20 मिनट तक। तो अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन उठाइए और स्टूडियो फोन करिए 416-593-0055, जहां सबरवाल साहब आपके प्रश्नों का उत्तर डायरेक्टली देंगे। प्लीज गो अहेड, जैसा भी आपका प्रश्न हो रियल एस्टेट से जुड़ा होना चाहिए। और एक गुजारिश ये है कि अपना नाम बताना ना भूले। जी सबरवाल साहब।
2: जी जी जी जी, सो
1: आज मुझे लग रहा है सबरवाल साहब थोड़ी कॉल शायद हमको कम आए, क्योंकि आज बहुत से हमारे लिसनर्स ईद का त्योहार मना रहे हैं,
2: ईद मना रहे हैं और बहुत मैसेज ईद के आए मेरे ऑफिस से भी, इसके मैसेज सबको गए और हमें आए। ईद मुबारक हो हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को, ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी
1: सबरवाल साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, एक MMI की एक रिपोर्ट आई थी ऑन हाउसिंग स्टार्ट्स, तो उसके बारे में आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं प्लीज, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
2: हाँ बिल्कुल, तो भी यही चर्चा हुई थी एक और रेडियो स्टेशन के अंदर। ये MMI मिसिंग मिडिल इनिशिएटिव, MMI मिसिंग मिडिल इनिशिएटिव बेस्ड ये एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट, ये इन्होंने अपनी एक अपना ब्रीफ हाउस ऑफ कॉमन्स को सबमिट किया था, हाउस ऑफ कॉमन्स स्टैंडिंग कमेटी को लास्ट वीक में किया था इन्होंने, और इसको जो है ये जो ब्रीफ था ये ऑथर्ड बाई MMI के माइक मोफेट, उनकी तरफ से आया था। उन्होंने CMSC की रिपोर्ट एक प्रोजेक्शन को पकड़ के अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें CMSC की रिपोर्ट में कहा गया था कि हाउसिंग स्टार्ट विल डिक्लाइन इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा कि डिक्लाइन को तो छोड़िए, अगर ये नहीं भी डिक्लाइन होता तो हाउसिंग स्टार्ट को एक प्रैक्टिकल ढंग से पेश नहीं किया जा रहा, ना उसको फॉलो किया जा रहा है। हम लोग इसमें नाम ही उन्होंने रखा मिसिंग मिडिल, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए या बाकी फैमिलीज के लिए भी ये हाउसिंग स्टार्ट कोई मायना नहीं रखती अगर उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। हम कहते हैं जी हाउसिंग स्टार्ट इतना शॉर्ट रह गया, मैं कहता हूँ पूरा भी हो गया, वो कह रहे हैं तो मुझे बताइए हाउसिंग स्टार्ट के अंदर स्टूडियोज अपार्टमेंट आ रहे हैं मान लीजिए 20%, एक फैमिली 5 लोगों की, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, क्या वो 300 स्क्वायर फुट के स्टूडियो में रह सकते हैं?
1: Impossible.
2: उनके लिए तो हाउसिंग स्टार्ट मायना ही नहीं रखती, उनकी जरूरत क्या है, हाउसिंग स्टार्ट तो उस हिसाब से होना चाहिए। एक फैमिली की इनकम क्या है, एक फैमिली का फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, उस हिसाब से हाउसिंग स्टार्ट होना चाहिए कि उनका रेंट टू ओन, रेंट टू इनकम नॉट ओन, रेंट टू इनकम और प्राइस टू इनकम, उस हिसाब से घर बनने चाहिए। भाई इनकम के हिसाब से वो कितना रेंट दे सकता है वैसे घर बनने चाहिए, और इनकम के हिसाब से कितना क्या घर ले सकता है उस हिसाब से घर बनने चाहिए, ना कि सिंपल डाल दिया हाउसिंग स्टार्ट इतने हो गए। ये उन्होंने 10 रिकमेंडेशन दी थी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इस छोटे से टाइम पे सारी रिकमेंडेशन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बातें उनके अंदर जरूर मैं आपसे अगर इजाजत देते हैं तो मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ। कुछ पॉइंट्स उनके बहुत अच्छे थे, जैसे उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कमिट किया है 5 लाख एनुअल हाउसिंग स्टार्ट होंगे बाय 2035। कहते हैं ये फिगर अलोन ये फैमिलीज की एक्चुअल नीड के हिसाब से तो पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन गोल एंड टारगेट, हमारा टारगेट ये टारगेट ये टारगेट पड़ा रह जाएगा, गोल पूरा अचीव करो इसी वक्त, हमने हर साल ये अचीव करना है। और गोल क्या है कि हमने फैमिलीज को एक छत देनी है, सिर्फ एक छत देनी है रहने के लिए। वो कैसे होगी वो उनकी उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी इनकम, उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर उन्होंने किए जिसका नाम रखा उन्होंने KPI, वो होना चाहिए वो की इसका जो गोल के साथ जो की परफॉर्मेंस इनिशिएटिव है जो इंडिकेटर्स है वो होना चाहिए, फैमिली की इनकम जैसे मैंने बताया, उनका फैमिली स्ट्रक्चर और उनकी जरूरतें, उनकी कम्युनिटी। तो इसके अलावा जो है उन्होंने ये बोला कि ये भी रिकॉग्नाइज किया जाए कि फैमिली साइज होम हो, ना कि एक सिर्फ माचिस की डिब्बी हो, एक मैच बॉक्स हो, ये फैमिली साइज होम हो जिसमें एक प्रॉपर ढंग से फैमिली रह सके। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए बिटवीन पॉलिसी एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। पॉलिसी क्या हो रही है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया CMSC का रिपोर्ट आती है 3 साल के बाद
1: जी।
2: जब बनने शुरू हो जाते हैं CMSA के पास पहली रिपोर्ट आने की क्या बनने जा रहा है, तब तो बात हुई। अब जैसे उन्होंने कहा HST एनहांस जो किया उन्होंने रिबेट वो 31 मार्च 2027 तक की है, कहते उसके बाद क्या होगा, फिर झटका लगेगा, फिर तो दो किस्म की कैटेगरी मार्केट में हो जाएंगी, एक वो जिनको 13% का बेनिफिट हो गया, एक वो अब वो अचानक झटके से 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल 2027 से फिर महंगा लेना शुरू कर देंगे, ये क्या मजाक है। उन्होंने कहा इसको एक्सपेंड किया जाए, नॉट ओनली एक्सपेंड किया जाए बियॉन्ड 2027 बल्कि बियॉन्ड ओंटारियो टू ऑल प्रोविंसेस, हर प्रोविंसेस के अंदर इस बात का फायदा होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया और ये ओंटारियो के अंदर ही जरूरत है, अलग अलग सिटी अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर भी लोगों को उनके उस सिटी के हिसाब से उनकी उनकी जरूरतें हैं, उनकी जॉब्स के हिसाब से उनकी जरूरतें हैं, उसको किया जाए। एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बड़ी अच्छी की कि जो डेवलपमेंट चार्जेस अब जब हम बिल्डर के थ्रू पास ऑन करते हैं तो वो महंगा पड़ जाता है। जैसे डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने कहा कि जी 51 माफ कर दिए जाए, तो पहले आपने बिल्डर को, पहले बिल्डर ने डेवलपमेंट चार्जेस आपसे क्लेम कर लिए,
1: राइट,
2: उसके ऊपर बिल्डर ने लोन ले लिया, फिर लोन के ऊपर उसने इंटरेस्ट दे दिया, फिर क्योंकि जब लोन लेगा तो इंटरेस्ट देगा, फिर वो इंटरेस्ट समेत डेवलपमेंट चार्जेस पास ऑन कर दिए उसने बायर को, तो बायर ने क्या किया, डेवलपमेंट चार्जेस का टैक्स दिया और फिर टैक्स के ऊपर एक और टैक्स दे दिया, इंटरेस्ट का टैक्स दे दिया एक और। व्हाई, ये क्यों ना सीधा बायर को दे दिया जाए, क्यों बीच में मिसिंग मिडल को हटा दिया जाए, डेवलपर को हटा दिया जाए और सीधा बायर के पास क्यों नहीं सीधा पास ऑन किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, बहुत अच्छी बात थी। इसीलिए इसी प्रकार उन्होंने मल्टी यूनिट रेंटल बिल्डिंग के ऊपर भी टैक्स प्रोविजन की बात करी है, जो प्रोविजन जो लिबरल सरकार ने दिए थे आपको याद होगा 2025 के इलेक्शन में कि मल्टी यूनिट रेंटल बिल्डिंग के MURB जिसको कहते हैं उसके ऊपर टैक्स प्रोविजन प्रॉमिस किए थे, वो कहाँ है, वो लाइए, उसे चैनलाइज करिए प्रॉपर ढंग से, सिर्फ बातें मत करिए, लेकर आइए। ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि एक बात उनकी और मेरे को बहुत अच्छी लगी जो कि मैं कई सालों से कहता आ रहा हूँ कि उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि फेडरल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को चैनलाइज किया जाए, बिल्कुल टाई किया जाए प्रोविंशियल एंड म्यूनिसिपलिटी सरकार के साथ, एक बनकर चले तीनों के तीनों, ताकि तीनों के रास्ते अलग अलग ना हो। फेडरल सरकार कुछ कह रही है, आगे प्रोविंशियल कुछ कह देती है, म्यूनसिपैलिटी कुछ कह देते हैं, किसी म्यूनसिपैलिटी को ग्रांट मिल जाती है, किसी को मिलती नहीं, कोई टारगेट पूरा कर लेता ले लेता है, कोई दूसरा लेता नहीं, एक सिटी महंगी होगी एक सिटी सस्ती होगी, क्यों क्यों ना टाई किया जाए, तीनों तीनों तीनों आधारों को सही करके चला जाए। ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी, तो मैंने दो चार पांच आपसे डिस्कस कर ली, अदरवाइज ये रिपोर्ट बड़ी डिटेल में कई पेजों की आई और बड़ा बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आया इसको पढ़ के और आई एंजॉय इट।
1: काफी अच्छी थी, काफी आई ओपनिंग थी, मतलब मेरे जैसे के लिए जो रियल एस्टेट से इतनी इतनी करीब से नहीं जुड़े हुए हैं। सो जो जो जो आपने तथ्य पेश किए काफी काफी आई ओपनिंग थे सबरवाल साहब, थैंक यू।
2: जी जी जी जी जी।
1: सबरवाल साहब कुछ क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूं। तो एक सज्जन का कहना यह है कि डेटा ये कह रहा है कि हैमिल्टन में एवरेज घर का प्राइस है $764,000 और टोरंटो में वही घर 1 मिलियन से ऊपर का है, और अब हैमिल्टन में गो ट्रांजिट कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होने चली है। तो क्या हमारे लिसनर्स जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उन्हें हैमिल्टन बर्लिंगटन की तरफ देखना चाहिए? GTHA में आज का स्वीट स्पॉट कहाँ पर है आपके हिसाब से?
2: देखो ये स्वीट स्पॉट जो है वो आउट ऑफ हलचल है, आउट ऑफ भीड़ भड़का है, आउट ऑफ डेंसिटी है। सीधी सी बात है, मैं हैमिल्टन के अंदर अभी भी गुंजाइश है, इस बात से एग्री करता हूँ। अभी भी हैमिल्टन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत वहां पर डिमांड है, उस हिसाब से प्राइस उतना नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, हैमिल्टन में प्राइस बड़ा जबरदस्त गिरा है इन दिनों में, कि जब मार्केट में पूरा प्राइस गिरा तो उसका बहुत बड़ा झटका हैमिल्टन में भी लगा था। क्यों? क्योंकि हैमिल्टन के अंदर प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, जितनी तेजी से प्राइस बढ़े थे उतनी तेजी से वहां पर गिरे हैं। लेकिन आप हैमिल्टन से थोड़ा अगर और आगे चले जाएं तो एनकेस्टर वगैरह या ब्रांटफोर्ड वगैरह उस तरफ चले जाएं तो वहां पर भी प्राइस आपको बहुत ज्यादा गिरे हुए मिलेंगे इस वक्त तो, और बड़े वहां पर भी बहुत ज्यादा तेज थे, लेकिन वहां पर अभी भी गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यस हैमिल्टन इज ए राइट प्लेस टू इन्वेस्ट, बट हैमिल्टन इज ए राइट प्लेस टू इन्वेस्ट इफ यू कैन होल्ड फॉर अनदर 5 to 10 years। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स की इंतजार मत करिए, मैं ये मानूंगा। बाकी डाउनटाउन के अंदर हमारा कंपेरिजन ही गलत हो रहा है, क्योंकि डाउनटाउन और हैमिल्टन बिल्कुल डिफरेंट डेमोग्राफिक है, बिल्कुल डिफरेंट एरिया है। और वहां पर देखो टोरंटो डाउनटाउन के अंदर ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जहां पर 20-20 मिलियन के अपार्टमेंट्स हैं,
1: right.
2: और वो एक हॉटस्पॉट है, जॉब का हब है, ऑफिस वगैरह आप देखिए कितना फर्क है। हमें हैमिल्टन से डाउनटाउन से कंपेयर नहीं करना चाहिए।
1: सबरवाल साहब अगर आप इजाजत दें, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, एक कॉल
2: करने पूरे तो ज्यादा अच्छा है। हैमिल्टन को अगर आप GTA से कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छा है। जी
1: श्योर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सबरवाल साहब, एक कॉलर हमारा थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। हेलो, रेडियो वॉइस पर आप लाइव है और पीके जी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
3: जी पीके सबरवाल साहब, आप, मैं असल में प्रोग्राम दबावर सुनता हूँ, सैयद मेरा नाम है, लेकिन मैं आपसे आज बिल्कुल, क्योंकि आज कोई कॉल नहीं थी, लिहाजा मैंने कहा आज कॉल करके चले आपसे एक मशवरा लूं।
2: जी हुक्म सर।
3: अच्छा देखें सवाल साहब, मैं पहले भी बात की थी मैंने, हमने घर लिया था 2024 अर्ली में फरवरी को, ठीक है, टाउन हाउस था। उस वक्त प्राइसेस भी काफ़ी हाई थी और हमें मजीद दे के पैसे लिए, लेकिन हमने ऑलमोस्ट 50% डाउन पेमेंट की थी टाउन हाउस में।
2: एक छोटी सी बात पूछूंगा बीच में, ये बिल्डर से लिया था रीसेल में लिया था?
3: रीसेल में।
2: जी जी जी, तो रीसेल में प्राइस इतने ज़्यादा हाई नहीं थे, तब तक प्राइस बहुत सारे नीचे आ चुके थे, हालांकि उसके बाद प्राइस अब और नीचे आ गए।
3: जी हाँ, अब प्रॉब्लम पता है कि अब आजकल जो हम देख रहे हैं अपने इलाके में या दूसरी जगहों पर भी, पूरे एजेक्स में लिया था हमने, तो हमें अंदाजा हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की, घर खरीद के हमें चाहिए था हम रेंट पे ही रहते रहते।
2: जी
3: उसकी वजह ये है कि ये घर का सिलसिला तो यूं नहीं मैं समझता सही है, जिनके पास पेमेंट है 50% डाउन पेमेंट का मतलब है हमने तकरीबन $500,000 हमने डिपॉजिट दिया था।
2: जी जी,
3: अगर
2: 5 लाख आपने 1 मिलियन का कर लिया था?
3: जी जी, 1 मिलियन का है, टाउन हाउस है और बड़ा टाउन हाउस है वो, 5 बेडरूम्स का, 5 वॉशरूम का।
2: जी जी
3: ना, सेपरेट एंट्रेंस का, उसमें जो है ना बेसमेंट भी है बना हुआ।
2: जी जी, फ्री होल्ड है इसका मतलब ये?
3: बिल्कुल, एक तरह से आप समझ लें फ्री होल्ड है और कॉर्नर है, एंड यूनिट है,
2: एंड यूजर है, बन गई आपकी। जी जी जी,
3: और वो जो है वो 5 पार्किंग वाला मतलब टाउन हाउस है।
2: जी जी जी,
3: ठीक है। अब हम अंदाजा ये होता है हमारी जरूरत के लिहाज से, अगर हम उसको फॉर एग्जांपल जो जितनी हमारे से बच्चे इस 2 साल में पढ़ के एक तो उसमें से चला गया किसी दूसरी शहर में यूनिवर्सिटी में।
2: जी
3: अब हम ये सोचते हैं कि हमें तो किराए पे रहना चाहिए था, उसकी वजह ये है कि अगर हम 5 लाख।
2: सही साहब, छोटी सी बात है, मेरे नाम को गूगल करिए, मेरे कुछ आर्टिकल आपको मिलेंगे जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपका प्लान 5 साल से ज्यादा का नहीं है तो आपको कभी भी घर नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बड़ा क्लियर लिखा हुआ मैंने इसके अंदर, होल्डिंग कैपेसिटी आपकी मिनिमम 5 ईयर की होनी चाहिए। 24 को तो अभी 2 साल ही, फरवरी 2 साल ही हुए हैं, अगर 2 साल में आप कह रहे हैं गलती करी तो ये गलती आपकी नोशनल है, टेम्परेरी है, क्योंकि 5 साल को वेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगी आपने गलती नहीं करी, अच्छा किया था। आपका प्राइस कब तब गिरता है जब आप इसको वाकई बेच के आपके हाथ में पैसे आते हैं, अभी तो कागजों में है ये सब कुछ, तो आप घबरा रहे हैं इस बात से, आपको इंटरेस्ट में फर्क नहीं पड़ा। प्राइस अगर वो $1 भी हो गया तो आपने कौन सा बेच दिया है, अपने को खुश रखिए, आपकी जान है तो जहान है, सोच सोच के भी ब्लड प्रेशर हाई करते रहोगे, दवाइयों को और पैसे लगते जाएंगे आपके।
3: यही हो रहा है सबवाल साहब, आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ ली, यही हो रहा है।
2: बता रहा हूँ आपको कि ये आपका ताजमहल है, इसको एंजॉय करिए। बात यह है कि ये तो सिर्फ कागजों में आप सोच सोच के घबरा रहे हैं, ना तो आपको इंटरेस्ट 24 के बाद इंटरेस्ट का फर्क नहीं पड़ा, नंबर एक। 24 के बाद आपने अगर बेचा नहीं तो प्राइस का फर्क नहीं पड़ा, अगर बेचा नहीं तो आपकी इंस्टॉलमेंट वही की वही है, सब कुछ वही का वही है, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हैं गिरी हुई है तो आपको ढलकना शुरू हो गया, और जब मार्केट बढ़ जाएगी तो मैं अमीर हो गया, और ना गरीब हुए ना अमीर हुए, कागज वही के वही पड़े हुए हैं। आप आराम से 2029 में मेरे से बात करिएगा और आप यही आगे कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छा किया था। ये आपकी बुढ़ापे की, जब आप बता रहे हैं बच्चे बाहर जा रहे हैं दूसरी सिटी में जा रहे हैं, यानी कि आपके बुढ़ापे की जायदाद है, बुढ़ापे की जायदाद है, इसको पूछिए, इसको पूजिए, इसको माथा लगाइए, ये आपका बुढ़ापा है, बुढ़ापे की सिक्योरिटी है, ये आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आएगा, इसके ऊपर नेगेटिविटी मत लाइए आप बिल्कुल भी।
3: ठीक, बहुत शुक्रिया सवाल साहब, बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू।
1: सैयद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। और जो हमारे लिसनर्स अभी भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो लाइंस थोड़ी देर के लिए खुली हैं, अभी सबरवाल साहब हमारे साथ हैं तो आप भी स्टूडियो फ़ोन कर सकते हैं ऑन 416-593-0055 और सबरवाल साहब से डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
2: मैं सही है आपको एक लाइन बोलना चाहता हूँ, वो मेरे को बड़ा दिल कर गया बोलने का, ये कहावत बहुत मशहूर है सैयद साहब, एवरीथिंग विल चेंज वन डे, सो एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। आप रियलिटी को मानिए और चलते रहिए, हर चीज जिंदगी में चेंज होगी, अच्छा वक्त भी बदल जाएगा, बुरा वक्त आएगा, बुरा वक्त भी बदल जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, लेकिन आपकी भावनाएं, आपका टारगेट वो बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए, जो चीज आपको आज बुरी लग रही है वही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको।
1: और थोड़ी पॉजिटिव थॉट्स, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखना भी काफी मददगार साबित होता है, मेरा ये मानना है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखो बातें तो बहुत है इनके ऊपर कहने को, तो बातें तो बहुत है, वैसे तो ये फेल है ही नहीं, ये बोल रहे हैं कि मैंने गलती कर दी, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ, ये भी कहावत बड़ी मशहूर है, आपने सुनी होगी, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, इफ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न, एंड इफ यू डोंट लर्न यू विल नेवर चेंज.
1: करेक्ट करेक्ट.
2: तो ये तो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मान के चलिए, तो सही हिसाब को तो अभी कुछ सोचना ही चाहिए मेरे हिसाब से.
1: मुझे लगता है आपसे बात करके उनके उनको थोड़ी राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि मुझे ही लग रहा था कि कितने परेशानी में है, जब आपने जिस तरह से बोला उनको तो मेरे को लगा नहीं नहीं ठीक है,
2: he'll be fine. ना, वो तो, सिर्फ मार्केट sure. को देख के परेशान है, उनके ऊपर तो इस पैसे का भी फर्क नहीं पड़ा ना.
1: राइट
2: या तो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ चुका होता, या वो उनको पैसे बेचने की जरूरत पड़ चुकी होती है, उनको पैसे की जरूरत है इस वक्त, तो मुझे पता है 1 मिलियन का घर 1 लाख कम हो गया मार्च के बाद 2024 के बाद, मुझे पता है, पर ना वो बेच रहे हैं, ना इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ना उनकी जॉब्स में कोई इफेक्ट हुआ, बेटा उनका क्योंकि बाहर चला गया तो उनको लग रहा है कि अब घर बड़ा है, तो बेटा बाहर चला गया तो ये भी इसको पॉजिटिव लेकर देखो, बेटा अपनी जिंदगी खुद बसाने चल पड़ा, कितनी खुशी की बात है, अपनी जिंदगी बेटा बच्चा बसाने के लिए चल पड़ा, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, कितनी खुशी की बात है ये.
1: बिल्कुल बिल्कुल. सबरवाल साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे चलते चलते जरूर पूछना चाहूंगा कि बहुत लोग बेसमेंट अपार्टमेंट या सेकेंडरी स्वीट बना रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, क्या ये फाइनेंशियली सेंसिबल स्टेप होगा 2026 के हिसाब से?
2: 100% अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है और बेसमेंट की अगर एक्स्ट्रा इनकम आती है तो क्यों नहीं. मैं छोटी सी बेसमेंट की बात करता हूँ, चलो छोड़ो, ज्यादा बड़ी बात ही नहीं करता. अगर आपकी बेसमेंट $1500 किराए पे भी चढ़ जाती है छोटी सी, और उसको बनाने का खर्चा $40,000 आ जाता है
1: जी,
2: तो भाई साहब $40,000 खर्च करके आपके घर की कीमत बढ़ गई, पहली बात, कल को जब आप बेचेंगे तो उसकी कीमत बढ़ गई. नंबर 2, $1500 की मंथली इनकम का मतलब क्या होता है, $3,00,000 की मॉर्गेज आपके टेनेंट ने अपने सिर पे ले ली, $3,00,000 पे, मजाक है क्या, $300,000 $1,00,000 मॉर्गेज के ऊपर 500 की किस्त आती है, 3 लाख के ऊपर 1500 हो गया, 3 लाख की मॉर्गेज आपके टेनेंट ने उठा ली, $40,000 आपने खर्च हुआ. लेकिन ध्यान रखिए कुछ सिटीज अब अलाउ नहीं कर रही, वहां पर RR वगैरह फॉर्म है कुछ, वो भरने पड़ते हैं, अप्लाई करना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है और लीगल बेसमेंट बनानी पड़ती है. ये भी एक अच्छी बात है कि वाली बात थी वो खत्म हो गई. ये भी इम्पोर्टेंट है कि लीगल तरीके से रहिए, लीगल तरीके से बनाइए और एक लीगल तरीके से पैसा कमाइए. बेसमेंट अपार्टमेंट बहुत अच्छा है, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम चल रही है तो जरूर बनाइए. और अगर मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो मुझे मेरे पास सिविल इंजीनियर है जो हमारे इन हाउस कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास, मैं आपको उसका कॉन्टैक्ट भेज दूंगा, वो आपको बगैर अप्रूव करवा के आपकी बेसमेंट बना के देंगे जी.
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. सबरवाल साहब, हमेशा की तरह वक्त थोड़ा सा खत्म हो रहा है हमारा, लेकिन आपके साथ चर्चा खत्म करने का हमारा मन अभी भी नहीं है, लेकिन वक्त की हमको सुननी पड़ती है, वक्त के आगे किसी की नहीं चलती. तो चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगा आज की कोई प्रो टिप हमारे लिसनर्स के लिए.
2: जी जी जी, एक मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, आस्क पीके, पीके से पूछिए, आस्क पीके, ये सेगमेंट स्टार्ट किया है. मेरे डिफरेंट जो आधार है मेरे सोशल मीडिया के, वहां पर मैं जवाब देता हूँ इस बात के. अगर आपको क्वेश्चन करने में टाइम निकल गया या हमारा टाइम रेडियो स्टेशन का खत्म हो गया और आपके अंदर क्वेश्चन है या आप शाही करते हैं क्वेश्चन पूछने में, तो मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के अपना क्वेश्चन करिए, उसका आंसर इस रेडियो में या तो दे दूंगा मैं, और प्लस अलग अलग सोशल मीडिया आधारों में मैं आपका आंसर, आपका पहले क्वेश्चन, अगर आप अपना नाम देना चाहते हैं तो आपका नाम, और उसके बाद उसका आंसर मैं बड़ी डिटेल में दूंगा. इसमें सब लोगों को बेनिफिट होगा. आस्क पीके, ये है मेरा नंबर.
1: अगर आप इजाजत दे तो एक कॉलर थोड़ा लेट है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप इजाजत दे के उनसे हम मुखातिब हो पाए.
2: जी जी जी जी.
1: हेलो, आप रेडियो वॉइस पर लाइव है और पीके सबरवाल जी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड.
2: हेलो जी, हेलो, मेरे को लगता है इनका म्यूट है शायद.
1: आई थिंक नहीं, अब डिस्कनेक्ट हो गए वो, कोई बात नहीं.
2: तो मेरे को आप ये आस पीके करके क्वेश्चन कर सकते हैं आप, और मेरा नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757. अपना नाम देंगे तो आपका नाम बता दिया जाएगा, अगर आप अपना नाम नहीं देंगे तो बिना नाम के हम आपका क्वेश्चन लेके उसका आंसर दे देंगे, और अलग अलग अदारों पे प्लस पी के सबरवाल ऑफिशियल, पी के सबरवाल ऑफिशियल ये इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करिए, वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमने आंसर देने शुरू कर दिए हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा वहां पर फॉलो करना और कई क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे, नॉट ओनली रियल स्टेट जिंदगी की सच्चाई भी वहां पर बात की जाती है, पी के सबरवाल ऑफिशियल, एंड फॉर एनी रियल स्टेट डील यू कैन कॉन्टेक्ट मी अगेन 6472994757। थैंक यू वेरी मच अपना अमिताभ जी।
1: Thank you, Sabarwal sahab, for your expert analysis and easy to understand explanations on the current market situation in the real estate sector. तो दोस्तों ये था आज का इंसाइटफुल सेशन पी के सबरवाल जी के साथ, रियल एस्टेट के हर सवाल का सीधा और बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब। सबरवाल जी की वेबसाइट है teamsabarwal.com, और इसके अलावा सबरवाल जी को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लोड्स ऑफ वेरी इंफॉर्मेटिव रियल एस्टेट वीडियोज। हिज इंस्टा हैंडल इज पी के सबरवाल ऑफिशियल, दैट्स पी के सबरवाल ऑफिशियल। सबरवाल जी और टीम सबरवाल का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते उनसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।

मीट अगेन ऑन द डे जहां ताजा खबर है कि कल के होने वाले गैस प्राइसेस पर अपनी कड़ी नजर है। इस थर्सडे को आपके वॉलेट को मिलने वाली है थोड़ी सी राहत। गैस प्राइसेस आर ड्रॉपिंग डाउन बाय 9 सेंट्स प्रति लीटर। जी हाँ, यही कहा जा रहा है। अब देखो ना, अच्छा सा समरी वेदर हो और लॉन्ग ड्राइव्स पर निकलने के प्लान्स हों, ऐसे में गैस प्राइसेस ज़्यादा हों तो खटाई में तो मामला पड़ सकता है ना। थोड़ा थोड़ा घर में किचकिच हो सकती है। घर वाले कहते हैं ले जाओ, और आप प्राइसेस देख के सोच रहे होते हैं कि अरे यार थोड़ी गाड़ी कम चलाओ, है ना। ऐसे में ये 9 सेंट्स का और गिर जाना, फर्दर सिंस लास्ट गिरावट, ब्रिंग्स डेफिनेटली सम स्माइल्स फेस पर भी और पर्स पर भी। सो ऑन दिस वेट टुडे एंड भरवा लो टंकी कल, दैट्स ऑन थर्सडे, इससे पहले प्राइसेस फिर बढ़ जाएं और भाग मिल का भाग फॉलो करने लग जाए वाली नोट। दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर सिंग। ऐसे गैस प्राइसेस तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं हमेशा से, पर घुमक्कड़ फ्रीक्स उनका ये प्लान कब बदलने देते हैं। वो तो अपना है प्लान पे डटे ही रहते हैं।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन्ड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
0: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्को के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
2: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूं संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्को। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 4168437600।
0: माय प्रॉपर्टी माय चॉइस, माय रियल्को द रियल एस्टेट कंपनी। और विजिट myrealco.com। नॉट इंटेंडेड टू सॉलिसिट बायर्स एंड सेलर्स, ऑलरेडी अंडर कॉन्ट्रैक्ट।
3: अनदर डॉन क्लीन विद द डॉन डक्स।
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
0: Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

0: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: Fresh Breeze New Release on CMR at 5 p.m. Alright, filmy nukar CMR 101.3 FM पर you are with Swati and Payaswini and it's time for a Fresh Breeze New Release. तो गाना जो मैंने चुना है, it's from the upcoming rom-com David Dhawan की सिग्नेचर फिल्म होने वाली है, ट्रेलर से मुझे यही लग रहा है। टाइटल है फिल्म का है जवानी तो इश्क होना है, साउंड्स मोर लाइक अ डिक्लेरेशन देन टाइटल ऑफ द फिल्म। मतलब कोई ने भी ये बताया ना कि इश्क होने का जवानी के होने ना होने से कोई लेना देना नहीं होता, बस है ना। वेल, ट्रेलर का रिव्यू जल्दी ही दूंगी, फिलहाल आई रियली वांट टू रिव्यू दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म जो रिक्रिएट किया गया है फ्रॉम सलमान एंड करिश्मा की 1999 की फिल्म बीवी नंबर 1। और इस गाने का टाइटल है चुनरी चुनरी 2.0, बस 2.0 ही है, बाकी तो वहीं से उठाया है। हाई एनर्जी वाला गाना है ये, ढोल बीट्स रिटेन करी है इन्होंने ओरिजिनल गाने की, हालांकि हैवीली कंप्रेस भी कर दिए हैं इनटू दैट ईडीएम स्ट्रक्चर, जैसे होता है ना मेटालिक हाई पिच पॉप एक्सेंट एंड ऑल। वोकल्स में अभिजीत और अनुराधा की आवाज़ थी, सिंगिंग स्टाइल था ओरिजिनल में। इसमें आईपी सिंह हैं, जोनीता हैं, असीस कौर हैं, सुधीर हैं, इन्होंने इसको काफ़ी डाइवर्ज कर दिया है। प्लेफुल नोट्स जो थी, जो एक रॉ अपील थी, उसको भी चेंज करके इट्स मोर ऑफ ए पार्टी फेस्टिव बैंगर नाउ, वही बनाने का ट्राई किया है। मॉडर्न क्लब प्लेलिस्ट में ये इसलिए आ भी सकता है। रही बात कंपोजिशन की, तो इसको रिकम्पोज किया है अक्षय एंड आईपी ने, विद तनिष्क ने भी कुछ एडिट्स करे हैं। अनु मलिक की ओरिजिनल कंपोजिशन थी विंटेज धन, उसमें हैवी इंस्ट्रूमेंटेशन और हुक्स के साथ इसे परोस दिया गया है। सोल तो फिर डेफिनेटली मिसिंग है, ऑटो ट्यून पर भी सवाल है, वो जो क्लासिक एक नॉस्टैल्जिया बिगाड़ देते हैं ना वो भी इल्ज़ाम है। कॉन्ट्रोवर्सी अलग, ओरिजिनल सिंगर जो है इसके अभिजीत भट्टाचार्य, उनका कहना है कि भाई मुझसे ना पूछा ना मुझे बताया। सेम कंप्लेंट है बीवी नंबर 1 के जो प्रोड्यूसर थे कि भाई राइट्स कहाँ से कैसे ले लिए बिना पूछे। बाकी अच्छा क्या है इसमें, तो वेल हाई एनर्जी वाला गाना है, देखने में अच्छा है, मॉडर्न अपील है और डेविड धवन का सिग्नेचर वाइब भी है। ओवरऑल मुझे लगता है अगर आप ओरिजिनल से कंपेयर ना करें तो इट हैज़ दैट पोटेंशियल ऑफ हैविंग अ प्लेस इन योर डांस वाली प्ले लिस्ट। वो कहते हैं ना कुछ धुनें होती ही ऐसी हैं।

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353.
6: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
2: Don Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की ultimate saving sale on May 24th. Inventory पर huge bonus offers. Deals इतनी जबरदस्त की miss नहीं कर सकते. Sunday, May 24th को अपने calendar में mark कर लो. Don Valley North Hyundai पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर.
7: Doing business your way.
2: Member of Wayne's Auto Group.
0: Follow us on Instagram. It's RJ Swati _Toronto.

0: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स टीआरटी ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca or योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
1: बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट अ डिजायर्ड प्राइस, तो माय रियलको के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोजा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत। बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यूं भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा। विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%, उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें। घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ इस कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू thousands of dollars. Free consultation hai. Call kare 416-843-7600. Sanjeev Manocha from My Real Co. 416-843-7600 or visit myrealco.com.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit markville.com ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: Find out Thai Spring Special Mortgage Rates and Extra Promotion Ka with Amit Khurana. 5 years fixed 4.14%, 3 years fixed 4.19%, 5 years variable 3.55%, plus cashback from bank and special gift from Amit Khurana up to $1,500. Terms and conditions apply. Call Amit 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkhurana.com.
6: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16 तक. लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स. सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड. बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें. जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th. विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे. अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप.
7: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती.
8: मगर क्यों, पिताजी नहीं माने क्या?
7: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो. ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो.
8: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
9: सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा. रेडियो CMR at 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव.

Well, that was Arijit Singh ki awaaz, jisne history banai hai global streaming mein. जब वो स्पॉटिफाई पर मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट बने इंटरनेशनल आर्टिस्ट को पीछे छोड़ते हुए एंड दैट इंक्लूड्स टेलर स्विफ्ट एज वेल. पर आजकल तो जो चर्चा में है भाई वो है अपने कैनेडियन ड्रेक. पूछो क्यों, हिस्टोरिक हैट्रिक बनाई है उन्होंने. पिछले 70 सालों में बिलबोर्ड के इतिहास में कोई भी एक आर्टिस्ट नंबर 1, 2 और 3 तीनों पोजिशंस पे एक साथ रहा है तो वो है अब ड्रेक. आप कह सकते हैं कि सिक्सेस गॉड ऑफ म्यूजिक उन्हें यूं ही नहीं कहा जा रहा. अगर कहा जा रहा है तो क्या ही गलत है भाई. हाँ बोलो तो. ही इज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू डेब्यू इन ऑल टॉप 3 स्पॉट्स एक साथ. हालांकि माइकल जैक्सन के बारे में कहते हैं कि जब उनके 3 एल्बम्स एक साथ रिलीज हुए थे वो टॉप 3 पोजिशंस होल्ड कर पाए थे, इतना बिके थे इन जस्ट अ वीक राइट आफ्टर हिज पासिंग इन जून 2009. पर बिलबोर्ड के स्ट्रिक्ट कैटलॉग रूल्स हुआ करते थे तब, तो मेन 200 chart maybe MJ was not there. So now legally Drake is the first one to conquer this podium. Yun hi thodi apna CNTR IC blue chamka tha to launch his trilogy with that perfect touch.

0: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 Cottrell Boulevard, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
1: ऑलराइट, मीता जी से आपकी बात कराने का आ गया है वक्त। हर बुधवार को होती है उनसे एक मुलाकात, आप वैसे उनके क्लिनिक तक जा सकते हैं। नंबर रहता है अपॉइंटमेंट के लिए 647-760-2779, दैट्स द नंबर। और क्लिनिक है इनका ब्रैम्पटन में, 10 Cottrell Boulevard, यूनिट नंबर 10 Cottrell Boulevard, ब्रैम्पटन। आप क्लिनिक तक नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो एक बार कॉल जरूर करिएगा। आपकी मदद फोन पे भी की जा सकती है। व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ कंडीशन, उसको ताक पे मत रखिए, फोन उठाइए, कॉल करिए, या तो मिलने जाइए या फोन पे भी बात कर सकते हैं। एंड जैसे कि मीता जी बताती है, अब तो क्लिनिक जाने की एक और वजह है, वहाँ पे मसाज वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। आप एक बार मिले, बात करें, समझिए वहाँ क्या क्या है। एंड एज आई ऑलवेज टेल यू कि यहाँ पर जब आप मिलते हैं काव्या होम्योकेयर पे मीता जी से, तो छोटी बड़ी किसी भी तरह की बीमारी का जड़ से, बोले तो रूट कॉज से इलाज होता है। ऐसा नहीं होता कि अभी एक अभी गोलियां खाओ और काम हो गया और फिर दोबारा वो चीज़ वापस आ गई। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए कहते हैं कि जड़ से बीमारी को ख़त्म करता है, साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बहुत सेफ होता है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खासकर प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। तो अगर आप भी सोचते हैं कि सेफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो व्हाट बेटर नेम देन मीता जी, क्योंकि काव्या होम्योकेयर पे उनका अनुभव बहुत बहुत बहुत लंबा है, जितना हमें दिखता है उससे कहीं लंबा है। तो एक बार आप जाएं, मिले, बात करें, फिर देखिएगा आपके ट्रीटमेंट एकदम बढ़िया जड़ से होगा। वेल, टिल यू कॉल, एक क्विक सी मुलाकात में करा देती हूँ यहीं पर ऑन फिल्मी नुक्कड़। मीता जी वेलकम।
2: थैंक यू सो मच स्वाति जी, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैम छो?
1: बढ़िया। अब मीता जी, हम कई बार बात करते हैं डिफरेंट बीमारियों की, मैं देख रही थी कई बार वेदर की वजह से भी, कई बार इन्फेक्शंस की वजह से भी, और कई बार वजह तो बहुत सारी हो सकती है, वो आप रोशनी डालेंगी। एक होती है स्किन की प्रॉब्लम, अब वो कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कई बार कि इचिंग पेनफुल होने लगती है, वरना कई बार होता है कि सिर्फ दिखता है, कई बार वो पेनफुल होने लगती है, फैलने लगती है। तो उसमें आप मुझे बताएंगे किस किस तरह की मेजर कंडीशंस आप देखती हैं, और डर्मेटाइटिस में क्या क्या आता है, एक्जिमा क्या उसी का हिस्सा है या दोनों एक ही चीजें हैं, एंड इज द ट्रीटमेंट अवेलेबल इन होम्योपैथी?
2: जी स्वाति जी, सो एटोपिक डर्मेटाइटिस इसको कहा जाता है, और इसी का नाम कह लें आपके एक्जिमा है। अब स्किन में ईची होना, खाज होना, रैश निकल आना, तो ये एटोपिक डर्मेटाइटिस से लेके आपकी ड्राई स्किन हो सकती है, उस करके भी ये कंडीशन हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन करके। सो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, लेकिन स्पेशली जो एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा है ना, वेदर चेंज के साथ जो बीमारियाँ बढ़ती हैं, तो कुछ बच्चों को, बड़ों को ये वेदर में जाके वो ट्रिगर हो जाता है कि जैसे ही थोड़ी हीट स्टार्ट हुई तो उसके साथ ही स्किन पे रैशेस निकल आए। सो डर्मेटाइटिस क्या होता है, मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, और एटोपिक डर्मेटाइटिस उसमें आपकी स्किन पे आप देखोगे कि रेड रैशेस हो जाएंगे, ईची होती है वहां पे, और छोटे बच्चों में जो एक्जिमा होता है ना बर्थ के बाद स्टार्ट हो जाना, तो ये जो है वो एटोपिक डर्मेटाइटिस है, और यूजुअली उसकी आप कह लो कि शुरुआत 5 ईयर्स की एज के पहले पहले ही हो जाती है। एंड काफ़ी बार आपको बताया भी जाता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो रिकवर करता जाएगा, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि एडल्टहुड तक ये कंडीशन चलती रहती है। सो ये एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस कई बार ये लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन बन जाती है, और फिर ऐसे होता है कि कुछ एक मंथ सही जाते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर में घरों में हीटिंग चलती है, तो समर मंथ्स में जैसे ही टेम्परेचर 20+ जाना स्टार्ट हुआ, तो उसके साथ ये एक्जिमा उभर आता है, बाहर निकल आता है। और ऐसे में स्किन आपकी और छोटे बच्चों की, आप देखोगे जब भी ये स्टार्ट होगा ना, फेस पे रैशेस आएंगे या जॉइंट के फोल्ड में आ जाते हैं, एल्बो के अंदर की और बैक ऑफ नी में ये हो गया, डायपर एरियाज में ये हो गया, और फिर वहाँ की स्किन जो है वो ड्राई हो जाना, रेडनेस है, ईचिंग है एंड कई बार तो सीवियर ईचिंग. और उसका एक सिम्टम ये भी होता है कि नाइट टाइम पे जब भी सोने का टाइम हुआ और बच्चों में इतनी खारिश स्टार्ट हो गई कि बच्चे भी रोएंगे और पेरेंट्स भी चैन से सो नहीं पाएंगे. तो ये एक टिपिकल सिम्टम है. कपड़े चेंज करते वक्त वो ईची करता रहता है और कई बार स्किन पे स्क्रैच कर करके डार्क पैचेस भी बना लेते हैं. जहाँ पे एक्जिमा है वहाँ पे भी रेड, ब्राउन, पर्पल या ब्लैकिश ग्रे कलर के पैचेस बनेंगे और फिर ये पूरी बॉडी में फैलता जाता है. ज़्यादातर टाइम ये ड्राई एक्जिमा होता है तो समटाइम्स इसमें से फ्लूइड भी निकलता है, वेट एक्जिमा. और स्पेशली कानों के पीछे का, कानों के आसपास का एरिया है आपके स्कॉल्प पे ये हो रहा है, सिर पे या हाथों में है, तो ऐसे में वहाँ से फ्लूइड भी निकल आता है, कट्स आ जाते हैं. अफेक्टेड एरिया की स्किन भी थिक हो जाती है, स्केलिंग होती रहती है और स्क्रैच करने से फिर वो एरिया पूरा रेड स्वॉलन भी बन जाता है. अब ऐसे में क्या होगा कि पेरेंट्स सबसे पहले ऑइंटमेंट्स या ओवर द काउंटर चीज़ें ट्राई करते हैं तो इससे क्या होगा कि एक बार तो वो दब जाएगा लेकिन अगर अंदर से सही नहीं हुआ फिर उसने निकलना है, थोड़ा थोड़ा करके वो निकलता रहेगा या पूरी बॉडी में फैलता जाएगा. तो यहाँ पे ये जो ट्रीटमेंट है वो कुछ एक मंथ का ट्रीटमेंट होता है. न्यूबॉर्न बेबीज भी ये ले सकते हैं और जैसे ही आपको पता चलता है, आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, जल्द से जल्द उनके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा. एंड जितना जल्दी इसकी बिगिनिंग है और आप ये स्टार्ट कर देते हो तो उतना जल्दी उसको फ़ायदा मिलेगा और वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा कपल ऑफ मंथ्स में. तो जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम साल से, पाँच साल से चल रही है तो उनको भी ये ट्रीटमेंट मैं हाईली रेकमेंड करूँगी. सो ये उसकी जड़ तक जाके उसको सही करेगा, फिर बच्चों को आपको लॉन्ग रिलीफ मिलेगी जिनको एक्जिमा की प्रॉब्लम है. सो एक्जिमा से सफ़र कर रहे हैं या फिर आपको स्किन की एलर्जीज हो रही हैं, हीट के साथ रैशेस होना, हाइव्स होना जिसको अर्टिकेरिया या चपाकी तप्पड़ के नाम से जानते हैं, लाइकन प्लेनस है या सोरायसिस, सो कोई भी नवी पुरानी बीमारी के लिए काव्या होम्यो केयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट ज़रूर कर सकते हैं.
1: इंटरेस्टिंग. देखिए मेरे को तो ये समझ में आता है कि होम्योपैथी पे अगर आप मीता जी के पास जाते हैं तो हर बीमारी का छोटी बड़ी आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा एंड इंटरेस्टिंगली कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है. बस आपको एक बार जाना है, फ़ोन उठाना है, अपॉइंटमेंट लेना है, फ़ोन पे भी बात हो सकती है, तो देर इज़ नो बहाना, आप उसे टाले मत. और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी एज मीता जी सजेस्ट के कवर करती हैं, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पता करें इफ़ दे कवर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एज वेल या नहीं, और दवाइयाँ वेल वो भी आपके घर के दरवाजे तक पहुँच सकती हैं. तो इतना सारी जो फैसिलिटी आपको मिलती है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और एक बार कॉल ज़रूर करें 6477602779. थैंक यू मीता जी.
2: थैंक यू.
3: अरे थारी किस्मत में गुलाम लिखेड़ो है. रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे.

0: ओ माजे किंग
1: टू एडवर्टाइज विद फिल्मी नुक्कड़ ऑन CMR एट 5 PM योर प्राइम ड्राइव टाइम शो कॉल स्वाति एट 647-830-5042 दैट्स 647-830-5042 इट्स द फ्री टाइम
2: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त था पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर सुकून के और पास टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे
3: अच्छा ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस है ना अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 to $500 की बचत हो जाती है या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029 तो कितना अच्छा हो है ना यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स तो भाई ये पॉसिबल है कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 647-453-5353 उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं 647-453-5353
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना साथ देने आएंगे स्नैक्स चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर
7: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर
2: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी
1: Retro in Metro. Nukkad Classics.

ठगले. वेल दैट वाज फ्रॉम लेडीज वर्सेस रिकी बेल. रणवीर सिंह की वो कौन आर्टिस्ट वाली फिल्म. और जब भी मैं कोई भी कौन आर्टिस्ट वाली फिल्म की बात करती हूँ या देखती हूँ, मुझे हमेशा एक फिल्म याद आती है, एंड दैट इज बंटी एंड बबली. मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से है वो. मुझे लगता है इस फिल्म की जो रिपीट वैल्यू है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है. जब भी आप देखते हो, एक अच्छी सी फीलिंग के साथ, मजे के साथ उठते हो आप इस फिल्म में. अच्छा, अगर आपने नोट किया हो ना, तो इट लुक्स लाइक कि ये फिल्म जो है ना, ये बिग बी को होमेज है. क्योंकि देखो ना, पूरी फिल्म के बैकग्राउंड में उन्हीं की फिल्मों के गाने चलते हैं. इवन अभिषेक बच्चन का गेटअप एक सीन में अग्निपथ के अमिताभ बच्चन वाला है, जहां पे वो कौन आर्टिस्ट हैं अगेन. और एक सीन में अमर अकबर एंथनी के ऋषि कपूर वाला है. और बिग बी तो खुद फिल्म का हिस्सा थे ही, वो बात अलग है, मेजर हिस्सा. फिल्म वॉज रिलीज आज ही के दिन, और इनके गाने जो थे पहले वाले में, वो सारे हिट हुए थे. पर एक गाना जो बना तो था फिल्म के लिए, पर इस फिल्म में वो नहीं इंट्रोड्यूस कर पाए थे. वो बाद में नील एंड निक्की आई थी यशराज बैनर्स की, उसमें वो गाना डाला गया था. अब पूछे तो कौन सा? ये वाला.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit markville.com ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Find out Thai Spring Special Mortgage Rates and Extra Promotion Ka with Amit Khurana. 5 years fixed 4.14%, 3 years fixed 4.19%, 5 years variable 3.55%, plus cashback from bank and special gift from Amit Khurana up to $1,500. Terms and conditions apply. Call Amit 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkhurana.com.
4: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
5: Exclusively picked. Look.

तरकीबें तो निकाल रहे हैं रणबीर डॉन्ट्री ना करने के फरहान कि लास्ट मोमेंट पे एग्जिट किया है तुमने फिल्म से तो उस कैंसिलेशन के कॉम्पनसेशन के इस वक्त ना सच में वो डायलॉग सूट कर रहा है सिचुएशन पे कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं क्या नामुमकिन है पूछे क्यों क्योंकि अब वो डॉन धुरंधर हो गया है रे फॉर दोज हु डोंट नो कि मामला है क्या शॉर्ट में क्विकली बता देती हूँ एज पर फरहान अख्तर की जो प्रोडक्शन कंपनी है रणवीर सिंह ने डॉन 3 की शूटिंग शुरू होने के सिर्फ 3 हफ्ते पहले फिल्म से एग्जिट मार लिया जिससे उन्हें बोले तो फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी को 45 करोड़ रुपीज का प्री प्रोडक्शन लॉस भी हो गया वजह क्रिएटिव डिफरेंस बताई जाती है तो कोई धुरंधर की सक्सेस के सर भी ठिकरा फोड़ रहा है इस बात का कहता ना वो बदल गया कुछ कुछ वैसा एनीवे फॉइस में फरहान की प्रोडक्शन कंपनी गई वहाँ दरवाज़ा खटखटाया उनका कि भाई कुछ करो शिकायत करी फॉइस ने कहा कि चलो करते हैं 3 नोटिस भेजे रणवीर को जिस पर फाइनली ही रिस्पॉन्डेड बाई सेइंग समथिंग ऐसा कि यू नो भाई तुम कौन मैं खामा का तुम क्यों पढ़े जिस पर फॉइस भी अब बितक गया है इज्जत की बात आ जाती है भाई तो उन्होंने भी एक फरमान जारी कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अपील कि धुरंधर स्टार होगा अपने घर का रूल्स आर रूल्स और अपील ये करिए फिल्म इंडस्ट्री से कि भाई कोई इन्हें अब साइन ना करे बिल्कुल यू नो बॉयकॉट टाइप अपील अब कोई मानेगा इस अपील को या नहीं वो तो देखना है पर फिलहाल गली बॉय इज बॉयकॉट की गली से कैसे निकलते हैं ये भी देखना है जनता ऑन दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑन सोशल मीडिया कोई कह रहा है कि डॉन 3 वाज नेवर फॉर यू भाई ये तो सिर्फ शाहरुख की बात है मतलब शाहरुख के फैंस ऐसा कह रहे होंगे कोई कह रहा है कि इट्स ऑल अबाउट डिग्निटी पुष्पा के अलावा और भी कोई है जो छुकेगा नहीं आपका क्या कहना है टेलो स्टूडियो का नंबर 416-593-0055

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: लॉन्ग वीकेंड कैंपिंग प्लान तो मस्त है, पर टोयोटा टकोमा के बिना जहां पहुंचे सभी वहीं पहुंचे आप भी। अगर रेड टैग डेज में आप टकोमा ले आए तो उसकी रगेड कैपेबिलिटी और पावरफुल आईफोर्स इंजन आपको ले जाए थोड़ा और दूर, सुकून के और पास। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टकोमा 4x4 डबल कैब SR5 फॉर $114 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.69% विद $4,900 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
2: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888। दैट्स 9054608888।
2: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353, 647-453-5353।
5: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
6: Another Don clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
1: लेक डे का प्लान था और टोयोटा टंड्रा के बिना सुकून नहीं, शोर मिला। बट व्हेन यू गेट अ टंड्रा एट योर लोकल टोयोटा डीलर, तो इसकी अप टू 11,000 पाउंड्स की टोइंग कैपेसिटी से आप डिसाइड करेंगे कि रुकना कहाँ है। टेक एडवांटेज ऑफ रेड टैग डेज ऑन नाउ। लीज अ 2026 टंड्रा 4x4 क्रू मैक्स TRD ऑफ रोड फ्रॉम $172 वीकली फॉर 36 मंथ्स एट 4.29% APR विद $5,800 डाउन। विजिट shoptoyota.ca और योर लोकल टोयोटा डीलर टुडे।
0: Follow us on Facebook, Filmi Nukkad, it's the free time.

आने जाने के लिए ना दिल में उमंग और इच्छा होने के अलावा एक चीज और जरूरी है। पूछो क्या? पैरों में चप्पल, ये भी तो चाहिए है ना। अब ये ना कहना कि पहाड़ों के लिए तो भाई हमें जूते चाहिए, क्योंकि चप्पल की महिमा जूतों की महिमा से अलग होती है। क्योंकि जो काम चप्पल कर पाती है वो जूते कहाँ कर पाते हैं, है ना। जैसे कि मम्मी की चप्पल एक से एक बिगड़े बच्चों को सुधार चुकी है। अब ये ना कहना हम तो भाई नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरे हैं, क्योंकि मुझे पता है वो पढ़ने से बहुत सारे लोग सुधरे हैं। अब बीच पे जाना हो तो चप्पल ही तो काम आती है, निफ्राम सा घूमना हो तो भी, है ना। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दोज सिंपल सी फ्लिप फ्लॉप्स। बस यही कहता है आज का इंटरनेशनल फ्लिप फ्लॉप डे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है लोगों ने ना इसको ड्रेस के साथ पेयर अप नहीं किया फॉर्मली इन फैशन, कर सकते थे। क्योंकि आई ऑलवेज फील जो कंफर्ट इसके कैजुअल होने में होता है ना, फैशन और नो फैशन, वो किसी हाई हील या महंगे महंगे जूतों में कहाँ। हाँ, यूं भी लाइफ में ना भागने से ज्यादा मजा इठलाते आराम से चलने में होता है। बोले तो पैरों को भी तो आजादी चाहिए ही होती है ना, क्या कहते हैं।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ठाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
4: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
5: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markkuppam,
6: doing business your way.
5: Member of Wayne's Auto Group.
7: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmy Nukkad. It's the free time.

0: trending today is Pamar Akbar Anthony, a full-on commercial mass cinema, जिसमें ना कोई भी motion को छोड़ा नहीं गया था, सारे डाले गए थे और सारे भुना भी डाले गए थे. Film was a super hit, super success, and as per Big B's tweet, it is estimated to have made 7.25 crores in those days. Inflation adjusted, it crosses the collections of Bahubali 2. Well, no wonder. अकेले मुंबई के 25 थिएटर में, क्योंकि 25 हफ्ते ये फिल्म लगी रही थी और कई जगह तो उससे भी ज्यादा लगी रही थी, तब ये फिल्म हिट हुई थी विद मेनी मेनी नोटिसेबल गूफ अप्स. लोगों ने नोटिस करे, वो हंसे, पर फिर भी उनको वो हजम हुए और वो फिल्म देखने गए, बार बार गए. ये वो फिल्म थी जिससे एंग्री यंग मैन की इमेज से अलग बिग बी वॉज सीन एज अ वन मैन एंटरटेनर, जो कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, गाने, डांस, ड्रामा सब कुछ खुद ही कर लेते हैं. वो बात और है कि फिल्म में और भी कैरेक्टर्स होते थे, बट यस, गाना जो मैं फिल्म से सुनाने वाली हूँ वो है जिससे बिग बी ही सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे एज एंथनी इन द फिल्म, बट इट इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू कंपोजर प्यारेलाल शर्माज म्यूजिक टीचर एंथनी गोंसाल्विस.
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।
3: Breaking through the midfield.
4: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। विजिट donvalleynorthhyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
5: फीफा के टिकट चाहिए घर तो जाए डॉन वैली नॉर्थ हंडई पर। अब पूछो वहाँ क्यों? उन्होंने खूब समझाया हम सबका मन। अब देखो ना, फीफा के टिकट्स लेना कोई छोटी बात थोड़ी है। मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना। ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग फॉर साधारण इंसान है ना। पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान। अब पूछो कैसे। एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन। और फिर ड्रॉ होगा जून में। जिनके नाम निकल आए उनको मिल जाएंगे टिकट्स फीफा के। अगर आप मुझसे कोई भी हंडई कार लेते हैं ना, तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में। अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे। या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे। देखिए ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको फीफा टिकट्स मिल पाते हैं? और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए। अब आपको करने अपने प्रयास। जल्दी जाएं एट डॉन वैली नॉर्थ हंडई वुडबाइन एवेन्यू मार्कम। फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम।

0: do advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक. लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स. सेलेक्ट डेमो व्हीकल्स पर सेविंग्स अप टू $4,989 इंक्लूडेड. बेस्ट सिलेक्शन के लिए डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस जल्दी विजिट करें. जल्दी करें, ऑफर एंड्स मई 16th. विजिट donvalleynorthlexus.com टुडे. अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप.
0: मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया.
2: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का. मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माय रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी. पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है. अब बारी आपकी. कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600.
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट myrealco.com.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर। सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज। मिशलिन टायर्स के ऑथराइज्ड डीलर हैं ये। एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं। इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं। विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर। For details, visit mymechanicauto.ca.
6: For a musical treat, join Filmy Nukkar, it's the free time at 5 p.m.
7: Mogembo! Khush hua!

0: चल गब्बर सिंह तो कह के जरूर गया कि जो डर गया वो मर गया, पर साथ में ये भी तो कहते हैं ना कि डर के आगे ही जीत होती है ना। तो डर लगे भी अगर कभी तो रिमेंबर कि भाई जीत भी अब दूर नहीं, ओनली एंड ओनली इफ यू फेस इट। 1941 में जो US प्रेसिडेंट थे ना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक्चुअली आज ही के दिन ऑन May 27th, तो मैं एक फैक्ट ऑफ द डे भी बताने वाली हूँ आपको, ये कहा था कि द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। और ये उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कहा था व्हेन ही अनाउंस्ड नेशनल इमरजेंसी इन रिस्पॉन्स टू नेजी जर्मनी थ्रेट। और तब से आज का दिन ना एक्सक्लूसिव रिमाइंडर की तरह ऑब्जर्व किया जाता है एज नथिंग टू फियर डे। बाकी एक बात तो है कि जो ये डर होते हैं ना, ये हर लाइफ की पड़ाव पर अलग अलग होते हैं। बचपन में अंधेरे से होता था, धीरे धीरे फेलियर से होने लगा या पनिशमेंट्स एंड ऑल से, और फिर जब हम बड़े हुए तो लोग क्या कहेंगे वो अपने आप में एक डर बन गया, और फिर धीरे धीरे वो अपनों को खोते जाने का डर एक उम्र के बाद, है ना। और आजकल तो खैर ये भी एक डर है कि फोन का पासवर्ड किसी के हाथ ना लग जाए। सो ऑन दिस लाइफ का हो कोई भी फेज, हो कोई भी उम्र, कोई ना कोई लगा ही रहता है डर वाली नोट। दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, लीविंग यू विद द थॉट कि लाइफ की नौका पार लगानी है अगर तो लहरों से बनना होगा निडर। हम मिलते हैं जल्दी ही, तब तक लव एंड स्माइल्स फ्रॉम मी टू यू।
1: हारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान।

0: FM.
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861.
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें. आज कनाडा और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना के इजलास में बात करते हुए कहा है कि आबनाए हुरमुस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा. ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी पर बात ही नहीं हो रही. उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात से अभी मुतमईन नहीं हैं, लेकिन हो जाएंगे. उनका कहना था कि मुज़ाकरात में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं और ईरान के साथ बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं. ईरानी मीडिया ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त का मुसव्वदा हासिल करने का दावा किया है, जबकि वाइट हाउस ने इसकी तरदीद की है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पेज़िशकियान के साथ टेलीफोन पर बात की है, जिसमें शहबाज शरीफ का कहना था कि उम्मीद है कि अमन मुआहदा जल्द तय पा जाएगा. जापान में ईरानी सिफारतखाने ने अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रहम पर तनकीद करते हुए कहा है कि इसराइली हुकूमत का तर्जुमान मुसलसल एक ऐसे सालिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है जिसने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम और काबिल कदर किरदार अदा किया. उधर अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जानिब से तनाज़े कश्मीर और सिंध तास माहदे के जिक्र के बाद भारतीय मंदूब ने पाकिस्तान को इल्ज़ामात का निशाना बनाया. वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं. उनका कहना था कि इस मामले में न किसी सूबे या शहर की बातें सामने आई हैं और ना ही सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा है. और आज रात से गैस की कीमत में 9 सेंट फी लीटर कमी हो जाने का इम्कान. इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे.
3: खास खास खबरें जबरदीन साहब के लिए पेश किया करते हैं. स्टूडियोज में रबे के नंबर 416-593-0003. गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 200 रुपये. डेबिट और ईमेल ट्रांसफ़र के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं. वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं. घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए. gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए. आज का रेट है 200 रुपये. कॉल कर लीजिए 905-306-0000. वेंसडे राजीव तलवार साहब मॉर्गेज की मालूमात आप तक पहुँचाते हैं. डेथ कंसलेशन के वाले से आयशा मनोवर साहब हमारे साथ हुआ करते हैं. इंश्योरेंस की मालूमात विशाल त्रिवेदी साहब अब तक पहुंचाएंगे. कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे. तफसीली खबरें 8 बजे. लाइव कॉल्स आप ही लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब. और भी कुछ मौजूद हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सब को सुनने के लिए हमारे साथ रहना है. अब से 9 बजे तक मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ. मेरे छह प्यारे सामेन, आज ईद उल अज़हा है, मुसलमानों का एक अजीम मजहबी त्यौहार. ये दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी और अल्लाह ताला के हुक्म की मुकम्मल

नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अपने घरों में खुशी और मसरत का माहौल कायम करते हैं। हमें चाहिए कि इस मुबारक दिन पर गरीबों और मोहताजों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और अपने माशरे में इत्तेहाद और हमदर्दी को फ़रोग दें। ईद उल अज़हा दरअसल कुर्बानी के जज्बे, सब्र और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का पैगाम है। मेरे तमाम अच्छे प्यारे सामईन को, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की पूरी टीम और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक।

ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है, उसके कर्म से ही बात बनती है और उसका कर्म ही मांगते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बे करीम सब की बात बनाए रखे इंशाल्लाह। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, उसे भी लाइक कीजिए। ट्यून इन भी हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है। फ़ोन के जरिए सुनना चाहें 647-506-0003 पर कॉल करके हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 TV, तमाम IPTV बॉक्सेस, जादू बोल जोन बस के साथ साथ एप्पल TV, अमेजन फायर TV, रोकू TV के साथ साथ ऊबर ऐप के थ्रू रॉजर्स पर भी हमारे निशात देख सकते हैं। हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप से बजाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 TV। एंड्रॉइड आईफोन दोनों

0: लिए हमारे पास फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंस्टेमेंट आप देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन इशाद भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं। आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए। और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की निशान अब आप हमारे टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी पे भी लाइव देख सकते हैं। जैसे 7 से 9 बजे हमारा प्रोग्राम CMR पे नशर होता है ऑन अ रेडियो, सेम टाइम टेलीविजन पे भी आप इसको देख सकते हैं, हमारे IPTV बॉक्सेस पे, हमारी ऐप के थ्रू और हमारी वेबसाइट के थ्रू toronto360.tv। रियल सेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तलाब भट्टी 6472957861। आपको घर खरीदना है, बेचना है, लीज़ करना है, असाइन करना है, नए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना हो, कॉल कर लीजिए। अपना ईमेल एड्रेस भी टेस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे, जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी। डायरेक्ट कॉल कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस टेस्ट कर दीजिए, तलाब भट्टी 6472957861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ।
1: मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद
2: मुबारक। घर खरीदने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 6472957861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 6472957861।
3: इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल, यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली। कॉल मोहम्मद आलम, बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर एट आलम लॉ ऑफिस। नो फी अनलेस ही विंस योर केस। फॉर फ्री एडवाइस कॉल 416-625-2636। दैट्स 416-625-2636।
2: बटकड़ाही की पिकरिंग लोकेशन में आपके लिए 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता, ऐसा जायका जो आपने पहले कभी चखा ही ना हो। इसके अलावा बटकड़ाही की रिवायती कड़ाही, गोट पाए, निहारी, खोए वाले चने, स्मोकी कीमा, बटर और सेसमी नान, लस्सी और बेशुमार आइटम्स। केटरिंग के लिए स्मॉल और लार्ज ट्रेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पसंद की बेशुमार डिशेस। रेस्टोरेंट के साथ 150 लोगों तक की पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल, जिसमें मेहंदी, बर्थडे, वेडिंग, फैमिली या कॉर्पोरेट इवेंट्स अरेंज किए जा सकते हैं। बुकिंग के लिए अभी कॉल कर लें बटकड़ाही 820 किंगस्टन रोड पिकरिंग 9058390002। बटकड़ाही, जहां 6 जून से हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता।
4: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहां से लेने हैं?
5: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहां स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
4: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
5: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
4: दैट्स वंडरफुल।
5: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
4: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
5: ऑन बवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट brampton appliances.ca।
2: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपके पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, इट्स 9058280009। योर लॉगिन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden और Shepherd का intersection, 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401। तमाम major repair work करते हैं, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service, 24/7 towing service भी available है। SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary और Munir Hussain, 6473217444, it's 6473217444।
6: अपने प्यार

कभी चेहरे कभी आंखों से बयां होता है, इश्क को लाख छुपाओ ये आया होता है। याद जब उसकी मेरे दिल में कभी आती है, दर्द होता है मगर दर्द कहाँ होता है। वो जो करता है बहुत अपनी अना के दावे, उसके माथे पे भी सजदों का नशा होता है। मैं रजी उससे अकेले में बहुत लड़ता हूँ, हिजर में भी तो रफाकत का गुमा होता है। कभी चेहरे कभी आंखों से बयां होता है, इश्क को लाख छुपाओ ये आया होता है।

0: यूनिट पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में आप टेक नंबर 416-593-0003। मेरे तमाम अच्छे प्यारे सुनने वालों की ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ए वक्त हो चला आपके लिए चलने का कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ, जो आपके लिए पेश करती हैं वानी।
1: न्यूज के लिए मदामतिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861।
2: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is me, Ivani, with local updates. The Toronto Police Marine Unit is searching the waters of Cherry Beach after a small inflatable boat capsized in the area on Wednesday afternoon. One person has been rescued and one missing after boat capsized. West End shed fire caused by lithium-ion batteries in the e-bikes. TTC says they are advancing safety initiatives as AI and barrier pilot project launch. The OPP say bus driver charged with stunt driving after speeding with kids on board. Ontario Solicitor General to review policing laws after Toronto cops charged in Spain. The TTC will install metal barriers at one station this year as a pilot project. Toronto can afford the barrier, but floor-to-ceiling doors would require money from other level of governments. Former Justin Trudeau Environment Minister Stephen Gilbilt announces he will resign from the parliament, but Conservative leader Pierre Poilievre says Gilbilt should cheer up as his policies are still implemented. Peel Regional Police says two people were taken to the hospital after a violent home invasion robbery in Mississauga. York Regional Police have charged a former City of Vaughan employee with sexual offences related crimes after two minors were allegedly confined and one was sexually assaulted inside a community centre last month. Toronto and the GTA gas prices are set to drop 9 cents, falling to lowest level in weeks. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस आपके लिए वानी पेश कर रही थी। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। ईद के बारे से बात करेंगे। आज 28 मई होगी पाकिस्तान में, और यौम तकबीर के ख़ास तौर पे 28 मई को यौम तकबीर के तौर पे मनाया जाता है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और ये साबित किया था कि हम दिफाई सलाहियत से गाफिल नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तानी तारीख का अजीम और फैसला कुन दिन है। कौम के नाम पैगाम में उन्होंने कहा कि यौम तकबीर मुमलकत के दिफा मजबूत दिफा की गवाही देता है। एटमी प्रोग्राम के मेहमानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर और समर मुबारकमंद को खराज तहसीन पेश करते हैं। साइंसदानों, इंजीनियर्स, पाकिस्तान और कारकुनान को सलाम अकीदत पेश करते हैं। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह के मौके पर मुसल्ला अफवाज के सरबराहान ने भी कौम को मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। इस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये अजीम संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और मुल्क की खुद मुख्तारी की अलामत है। ISPR का कहना था कि यह दिन इलाकाई सालमियत और कौमी वकार के तहफ़ का गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। यह तारीखी कामयाबी मुदब्बर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मुल्की खिदमत की बदौलत है। यह कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद आशिम मुनव्वर साहब से आपको मुलाकात कराएंगे। स्टे ट्यून्ड।
3: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।

0: ஓடிக்கு கால் மிலாம்.
1: Talawat 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talawat 647-295-7861.
0: To Talawat Tico, call me lang.
1: Talawat 647-295-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773.
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में. ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो.
4: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके.
5: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद.
6: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550, 746-5550.
2: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे. अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी. दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन. अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464. शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 416-855-9464. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन. The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं. आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ. बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्स रोड, मिसिसागा. एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन, ब्रॉम्पटन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600. क्वींस मैनर इवेंट सेंटर.
7: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें. आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157.
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
9: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप सुन रहे हैं पाकिस्तान टोरंटो.
2: अगर खुदा न खास्ता आप कर्ज के बोझ तले आ गए हो तो फिर एक और नंबर आपको अपने पास रखना है, 416-428-2165. आयशा मुनव्वर साहिबा, मैनी हुसैन साहब कर्जों के बोझ से आपको निजात दिलाते हैं और मुश्किल वक्त में आपके साथ होते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदेद कहेंगे. आयशा साहब अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है,
2: खैरियत? ठीक ठाक
3: अल्हम्दुलिल्लाह.
2: हम चाहेंगे थोड़ा सा प्रोग्राम के आगाज में सर्विसेज हम वैसे तो बताते रहते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी डिटेल बताइएगा और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करता हूँ.
3: जी बिल्कुल, हमारी मेन सर्विसेज जो हैं वो आपको कर्ज से निजात दिलाना है. कर्ज चाहे आपका पर्सनल हो, बिजनेस का हो, कॉरपोरेशन का हो, मैक्सिमम डेट रिलीफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं. कंज्यूमर प्रपोजल्स, बैंक्रप्सीज, लमसम प्रपोजल्स एंड ऑल्सो क्रेडिट काउंसलिंग में भी हम आपकी हेल्प आउट करते हैं.
2: 416-428-2165 रबते का नंबर है. आपने प्रपोजल की बात की, बैंक्रप्सी की बात की. लोगों के जहन में कुछ जो बिल्कुल राह होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, वो शायद कर्ज के लिए समझते हैं शायद बैंक्रप्सी वाहिद हल है. ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और क्या किसको सूट करता है.
3: जी बिल्कुल, मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि ये सोचने वालों का अपना है स्टेट ऑफ माइंड है कि जो ही कर्जा हो गया तो ही समझते हैं बस अब हम तो बैंक्रप्ट हो गए हैं. ऐसी बात नहीं है, देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और सारे आप एसेट सेव रखते हुए जो है वो आप मैक्सिमम कर्जा माफ करवा सकते हैं. तो बैंक्रप्सी बिल्कुल भी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है. वो बिल्कुल बुरे हालात हो जाए और कोई और ऑप्शन ना रहे तो फिर बैंक्रप्सी ऑप्शन हो सकती है, बट फर्स्ट ऑप्शन नहीं है.
2: 416-428-2165 पे आप मजीद मालूमात ले सकते हैं. अच्छा, ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है लोगों का कि अगर बैंक्रप्सी हो गई तो उसके बाद शायद ना उन्हें कभी कोई लोन मिलेगा ना मॉर्गेज मिलेगी. ये दुरुस्त है या कुछ अरसे के बाद मामला बेहतर हो जाते हैं?
3: अगर ऐसे होगा अर्शद भाई तो फिर बैंक कहाँ जाएंगे, बैंक बिजनेस कैसे करेंगे? क्योंकि उनको भी आपकी जरूरत है और आपको उनकी जरूरत है. तो क्रेडिट दोबारा एस्टेब्लिश हो जाता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाता है और हम उसमें हेल्प आउट भी करते हैं. तो आपका जो है लोन्स भी मिल जाते हैं और क्रेडिट भी एस्टेब्लिश हो जाता है. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल कुछ ना मिले.
2: सही. एक सवाल बहुत लोगों के जहन में रहता है कि कितने परसेंट तक कर्ज माफ हो सकता है. तो इसमें कोई ऐसा है कि इस हद तक कर्ज माफ हो सकता है या परसेंट टू परसेंट वेरी करता है?
3: बिल्कुल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. उसका रीजन ये है कि ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं है जो सेल हो रही है. और मैं देखती हूँ कि कई दफा लोग गारंटीज दे रहे होते हैं 70%, 80%, ऐसे नहीं है. जब हम प्रोफेशनली बैठ के रिव्यू करते हैं तो हम एक ऐसा जो है कस्टमाइज सा सोल्यूशन बनाते हैं जो कि बैंक्स भी एक्सेप्ट कर लें और आपका भी जो है वो काम हो जाए. अब अगर बुरा प्रपोजल डाला जाता है तो उसके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो बेसिकली सब्जेक्ट टू क्रेडिटर अप्रूवल होता है, बट मैक्सिमम डेट रिलीफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं. बट गारंटी इस काम में आप नहीं दे सकते बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी. जब तक वो क्रेडिटर्स हाँ या ना नहीं कहेंगे, हम अपने तौर पर नहीं कह सकते कि हाँ जी ये गारंटी हो गई.
2: वेरी राइट. मतलब सामीन नंबर नोट कर लें, खुदा खास्ता आप कर्ज के पूछते हूँ 416-428-2165. बहुत शुक्रिया आशा मनोवर साहब, नेक्स्ट वीक में आपसे फिर बात करते हैं. बहुत शुक्रिया.
3: थैंक यू जी.
2: नंबर नोट कीजिए 416-428-2165, 416-428-2165 आशा मनोवर साहब का रबते का नंबर है. खुदा खास आप कर्ज के बोझ तले आ गए, बिल्कुल परेशान ना हो, फौरी तौर पर इनसे रबता कर लें. जनाब, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? हम अक्सर अवकात हर जब भी हर साल कंपेरिजन करते हैं पाकिस्तान की ईद का और यहाँ की ईद का. वहाँ भी ईद की नमाज़ पढ़ के, अच्छा वहाँ पे तो क्योंकि कुर्बानी नॉर्मली होती ही हर घर में, तो वो कसाब कसाइयों का आना, कुर्बानी करना, फिर जिन लोगों ने जिनके नाम की खास तौर पे कुर्बानी होती है उन्होंने कुछ खाना नहीं होता है, वो कलेजी जब तक नहीं भून के खाई जाती है, उनका रोज़ा ही होता तकरीबन. लेकिन ये अभी तक माहौल वैसा है, यहाँ पर ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ कुछ लोग हैं जो माशाल्लाह हिम्मत है अल्लाह उनको दे, वो जाते हैं और स्लॉटर हाउस में जाते हैं, कुर्बानी अपने सामने करते हैं, ख़ुद करते हैं और उसके बाद शाम लग जा हो जाती है तकरीबन गोश्त आते. लेकिन जो बुकिंग हम लोग करवाते हैं वो नॉर्मली 11-12 बजे में बता देते हैं कि जी जो नंबर्स पहले लगे होते हैं कि जी आप आ जाएं, आपकी कुर्बानी मतलब आपके सिर ही पाए बाकी चीज़ें अलग करके बाकी गोश्त बना हुआ जिस तरह आप उनको कहते हैं वो उसमें आपने चांपियाँ अलग करवानी हैं या जिस तरह से भी है वो बना के डब्बे में पैक होता है, नाम लिखा होता है, आप 12-1 बजे जा के ले आते हैं, शाम तक चलता रहता है या दूसरे दिन या तीसरे दिन. अब उसमें बहुत से लोग कहते हैं कितनी जल्दी इतनी कुर्बानियाँ कैसे हो सकती हैं, वो कहते हैं फजर की नमाज़ के बाद हम कुर्बानी करते हैं. अब ये भी बहुत सिलसिला है कि जी नमाज़ के بات ہو یا نہیں تو، لیکن بہرحال کئی چیزوں میں شرعی طور پہ اجازت بھی ہے، لیکن فرق بہت ہے۔ اب دوسرا جب آن لائن قربانی جب ہو گئی ہے تو اب بچے خاص طور پہ جو نوجوان یہاں میں نے دیکھا ہے وہ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ جی ایک تو وہ ڈونیشن مدد بھی ہو جاتی ہے اور ہر ایک بچے کی 75, 250, 150 جس طرح بھی ہے اس طرح سے وہ لوگ جو ہیں مختلف جو ادارے ہیں ان کے تھرو دنیا بھر میں جہاں جہاں قربانی ہوتی ہے وہ قربانیاں کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد سلسلہ جو لازمی حصہ ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، وہ ہر حال میں عید پہ سویا جاتا ہے، اور پھر دعوتیں ہوتی ہیں، وہ چیز یہاں ہیں، تین حصے کریں تو کہاں کریں، بہت دو چار رشتہ دار یہاں بہت جن کے نہیں ہیں وہ ایک دو ہمسایوں کو دے دیتے ہیں، باقی ایک حصہ جو ہے غریبوں محتاجوں کو دینا ہوتا ہے، تو مختلف ادارے ہیں وہاں پہ وہ لوگ جیسے مسلم ویلفیئر ہیں وہ آپ کا گوشت بھی لے لیتا ہے وہاں دی جاتی ہیں، اور یا پھر خود ہی پیکٹ بنا کے جیسے ہوتے ہیں وہ رکھ رہتے ہیں اور وہ کھائے جاتے ہیں، تو یہاں کے اپنے مسائل ہیں وہاں کے اپنے مسائل، لیکن عید کی جو خوشی ہے وہ بہرحال جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے اور وہ مل کے اس کو جو ہے وہ ضرور منانا چاہیے، اور ہم ہر عید پہ خوشی تو مناتے ہیں، گانا بھی آپ کو ضرور سنواتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम, लाइफ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट। अब विशाल से ही लीजिए गारंटीड कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस। कंपेयर विद विशाल एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स ऑन विजिटर्स एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस। कॉल विशाल त्रिवेदी एट 6477679852। दैट 6477679852।
3: जी हाँ, 6477679852 विशाल त्रिवेदी साहब के रबते का नंबर है। वेरी प्रोफेशनल, वेरी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट हैं। आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन के बारे से आपको बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहेंगे। विशाल भाई, वेलकम यू इन रेडियो पाकिस्तान रो ऑन रो।
4: गुड इवनिंग आशा जी, ऑलवेज प्लेजर टू बी विद यू एंड रिगार्ड्स टू ऑल आवर लिसनर्स एंड आई लाइक टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी ईद।
3: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और ईद खुशियों का दिन है और एक दूसरे से खुशियाँ मनाई जाती हैं। खुशी का ताल्लुक जो है वो प्रोटेक्शन और सुकून के साथ भी है, क्योंकि आज खुशी का दिन है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ थोड़ा सा हम बिजनेस तो अपनी जगह और वो अपनी जगह, लेकिन इम्पॉर्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू प्रोटेक्ट योर फैमिली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस हवाले से आप ज़रूर बात करें।
4: Our objective is to educate community in a way that they take the right decision. So purpose of coming on the radio and connecting with you, it's been years now, it's almost 13-14 years knowing you, more than that.
3: Yeah.
4: And the whole purpose is to educate community so they take the right decision. And iska matlab ye nahi hai ki aapko hamare paas se aake kuch bhi policy ya kuch bhi leni hai. You can go and get anywhere. The purpose is to educate you. Arshji, insurance is very important and I would request each and everyone that agar aap kuch bhi kar rahe hain, aapke jo bhi assets hain, aap ek thoda sa apna khud ka review kijiye, apna portfolio dekhiye ki agar aapke portfolio secure hain ki nahi hai, aur agar aapko kuch hota hai to what happens to those assets. And insurance always protects your family, it doesn't protect your asset. And insurance is मनी नेवर बाय इंश्योरेंस, एक्चुअली योर हेल्थ बाय इंश्योरेंस। सो दो चीजें ध्यान रखिए, अगर आप हेल्दी हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा एसेट है, और दूसरी चीज आपकी जो एसेट्स हैं आर दे इंश्योर्ड और नॉट। सो ये दो चीजों पे हमेशा ध्यान रखिए। एंड एंड ऑफ द डे हम जो भी कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपनी स्पाउस के लिए कर रहे हैं। सो दे आर लुक्ड आफ्टर विद द प्रॉपर इंश्योरेंस पोर्टफोलियो, प्रॉपर इंश्योरेंस प्लानिंग, एंड कनेक्ट विद दोज पीपल हु आर ऑलवेज इन द इंडस्ट्री गिविंग राइट इन्फॉर्मेशन, बींग देयर फॉर लॉन्ग टाइम रिगार्डलेस विद अस और विद एनीबडी, बट कवर योर फैमिली, कवर योर सेल्फ।
3: 6477679852 विशाल त्रिवेदी साहब के रबते का नंबर फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक छोटी सा सवाल और मेरे जहन में आता है, जो नए लोग आते हैं, नए जो यहाँ पे न्यू कमर्स हैं, एक तो उनको प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, और अगर वो जैसे टर्म इंश्योरेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं करती, वो कम अज़ कम अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं फॉर द वेरी लो अमाउंट के साथ।
4: 100% अगर आप न्यू टू द कंट्री हैं, टर्म पॉलिसी 10 साल की टर्म पॉलिसी $1,00,000 की हमने $20-25 मंथली पे भी मिल जाती है आपको, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड अमाउंट, बट इट कैन स्टार्ट फ्रॉम $10-20, इट कैन गो टू एनी अमाउंट डिपेंडिंग ऑन योर कस्टमाइज पोर्टफोलियो।
3: तो ये आप जरूर रिकमेंड करें कम अज कम अपने आप को, कोई भी है चाहे चले नई न्यू कमर नहीं, अभी तक उन्होंने नहीं इंश्योरेंस लिया, तो कम अज कम अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट जरूर कर लें।
4: 100%, 100%, and term policy is good to way to start. At least you are new to the country, you are just establishing. $10-20 कहीं भी नहीं पता पड़ते अर्शदी, पर end of the day अगर आपको $100-200 or $1,000,000 देके जाते हैं तो that's always there.
3: और ये term insurance जो है वो permanent insurance में convert हो जाती है without medical,
4: 100%.
3: अच्छा, बगैर medical claim. अच्छा, ये बड़ा important है, मतलब अगर आपने 10 साल के लिए है term, 10 साल के बाद automatically आप इसको shift करा लें उसमें।
4: हाँ, कन्वर्शन प्रिविलेज रहता है टर्म पॉलिसी में, तो कभी भी आपको गॉड फॉरबिड कुछ होता है तो वी कैन कन्वर्ट इट, एब्सोल्युटली यस।
3: जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी बात नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेनी बड़ी जरूरी है, और इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। 9852 विशाल त्रिवेदी .ca इनकी वेबसाइट है, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। विशाल भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ईद के दिन भी आपको हमने तंग किया, लेकिन थैंक यू वेरी मच आपकी गाइडेंस का, एडवाइस का बहुत बहुत शुक्रिया।
4: It's always a pleasure and I'm so thankful to God that I met you and I met so many wonderful, wonderful people from Radio Pakistan. So love to everybody. Thank
3: आप
4: you.
3: आप खुद अच्छे हैं तो इसलिए आपसे बात करने में अच्छा लगता है। Thank you very much. बहुत शुक्रिया।
4: Thank you.
3: विशाल त्रिवेदी साहब का नंबर नोट कर लें, 6477679852, 6477679852, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM। न्यूज़ सिर्फ लिए चलेंगे आपको, आपको बता दें कि 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान .fm पे सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV, हमारे रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के निशात हमारे टेलीविजन चैनल पे भी आपके लिए बराहरास्त जो है वो नशर की जाती हैं। रेडियो पे तो आप सुनते हैं, TV पे आप देख भी सकते हैं। रियल सेट के हमारे कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तलाम भट्टी 6472957861, 6472957861। लिए चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब ज़ुबैरुद्दीन साहब।
5: You're listening to CMR FM 101.3।
6: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
7: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
6: न्यूज के लिए हम तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस, 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500, इट्स 4374252500, आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861, 6472957861।
8: रेडियो पाकिस्तान के तमाम सामईन को जुबैरुद्दीन की जानिब से ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। आज कनाडा और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में अपनी काबीना से खिताब करते हुए कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हुए और हम अभी इससे मुतमईन नहीं हैं, लेकिन ये कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि या तो ये इसी तरीके से हल हो जाएगा या फिर हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका इस वक्त भी ईरान के साथ अच्छा मुआहदा कर सकता है, लेकिन शायद वो बेहतरीन ना हो। अगर ये मुआहदा बेहतरीन नहीं होगा तो हम करेंगे ही नहीं। सदर ट्रंप का कहना था कि आबनाए हुरमुज सबके लिए खुली होगी। उनका कहना था कि कोई भी आबनाए हुरमुज को कंट्रोल नहीं करेगा, हम इसकी निगरानी करेंगे, इसे देखेंगे, लेकिन इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये उन मुज़ाकरात का हिस्सा है जो हम कर रहे हैं। सदर ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या वो ईरान को तेल की फरोख्त की इजाज़त देने के लिए उस पर आयद पाबंदियों में नरमी पर गौर कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, हम इस वक्त पाबंदियों में नरमी या पैसे देने पर बातचीत नहीं कर रहे, ना ही पाबंदियाँ हट रही हैं और ना ही पैसे दिए जा रहे हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान ने सोचा था कि वो मुझे थकाकर किसी डील तक पहुंचने से रोक देगा, लेकिन ईरान को अब एहसास हो रहा है कि उसके पास माहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ माहदे के मामले में किसी सियासी दबाव या इंतखाबी शेड्यूल की वजह से जल्दबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें वस्त मुद्दती इंतखाबात की कोई परवाह नहीं है। उधर ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक उसे तेहरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क का एक इब्तदाई और गैर सरकारी मुसविदा मौसूल हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुमकिना मुफाहमत के तहत ईरान एक माह के अंदर आबनाए हुरमुज में तजारती आमदरफ्त को जंग से पहले वाली सतह पर बहाल करेगा। इसके बदले में अमेरिका ईरान के अतराफ में तैनात अपनी फौजी मौजूदगी ख़त्म करेगा और बहरी नाकाबंदी भी उठा लेगा। خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہاز کے راستوں کے انتظام کے لیے ایران اور عمان کے ساتھ ہم آہنگی کی جائے گی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ ایرانی ریاستی میڈیا کی جانب سے پیش کی جانے والی معلومات پر کسی کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جانب ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری علی باقری نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات میں ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ دشمن کی کمزوری کے باعث جنگ کے امکانات کم ہیں، تاہم ایرانی مسلح افواج ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران پر جارحیت مسلط کی گئی تو چاہ بہار سے ما شہر تک پورا ساحلی علاقہ حملہ آوروں کا قبرستان بن جائے گا۔ وزیر اعظم